श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 12वीं तिथि। तदनुसार 3 अगस्त 2026 सुबह के 5:53 और 13 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

और आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे एफएम रेनबो चैनल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर में यानी ठीक 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात, साथ रहेंगे वीर दमन सिंह। 7 बजे गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर साथ होंगे निशा तंवर और वीर दमन सिंह, लिख देंगे आपको जानकारी दिल्ली और एनसीआर के बारे में। 9 बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने, और अगर आप शौकीन हैं पाश्चात्य संगीत के तो आपके लिए है समय 10 बजे वेस्टर्न म्यूजिक के कार्यक्रम के लिए मैचलेस म्यूजिक आर, और दोपहर 12 बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम प्लेट कूल, साथ रहेंगे उत्कर्ष।

11 बजे का समय रहेगा बॉलीवुड ट्रेल्स का, जिसमें साथ होंगी आपके आरती खंडूरी, लेकर आएंगी बहुत सी ऐसी कहानियां बॉलीवुड के बारे में जिनको सुनकर आपको शायद अच्छा लगेगा और दिन भी बन जाएगा। दोपहर 1 बजे मिड एंट्री इन CUET इस विषय पर बातचीत करेंगी शालिनी खंडेलवाल। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आनंद सोनकर, जो कि हैं डेप्यूटी डीन ऑफ एडमिशंस। 2 बजे घर परिवार की बातें सुनने के लिए रहिएगा साथ शालिनी के एक बार फिर से कार्यक्रम आशियाना में। और इसके साथ आप सुन सकते हैं स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम NCERT, जिसमें आप जानकारी ले सकते हैं NCERT से जुड़ी कुछ विशेष बातों के बारे में।

बजे का समय रहेगा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर का, जिसमें आप बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर एस के रसानिया से, जो कि आज आपको जानकारी देंगे डेंगू के बारे में, जिसके कारण, इसके उपचार और इसके लक्षणों के बारे में। साथ रहेंगी प्रियंका मामगेन, ये डॉक्टर एस के रसानिया आपके साथ से मिलने आ रहे हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से। तो जरूर रहिएगा हमारे साथ और फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी लेते रहिएगा। रात 8 बजे आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम, जिसमें आप ले सकते हैं एक समेकित जानकारी कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के बारे में। तो बने रहिएगा हमारे साथ एक बार फिर शाम 8 बजे। अब कुछ ही देर में 6 बजने को हैं, तो आइए सुनते हैं समाचार।

पेश है अब तक एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। एसबीआई रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। त्रिसैन्य भावी युद्ध कला पाठ्यक्रम का 4th संस्करण आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का यह पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है और संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र द्वारा समन्वित है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तक 88,06,000 से अधिक गणना परपत्रों का डिजिटलीकरण हो गया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत लगभग 1 करोड़

करोड़ 45 लाख पर पत्र वितरित किए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कल इडाह के ट्विन फॉल्स में एक रेस्तरां में एक बंदूकधारी द्वारा की गई गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है और 7 अन्य घायल हो गए हैं। गोलीबारी के बाद हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। तो ये तो थे अब तक FM रेनबो मुख्य समाचार। सुनते रहिए AIR FM रेनबो, दिल से दिल तक।

कहते हैं खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर कार्यक्रम सुप्रभात लेकर आपके साथ हूं मैं, आपका दोस्त वीर दमन सिंह। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लवली लिसनर्स।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात। बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। जी हाँ, ये एक प्रेरक कहानी है, मोटिवेशन स्टोरी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उससे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा कहे शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से उन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो, पर चाहकर भी वापस नहीं ले सकते। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कुछ कड़वा बोलने से पहले ये याद रखें कि भला बुरा कहने के बाद कुछ भी करके आप अपने शब्द वापस नहीं ले सकते। हाँ, आप उस व्यक्ति से जाकर क्षमा ज़रूर मांग सकते हैं और मांगनी भी चाहिए, पर ह्यूमन नेचर कुछ ऐसा होता है कि कुछ भी कर लीजिए इंसान कहीं ना कहीं हर्ट हो ही जाता है। तो इसलिए हमें सोच समझ कर ही शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। सुप्रभात।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त वीर तमन सिंह। दोस्तों, एक बार एक केकड़ा समुद्र किनारे अपनी मस्ती में चल रहा था और बीच बीच में रुककर अपने पैरों के निशान देख रहा और देखते हुए बड़ा खुश हो रहा था। आगे बढ़ते पैरों के निशान देखते देखते बिना डिजाइन उनके देखकर बड़ा ही खुश हुआ। इतने में एक लहर आई और उसके पैर के सब निशान मिट गए। इस पर केकड़े को बड़ा गुस्सा आया। उसने लहर से बोला, ए लहर, मैं तुझे अपना मित्र मानता था, पर ये तूने क्या किया? मेरे बनाए सुंदर पैरों के निशानों को ही मिटा दिया। ये कैसी दोस्ती है और कैसे दोस्त हो तुम? तब लहर बोली, वो देखो, पीछे से मछुआरे उन पैरों के निशानों को देखकर ही आगे आ रहे हैं और तुम्हें पकड़ लेंगे। हे मित्र, तुमको वो पकड़ ना लें, बस इसलिए मैंने निशान मिटा दिए। सच यही है कि कई बार हम सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाते और अपनी सोच के अनुसार उसे गलत समझ लेते हैं, जबकि हर सिक्कू के दो पहलू होते हैं। जी हाँ, और अंत में यही बेहतर होता है कि जो उस सामने वाले ने हमारे लिए कुछ सोच समझ कर ही निष्कर्ष निकाला होगा और हम यही सोचे कि कुछ हमारे लिए बेहतर होगा, तभी ऐसा हुआ है। तो कई बार हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि सामने वाला गलत है, लेकिन हमारी समझ पे ये निर्भर करता है। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं सुप्रभात।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात। कहते हैं कि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो रिस्क उठाते हैं। हर कोई सेफ खेलता है, विनर अलग खेलता है, एक्शन फियर को खत्म करता है। और अगर आप एग्री करते हो ना, तो आज से ही डर नहीं डेयरिंग चुनो। वो कहते हैं ना कि किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कुछ करने का हुनर रखते हैं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं सुप्रभात। जी हाँ, सुप्रभात। और आप के साथ मैं एक

और बड़ी प्यारी मोटिवेशनल स्टोरी शेयर कर रहा हूं, सफलता का रहस्य। एक बार एक नौजवान लड़के ने सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने उस लड़के से कहा कि तुम कल मुझे नदी के किनारे मिलो। वो मिले, फिर सुकरात ने नौजवान से उनके साथ नदी की तरफ बढ़ने को कहा, और जब आगे बढ़ते बढ़ते पानी गले तक पहुंच गया, तब अचानक सुकरात ने उस लड़के का सर पकड़ के पानी में डुबो दिया। लड़का बाहर निकलने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन सुकरात ताकतवर थे और उसे तब तक डुबाए रखा जब तक कि वो नीला पड़ने नहीं लगा। फिर सुकरात ने उसे पानी से बाहर निकाला, और बाहर निकलते ही जो चीज़ उस लड़के ने सबसे पहले की वो थी हाँफते हाँफते तेजी से सांस लेना। सुकरात ने पूछा, जब तुम सबसे अंदर थे और सबसे ज़्यादा क्या चाहते थे, तुम्हारे मन में क्या विचार चल रहा था? लड़के ने उत्तर दिया, सांस लेना। सुकरात ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह से, इतनी शिद्दत से चाहोगे जितना कि तुम सांस लेना चाहते हो, तो वो तुम्हें मिल जाएगी। इसके अलावा कोई और रहस्य नहीं है।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

कागज की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। कहाँ आ गए इस समझदारी की दुनिया में, वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था, है ना। और आज जीत की होड़ में सब लगे हैं दोस्तों, मगर संघर्ष भरी दौड़ में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर दे। यही जीत की तैयारी है।

आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं सुप्रभात। आकाशवाणी FM रेनबो 102

104.6 पर प्रोग्राम चल रहा है सुपर भात, और आपके साथ हूं मैं आपका दोस्त वीर धवन। कहते हैं कि जीवन छोटा है और उसे गहराई से जियो, परिणाम की चिंता छोड़ो और प्रक्रिया का आनंद लो। और जिंदगी वो नहीं जो हम सोचते हैं, जिंदगी वो है जो हम जीते हैं। और आपको दोस्तों बता दें कि अगला प्रोग्राम लेकर हमारे साथ रहेंगी निशा तंवर, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और फिलहाल आपको सुनवाते हैं एक और ब्यूटीफुल ट्रैक 1942 अ लव स्टोरी से, कुमार सानू की आवाज में।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं सुप्रभात। अब हमारा भी आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। इस प्रोग्राम से दोस्तों 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अगला प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर निशांत अवर आपके साथ रहेंगी। और कुछ हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से, और राजेश भल्ला एडवोकेट कंकड़खेड़ा मेरठ से, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं कौन, हमारे कुछ और भी हैं, डॉली हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, आपको भी गुड मॉर्निंग। सलमा बेगम मोहम्मद इम्तियाज जौहर कैंप कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। मोनू अलीपुर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपसे यही कहेंगे कि आपका दिन शुभ हो, आप यूं ही मुस्कुराते रहें, जिंदगी से हाथ मिलाते रहें। और चलते चलते यही कहूंगा कि उम्मीद की किरण कभी बुझने ना देना, राह में कांटे बहुत मिलेंगे, उनसे बच के रहना। तो जिंदगी से हाथ मिलाते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता। अब हमें भी आपसे इजाजत लेनी होगी इस प्रोग्राम से, और 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। अपना ख्याल रखिएगा।

नमस्कार, एफएम रेनबो पर अब समय है मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। एसबीआई रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रूपये के मुआवजे की घोषणा की। त्रिसैन्य भावी युद्धकला पाठ्यक्रम का चौथा संस्करण आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का यह पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है और संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र द्वारा समन्वित है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल रात 88,06,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत लगभग 1,45,00,000 प्रपत्र वितरित किए गए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी जुलूस निकाला जाएगा। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री किशन रेड्डी ने कीटो मोटर्स द्वारा भारत की पहली वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक बस लॉन्च किए जाने के देश की स्वच्छ परिवहन यात्रा में एक और अहम पड़ाव बताया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल एक शांति रैली के दौरान पुलिस स्टेशन पर हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 14 लोग मारे गए और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। संयुक्त राज्य अमेरिका में कल इडाहो के ट्विन फॉल्स में एक रेस्तरां में एक बंदूकधारी द्वारा की गई गोलीबारी

में 3 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। गोलीबारी के बाद हमलावर ने खुद को भी गोली मार ली। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। ये थी आकाशवाणी रेनबो पर इस घंटे की खास खबरें।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: FM रेनबो 102.6। मैं निशा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हुए आपसे बस यही कहूंगी, गुड मॉर्निंग है जी। सुबह सुबह मतलब दिल्ली की इस ठंडी सुबह में आपका स्वागत करने में बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब यस, श्रावण मास की यही तो खूबसूरती होती है, कभी सर्दी कभी गर्मी और कभी उमस, ये सब तो वेदर में चलता रहेगा। लेकिन जो हमारा असली थीफ ऑफ जॉय होता है, पता है आपको कौन है थीफ? वही चोर जो हमारी खुशियां चुरा लेता है। वो मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरिजन जो है, तुलना करना दूसरों के साथ में, यही हमारे असली जॉय का कातिल होता है कह सकते हैं। आपने देखा होगा, अगर एक एंट की नज़र से, एक चींटी की नज़र से हम खुद को देखें या सोचें, तो उसके लिए हम एक बहुत बड़ा जायंट है, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा ट्री, विशाल ट्री के लिए हम कुछ भी नहीं है, उस चींटी की तरह है छोटी सी। सही में ना? और एक और बात कहूंगी कि हो सकता है कि आपको आपकी जिंदगी बहुत बोरिंग लगे, किसी को भी लग सकती है, बट द यू नेवर नो, नेक्स्ट पर्सन माइट बी स्ट्राइविंग फॉर योर लाइफ स्टाइल, है ना? तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये जो जिंदगी है ना, ये एक बड़े गेम की तरह है। वो कौन सा गेम है? परस्पेक्टिव का गेम है, जहाँ पर इंसान बदल जाता है, चीज़ बदल जाती है, सिचुएशन बदल जाती है, तो परस्पेक्टिव भी बदल जाता है। तो इसीलिए हमें कंपेरिजन बंद करके अपने इस थीफ को अपने आप से दूर रखना चाहिए, सच में बता रही हूँ। तो अपनी असली खुशी को ढूंढिए और एक खुश दिल के साथ अपने दिन की अच्छी शुरुआत कीजिए। आकाशवाणी रेनबो 102.6 सुनते रहिए, मैं निशा आपके साथ।

आसमान में जब बादल छाए होते हैं और लगता है कि बारिश होगी, अब होगी, अब होगी, और उसके बाद ऐसे ही लगता है कि बादल जब तेज बरस रहे हैं तो हमें पुकार रहे हैं कि हम आए, जंप इन करें, नहाएं और उस रेन को एंजॉय करें, और ये जो इतने समय से जो लंबी गर्मी का दौर चल रहा था ना, वो खत्म हो जाए बस. तो यस, यही वेलकमिंग जो है वेदर आज का भी रहने वाला है. आकाश में सूर्योदय वैसे हो चुका है लेकिन बादल छाए हुए हैं फिलहाल. बाहर का तापमान 29 बना हुआ है जो कि मैक्सिमम 34 तक जाएगा. हाँ, कल आई अग्री काफी गर्म दिन था लेकिन मौसम विभाग का कह रहा है कि इस पूरे हफ्ते बारिश का अनुमान है. दिल्ली NCR के बहुत से इलाकों में दिन में, रात में बारिश हो सकती है. बाकी जल भराव की वजह से जो भी परेशानियां किसी को होती हैं उनसे आप बचने के लिए अपने तरीके, मतलब अपने साथ लेके चले. आकाशवाणी रेनबो बनी रही है. आज मंडे मॉर्निंग है और 3 अगस्त है. आज के दिन की खास बातें जल्दी आपके लिए लिख रहा हूँ. कीप लिसनिंग.

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: 102.6 पर आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ, मेरा नाम है निशा और 7:17 बाय द स्टूडियो क्लॉक। गुड मॉर्निंग। और आज 3 तारीख है, 3 अगस्त है, लेकिन पूरे 1 से 7 अगस्त तक मनाया जा रहा है विश्व स्तनपान सप्ताह, यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ये सभी माओं को और शिशुओं को समर्पित है ये पूरा सप्ताह, इसीलिए उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए सारी जागरूकता अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से इन्हीं को दी जाने वाली है। और आपके परिवार में अगर माताएं हैं, छोटे बच्चे हैं, तो ये जानकारी आपके लिए भी है। माँ के दूध को ना बच्चे के लिए अक्सर पहला टीका कहा जाता है, क्योंकि उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं

जितने की बच्चों को जरूरत होती है एक अच्छे पालन पोषण के लिए। और जन्म के बाद जो पहला दूध आता है माता को, वो तो किसी भी बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा पौष्टिक माना जाता है। तो इसीलिए इस पूरे सप्ताह ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार जो है वो नई माताओं को और उनके शिशुओं को स्वस्थ रहने के लिए और आजीवन जिससे उन्हें लाभ होने वाले हैं उसके बारे में जानकारी देती है। और स्तनपान से बच्चा उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है, उनको बीमारियों से बचाता है और इनके अच्छे स्वास्थ्य में वृद्धि होती है माता और शिशु दोनों की। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि सभी स्तनपान पर ध्यान दें और इससे जुड़े हुए जितने भी भ्रांतियाँ हैं उनको अपने हृदय से हटा दें। और अगर आप इस पर और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो अपने नज़दीकी आंगनवाड़ी कार्यालय में जाकर ये जानकारी पा सकते हैं। ये हर एक माता और हर एक शिशु स्वस्थ रहे, बस यही इस पूरे सप्ताह का मकसद है।

रेनबो 102.6 एफएम 7:22। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। आज सभी हिंदी साहित्य के जितने भी प्रेमी हैं उनके लिए एक बहुत ही खास दिन है। उनके पसंदीदा कवि की आज बर्थ एनिवर्सरी है, तो पहले इन कवि के बारे में कुछ बताती हूँ। सोचिए, जब ये आज से सालों पहले, जब इनकी 50वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाया गया देश भर में, और बनारस से लेकर चिरगांव जहाँ ये इनका जन्म हुआ था वहां पर लोगों ने बहुत बड़े कार्यक्रम रखे और महात्मा गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रकवि कहकर बुलाया, और तभी से मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रकवि हो गए। यस, आज इनकी ही बर्थ एनिवर्सरी है। 1905 से लेकर 1921 तक मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं हैं वो लगातार अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में छपती रही, और बहुत पसंद किया इनकी हर एक कविता को। जयद्रथ वध हो, भारत भारती, साकेत, ऐसी बहुत सी मशहूर रचनाएं हैं जिन्होंने आज तो एक पुस्तक का रूप ले लिया है, लेकिन तब ये पत्र पत्रिकाओं में छपती थी, लोग इन्हें बहुत पसंद करते थे। और इनके बोल हम कौन थे, क्या हो गए हैं, क्या होंगे अभी, आओ आज मिल विचार करें ये समस्याएं सभी। इस शब्द मैथिली शरण गुप्त जी के इस कविता में इन्होंने हिंदुस्तान के जो कठिन हालात थे उस समय, उस पर उन्होंने लोगों का ध्यान खींचना चाहा। अपने समय के बहुत ही बड़े कवि थे ये। इन्होंने, आपको पता ही है, इनके खंड काव्य पंचवटी की रचना भी इन्होंने की थी, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण के जो 14 साल के वनवास के दौरान उन्होंने पंचवटी के दिनों का खास तौर पर सजीव चित्रण किया था, और स्पेशली लक्ष्मण के किरदार को गुप्त जी ने जिस तरह से लिखा वैसा काम साहित्य में किसी और ने कभी किया ही नहीं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ये पंक्तियां याद है आपको। खैर, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म आज 3 अगस्त को झांसी के चिरगांव में हुआ था, और स्वभाव से ही बहुत लोक संग्रही कवि थे ये, और युग की समस्याओं को अपने दिल के करीब रखते थे, और अपने कविताओं के माध्यम से उन्हीं को लोगों के सामने वो लेकर आते थे। और पूरा जो हिंदी साहित्य इतिहास है हमेशा इनका आभारी है। देशभक्ति की जो अलख इन्होंने हर एक व्यक्ति के दिल में जगाई थी वो नहीं भूला है कोई भी। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।

0: आकाशवाणी रेनबो 102.6 3 अगस्त हो गया है आज, और आज से ही सावन महीने के पहले सोमवार की शुरुआत हो रही है। बहुत सारे भक्तगण सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में आज के दिन व्रत रखने वाले हैं, भगवान शिव को ये समर्पित। और आने वाले जो पूरे चतुर्मास होते हैं उसमें ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव और आने जो देवियाँ हैं, देवताएँ हैं, वही हमारी रक्षा करते हैं और हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। खैर, इस शुभ दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मेरा यहाँ से जाने का समय हो गया। मैं आपको ठीक 9 बजे मिलूंगी, लेकर आऊंगी आपके लिए कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने। और अभी फिलहाल हमारे खिलाड़ियों ने जो कॉमनवेल्थ गेम्स में कमाल दिखाया है उसकी अपडेट्स लेने का टाइम है। तो मैं आपको मिलूंगी ठीक 9 बजे दिल के तराने, गाने नए पुराने में। नाउ यू स्टे ट्यून्ड टू कॉमनवेल्थ गेम्स हाईलाइट।
1: Seventy-four nations, 11 sports, and 215 gold medal events. The 23rd Commonwealth Games have officially come to a grand close after 11 days of spectacular action, represented by a strong 122 member contingent across 10 disciplines. India signed off in fourth position with an impressive haul of 39 medals, including 13 golds, 17 silver, and 9 bronze. As Glasgow celebrated with a breathtaking cultural finale, the baton was officially handed over to India, marking the start of the countdown to Ahmedabad 2030.

0: Hello and welcome to the daily highlights of Commonwealth Game 2026 Glasgow. My name is Munish Jolly and I have somebody who's smiling with that impressive performance in Glasgow, Megha.
1: Shukriya Manish. क्यों ना शुरुआत करें कल खेले गए मुकाबलों से। जूडो में तीन भारतीय खिलाड़ियों इशरूप, अवतार और यश ने मेडल की दावेदारी पेश की। पहले बात करते हैं विमेन 78 केजी कैटेगरी की, तो इशरूप नारंग ने कनाडा की कॉरली गॉडबाउट को कड़ी चुनौती दी, लेकिन उनका सफर पोडियम से बस एक कदम पहले थम गया और वो ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई। इशरूप ने इससे पहले रेपेशाज राउंड में कैमरून की जॉर्जिका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल की रेस में वापसी की थी। अपने कैंपेन की शुरुआत में इशरूप ने राउंड ऑफ 16 में स्कॉटलैंड की निकोल वुड के खिलाफ गोल्डन स्कोर में यू को हासिल करके एक रोमांचक जीत दर्ज की थी। हालांकि क्वार्टर फाइनल्स में इंग्लैंड की एमा रीड के खिलाफ इपॉन से हारने के बाद उनका गोल्ड मेडल का सपना टूट गया था। वहीं मेंस कैटेगरी में दोनों भारतीय खिलाड़ियों को राउंड ऑफ 16 के कठिन मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। 100 किलोग्राम भार वर्ग में अनुभवी अवतार सिंह साइप्रस के माइकल एरिस्टोस को गोल्डन स्कोर तक ले गए, अंत में इपॉन का शिकार हो गए। जबकि 100 प्लस किलोग्राम हैवी वेट्स में यश घांगस को वेल्स के जोशुआ व्हाइट हाउस के विरुद्ध 1-0 की करीबी हार झेलनी पड़ी।
0: So Megha, it's time now to move on to the cycling velodrome. It's named after one of the legends, Sir Chris Hoy, and that is where India cycling contingent was competing. Harshveer Singh Sekhon finished 19th in men's individual pursuit, but it was the sole para cyclist, Lisha Das. Despite of being without the regular aerodynamic skin suit, without a female support person available to assist her, she managed to win the hearts of those in the velodrome. She finished 6th and last in the women's 4,000 meter pursuit qualification, clocking 6 minutes and 58 seconds, averaging 34.45 kilometers an hour. But she surely won the hearts of everyone at that velodrome, because she fought polio for a long time and she completed her ambition of representing the nation and taking that tricolor to a different level.

0: भारत को जंपिंग इवेंट्स में भी जबरदस्त सफलता मिली। सर्वेश कुशारे ने मेंस हाई जंप में सिल्वर हासिल किया, जबकि मुरली श्री शंकर ने लॉन्ग जंप में लगातार दूसरा कॉमनवेल्थ गेम सिल्वर अपने नाम किया। ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रावेल ने सिल्वर जीता और सिल्वा प्रभु ने ब्रॉन्ज हासिल कर भारत का डबल पोडियम पूरा किया। प्रवीण के लिए ये जीत बेहद खास रही, जो बर्मिंघम 2022 में सिर्फ 3 सेंटीमीटर से ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए थे। उधर तेजस्विन शंकर ने डिकैथलॉन में ब्रॉन्ज जीता और इस कठिन 10 इवेंट कंपटीशन में कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए। सीमा कालीरमना ने विमेंस डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज अपनी झोली में डाला। हालांकि कुछ परिणाम गेम से पहले की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे। नेशनल रिकॉर्ड होल्डर गुरिंदर वीर सिंह 100 मीटर के हीट्स में ही बाहर हो गए। अनिमेश कुजूर ने अपना 200 मीटर हीट जीतकर प्रभावित किया, लेकिन वह सेमीफाइनल से आगे नहीं बढ़ सके। तेजस शिरसे गेम से पहले के अपने बेहतरीन फॉर्म को 110 मीटर हर्डल्स में मेडल में तब्दील नहीं कर पाए, जबकि पारुल चौधरी 3000 मीटर और 5000 मीटर स्टीपल चेज दोनों में पोडियम से बाहर रही। पैरा एथलेटिक्स में भारत को 3 गोल्ड मेडल्स और 2 यादगार 1-2 फिनिश हासिल हुई। शर्मिला धनकर ने विमेंस F57 शॉटपुट में भारत की पहली कॉमनवेल्थ गेम्स पैरा एथलेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट बनने का गौरव हासिल किया। शिल्पा के शायला को ब्रॉन्ज अवार्ड किया गया। इसके बाद दिलीप महादुगावित ने मेंस T47 100 मीटर में 10.71 सेकंड्स के गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता, जबकि मोहम्मद बासिल ने सिल्वर अपने नाम किया। भारत ने अपने पैरा एथलेटिक्स कैंपेन का अंत F57 शॉटपुट में एक और डबल पोडियम के साथ किया। सुमान राणा ने गोल्ड जीता, जबकि शुभम जुयाल ने सिल्वर हासिल किया, जो भारतीय एथलेटिक्स के इस ऐतिहासिक कैंपेन का बेहद शानदार अंत रहा।
1: Now let's move on to weightlifting. India fielded an 11-player contingent in weightlifting, spearheaded by world champion Mirabai Chanu, who impressed all by lifting 85-kilogram Commonwealth record and a Games record in snatch and a Games record of 105-kilogram in clean and jerk with a total of 190-kilogram, a Games record, winning gold in 48-kilogram category. But it was heartening to see Gyaneshwari Devi clinching the silver in 53-kilogram category with a 199-kilogram national record that she created in Glasgow. Bindya Rani Devi's bronze medal, Harjinder Kaur's 227-kilogram silver medal victory were the highlights as far as the women weightlifters were concerned. Moving on to the men's category, Rishikanta Singh created a games record in snatch when he lifted 121 kilograms and a total of 264 kilograms with 143 in clean and jerk, got a silver for India. Muthupandi Raja got a silver in 65 kilogram category. Ajay Babu got a silver in the 79 kilogram category. And Lovepreet Singh in the 110 kilogram category got a silver. पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का नाम तब रोशन हुआ जब बिहार के झंडू कुमार ने इतिहास रचा। मेंस हेवीवेट में तीसरे स्थान पर आए और भारत को 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स का पहला मेडल दिलाया। ये भले ही ब्रॉन्ज मेडल था, लेकिन बचपन से ही पोलियो का शिकार हुए झंडू कुमार ने ये साबित तो कर दिया कि शरीर की कमजोरी इरादों की मजबूती के आगे कुछ नहीं।
0: ग्लासगो में भारतीय जूडो दल ने 2 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। अस्मिता डे ने महिला 48 किलोग्राम भार वर्ग फाइनल में कनाडा की हेदी क्वाश को गोल्डन स्कोर में हराकर भारत की पहली कॉमनवेल्थ गेम्स जूडो चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इसके बाद हर्ष सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया और कॉमनवेल्थ गेम्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष जूडोका बन गए। यामिनी मौर्य ने महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग के बेहद कड़े गोल्डन स्कोर फाइनल में इंग्लैंड की एसेलिया टॉपराक के खिलाफ खेलते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। वहीं उन्नति शर्मा ने महिलाओं के 63 किलोग्राम भार वर्ग में साउथ अफ्रीका की स्काई को महज 67 सेकंड्स में इपॉन से हराकर ब्रॉन्ज जीता और भारत का 4 मेडल टैली पूरा किया। भारत के लिए ये 2 गोल्ड मेडल्स ग्लासगो को जूडो के इतिहास में एक ऐतिहासिक ब्रेक थ्रू एडिशन बनाते हैं।
1: अब बात करते हैं लॉन बोल्स की। चार इवेंट, छह एथलीट्स। पुरुषों की जोड़ी नवनीत सिंह और दिनेश कुमार, इन्होंने ग्रुप स्टेज में लगातार चार जीत के साथ मजबूत शुरुआत की, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ एक अहम टाई ब्रेक हारने के कारण वे मेडल राउंड में नहीं पहुंच पाए। पुरुषों का सिंगल्स पुतुल

0: सोनोवाल के द्वारा भारत ने खेला। इन्होंने अपने पहले मैच में मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन रायन बेस्टर, जो कनाडा के हैं, उनको एक रोमांचक टाई ब्रेक में हराकर सुर्खियां बटोरी। महिलाओं की जोड़ी रूपा रानी तिर्की और पिंकी की थी, मेडल की दौड़ में शामिल होने के लिए आगे नहीं बढ़ पाई। यानी लॉन बोल्स इवेंट में इस बार कोई मेडल हासिल नहीं हुआ।
1: 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल में भारत की महिला टीम ने अपना कॉमनवेल्थ गेम्स डेब्यू किया, लेकिन अपने तीनों ग्रुप मैचेस हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई। वहीं आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स में भी भारत बिना किसी मेडल के वापस लौटा। इसके अलावा स्विमिंग में भी भारत को कोई मेडल नहीं मिला।
0: Well then, the Commonwealth Games 2026 have come to an end. Australia topped the final medal standings at the Commonwealth Games with 70 gold medals and 170 medals in all. India finished fourth with 13 golds, 17 silvers and 9 bronze medals.

0: Well then, it was a spectacular closing ceremony.
1: Absolutely. What a stellar show it turned out to be. With that, it is our editor Vandana, producer Shahnawaz Khan, my co-host Manish Jolly, and me Megha signing off. Thank you so much for joining.
2: Glasgow.
3: The Commonwealth Games.
4: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
5: भारत 2-1 से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन।
6: हिस्ट्री मेड इन टैम्परे, हिमा दास हैज डन इट। इंडिया विन बाय 137 रन्स, दे गो 2-1 अप इन द सीरीज।
0: स्पोर्ट्स पल्स।
7: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात साथियों, शिवेंद्र का प्यार भरा नमस्ते स्वीकार कीजिए। और आप कुछ देर पहले जो रिपोर्ट सुन रहे थे वो थी राष्ट्रमंडल खेलों के ऊपर। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो चुका है ग्लासगो में। ग्लासगो दरअसल उन शहरों में शामिल हो गया है जिसने दो बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया है। 2014 में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे ग्लासगो में, और उसके बाद 2026 में बारी आई, सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। हालांकि नंबर ऑफ इवेंट्स यानी स्पर्धाएं कम थीं 2022 की तुलना में, जब बर्मिंघम में आयोजन हुआ था। और जाहिर सी बात है कि जब स्पर्धाएं कम थी तो भारत का जो कंटिंजेंट था, यहाँ भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो भारत का जो दल था वो भी छोटा था, और जो मेडल्स की संभावना थी वो भी कम ही रहने वाली थी। लेकिन उसके बावजूद भारतीय दल ने बहुत ही यादगार, दमदार, शानदार, रोमांचक परफॉर्मेंस दिए, एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज कारनामे हुए। और सबसे जो इंटरेस्टिंग या सबसे चमकदार सी बात हुई, वैसे तो सारे ही जो मेडल हैं उनकी चमक अपने आप में बहुत ही अमेजिंग रहती है और बहुत ही यादगार रहता है किसी भी खिलाड़ी का पोडियम फिनिश करना ऐसे मेगा स्पोर्टिंग इवेंट में। लेकिन खास तौर पर मुक्केबाजी में भारतीय खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। 10 बॉक्सर्स थे, 10 फाइनल में पहुंचे, 7 स्वर्ण पदक भारत ने जीते और 3 सिल्वर मेडल जीते भारत ने, और 5 भारतीय बालाओं ने स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की, और उनमें जैस्मिन लंबोरिया भी शामिल थी जो कि भारत के एक और बहुत ही उम्दा मुक्केबाज हुए हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया था। वो थे हवा सिंह और उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर हैं जैस्मिन लंबोरिया। तो खेलों की ये एक बड़ी खासियत है कि अलग अलग पीढ़ियां खेल के मैदान पर अपनी नुमाइंदगी पेश करती रहती हैं अलग अलग अंदाज में। और रंगारंग समापन हुआ, ऑफकोर्स उसके बारे में हम बात करेंगे, कुछ खिलाड़ियों से आपकी ये मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का नाम रोशन किया। लेकिन रविवार को साथियों एक और बहुत ही बेहतरीन खबर आई, और वो आई बैडमिंटन कोर्ट से। भारतीय युवा शटलर तन्वी शर्मा ने इतिहास रच दिया है। 17 वर्ष और 222 दिन की उम्र में तन्वी ने ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही इस टूर्नामेंट का टाइटल जीतने वाली वो सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड ताइवान के दिग्गज खिलाड़ी ताई जुयिंग के नाम था जिन्होंने 18

0: साल 85 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की थी। 2-0 से यह मुकाबला अपने नाम किया तन्वी ने। फाइनल मुकाबले में वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी लूथी गुयेन को सीधे गेम्स में उन्होंने हराया। स्कोर लाइन रही तन्वी के पक्ष में 21-16। तन्वी का यह पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल है। इंटरेस्टिंगली, इससे पहले तन्वी कई बार सुपर 300 टूर्नामेंट्स के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन खिताब नहीं जीत पाई थी। फाइनल में ही उनको हार से 2-4 होना पड़ा था, और जिसमें ओडिशा सुपर 300 टूर्नामेंट शामिल था, गुवाहाटी में सुपर 300 टूर्नामेंट होता है, वहां पर भी वो फाइनल में पहुंची थी। गुवाहाटी तन्वी शर्मा के लिए यादगार एक और लिहाज से भी है, क्योंकि जूनियर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था गुवाहाटी में, और वहां पर तन्वी शर्मा ने इंडिविजुअल मेडल भी जीता था और टीम के साथ भी भारत को पदक दिलाया था। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पंजाब की रहने वाली है तन्वी शर्मा, उन्होंने फाइनल मुकाबला 36 मिनट में जीता। पिछले साल US ओपन सुपर 300 में उप विजेता रही थी तन्वी, और पिछले साल यानी 2025 में जो US ओपन था वो भारत के आयुष शेट्टी ने जीता था। हम कई बार अपने प्रोग्राम में उसका जिक्र कर चुके हैं। तो 2025 बैडमिंटन के लिहाज से उतना बेहतरीन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहा था, क्योंकि आयुष शेट्टी ने US ओपन का खिताब जीता साल की शुरुआत में। जनवरी में US ओपन टूर्नामेंट हुआ था, और उसके बाद साल के विदा लेते लेते लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता था। लेकिन 2026 भारत के लिहाज से अच्छा रहा है, क्योंकि जनवरी के महीने में साल की शुरुआत में दीपिका सिहाग ने टाइटल जीता, उसके बाद अभी भी पी वी सिंधु ने दोबारा खिताब जीत करके पोडियम फिनिश किया है, और अब तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन का खिताब जीतने में कामयाबी हासिल की है। 2008 में साइना नेहवाल ने ताइपे ओपन का टाइटल जीता था, उसके बाद महिला सिंगल्स का खिताब इस टूर्नामेंट में जीतने वाली तन्वी पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। 2025 में तन्वी ने डेनमार्क चैलेंज जीता, 2025 में ओडिशा मास्टर्स, जैसे हमने कहा सुपर 100, उसमें उपविजेता रही। गुवाहाटी मास्टर्स सुपर 100 में उपविजेता रही 2025 में ही, यानी पिछले साल। 2024 में बॉन इंटरनेशनल खिताब जीता। 2024 में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, वहां पर भी तन्वी शर्मा भारतीय टीम की सदस्य थी। और जूनियर वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, जैसा हमने जिक्र किया था, वहां पर तन्वी ने सिल्वर मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की थी। और तन्वी को पीवी सिंधु के पूर्व मेंटर पार्थी सिंह कोचिंग दे रहे हैं, और बड़ी एक भावनात्मक, एक इमोशनल सी बात रही। खिताबी जीत के बाद तन्वी ने अपना जो स्वर्ण पदक था वो उतार करके कोच पार्श देसांग के गले में डाल दिया। दोनों ने साथ में फोटो खिंचवाई। साथियों, एक बहुत ही हार्टनिंग फैक्टर है भारतीय महिला बैडमिंटन के लिहाज से, जहां पर पीवी सिंधु और साइना नेहवाल ही ध्वजवाहक रही हैं, लेकिन हाल के दिनों में जैसा हमने नाम लिया, उन्नति हुड्डा जो इस टूर्नामेंट में भी खेल रही थी और सेमीफाइनल में हारी, उनके अलावा देविका सिहाग भी खेल रही थी, इसके अलावा और भी खिलाड़ी हैं, तस्नीम मीर हैं जो कि अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं, आकर्षि कश्यप हैं, मालविका बंसोड़ हैं। तो अगर आप BWF की रैंकिंग को आज की तारीख में देखने के लिए जाएंगे तो टॉप 100 में जो लेटेस्ट रैंकिंग है उसमें कम से कम 13 या 14 भारतीय महिला खिलाड़ी शामिल हैं, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि भारतीय महिला बैडमिंटन भी भारतीय पुरुष बैडमिंटन की तरह प्रगति के पथ पर अग्रसर है। और अगले महीने ही एशियाई खेलों का आयोजन होने वाला है जापान में, और ऑफ कोर्स राष्ट्रमंडल खेलों में इस बार बैडमिंटन शामिल नहीं था, लेकिन एशियाई खेलों में तो बैडमिंटन है, और बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बहुत से ऐसे खेल हैं जो एशियाई खेलों में कहा जाता है कि अगर वहां पर आप मेडल जीतते हैं तो शायद वो एक सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन होता है। और जाहिर सी बात है कि तन्वी शर्मा अगर मेरिट के हिसाब से क्वालिफाई करेंगी तो वहां पर अपनी चुनौती पेश करते हुए नजर आएंगी। हालांकि लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु के वहां पर रहने की पूरी उम्मीद है, और तन्वी शर्मा की ये जो सफलता थी ये बहुत ही अहम है, क्योंकि इन्होंने अपने करियर का पहला सुपर 300 टाइटल जीता है। तन्वी अपनी जीत को कैसे शब्द दे रही थी, आइए सुनते हैं।
1: Really very very happy to win this title. I didn't expect that to win a title, but yeah, I just thought I'll give my best over here. I was going step by step, match by match. Pretty much I played really well here. It was pretty hard for me as well, playing 5 matches. Just needed to be consistent. I have to work more hard for playing Super 500 and 750s. So I'll be keep working hard and play well over there.
0: तो तन्वी शर्मा ने अपना पहला खिताब जीता है BWF ओपन का, और उनको हम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं स्पोर्ट्स पल्स के माध्यम से, और उम्मीद

0: करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में उनका प्रदर्शन दिन दूना रात चौगनी उन्नति करता रहे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग समापन हो चुका है, 11 दिन तक चले साथियों ये मुकाबले। और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट डॉक्टर डोनाल्ड रुका ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान भारत को मशाल सौंपी। क्लोजिंग सेरेमनी में यहां नीरज चोपड़ा मौजूद थे, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा मौजूद थी और गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी भी मौजूद थे। और भारतीय प्रदर्शन भी, भारतीय कल्चरल परफॉर्मेंस भी हुआ, जैसी कि परंपरा है जो अगला मेज़बान होता है उसकी एक सांस्कृतिक झलक पेश करने की कोशिश की जाती है। क्लोजिंग सेरेमनी में शंकर महादेवन, मानुषी छिल्लर, सितार वादक ऋषभ शेखीराम और भूमि त्रिवेदी जैसे भारतीय खिलाड़ियों ने इंडियन ट्रेडिशंस में गेम का, यानी भारतीय परंपरा के अनुसार गेम का स्वागत किया। ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है, कनाडा ने 4 बार, स्कॉटलैंड ने 4 बार और इंग्लैंड ने 3 बार, न्यूजीलैंड ने 3 बार, वेल्स में 1 बार हुए हैं 1958 में, जमैका में 1 बार 1966 में, मलेशिया में 1 बार राष्ट्रमंडल खेल 1998 में ऑर्गेनाइज किए गए। भारत में आप सभी जानते हैं 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था और उसके बाद अब यानी 2030 में 4 साल बाद इन खेलों का मेला सजेगा अहमदाबाद में, जहां पर हम उम्मीद करेंगे जैसा 2010 में हुआ था, भारत ने मेडल टैली में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, उसी प्रदर्शन को और बेहतर करने की कोशिश होगी। भारत की 6 में से 5 महिला बॉक्सर्स कॉमनवेल्थ खेलों में, राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने में सफल रही, जिनमें साक्षी चौधरी, प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, प्रिया घंगस और अरुंधति चौधरी शामिल थी। और महिला और पुरुष मिलाकर के 10 मुक्केबाजों ने फाइनल खेले, 7 को मिला स्वर्ण, 3 को मिला रजत। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष अजय सिंह इस प्रदर्शन से बेहद खुश दिख रहे थे।
1: It has been a historic last 2 days, winning 7 golds and 3 silver medals. This is the largest ever number of golds and the best performance of any country ever in the 100-year history of the Commonwealth Games.
0: अजय सिंह ने जो भारतीय मुक्केबाजों की जो सफलता थी उसे शब्दों में व्यक्त किया और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा, जैसे हमने कहा कि क्लोजिंग सेरेमनी में मौजूद थी, पीटी उषा भारतीय एथलीट्स के प्रदर्शन के बारे में क्या कह रही थी, आइए सुन लेते हैं।
2: Very limited events here it is happened, you know, 10 events only, but our major events is outside. This is a very big achievement and great achievement from our athletes. Minister, Honorable Prime Minister itself is supporting sports. So 8 times they have allotted the Hello India money for the players, 8 times increase. Indian Olympic Association is also making it in athletics centric. Government and IOA is in a one line. That is why the performance is coming in a good way. Hope that we will come very soon in world class level.
0: कहते हैं ना साथियों, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, और जब कामयाबी मिलती है तो सब चीज़ें बेहतर होती हुई प्रतीत होती हैं। खेलो इंडिया का बजट भी बढ़ा दिया गया है, जैसा पीटी उषा जिक्र कर रही थी, तो खेलों को लेकर के एक नई जागरूकता, एक नई क्रांति सी हमारे मुल्क में दिख रही है और उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। अस्मिता दे एक ऐसी खिलाड़ी जो कि त्रिपुरा में सुदूर एक गांव है बेलोनिया, वहां से आती हैं और उन्होंने जूडो में भारत को राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास का पहला स्वर्ण पदक दिलाया। अस्मिता दे अपनी सफलता के बारे में क्या कह रही थी।
3: मुझे कभी ये नहीं लगा कि मेरे से ज्यादा कोई स्ट्रांग है, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि ये मेरी पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स है और मैं इसमें गोल्ड मेडल जीती हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ी बात है।
0: अस्मिता डे के लिए सबसे बड़ी बात थी और हमारे लिए भी सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि अस्मिता डे ने पहली बार ऐसा हुआ जबकि उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। और एक और एथलीट थे तेजस्विन शंकर, जिन्होंने 2022 में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था और वो था लॉन्ग जंप में, और 2026 में उन्होंने डिकैथलॉन में यानी 10 खेलों की जो स्पर्धा होती है वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता। और ऑफ कोर्स अब सभी खिलाड़ी जिन्होंने मेडल जीते हैं राष्ट्रमंडल खेलों में वो लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के बारे में बात कर रहे हैं। तेजस्विन शंकर क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं।
4: It's pretty good actually. Obviously special. 4 years ago I had a bronze in the high jump and 4 years later to be able to win a medal in decathlon. I think it's just a dream come true. There's a lot of scope for improvement and between now and LA that's the goal, is to try and, you know, fix those events, get them up to standard and hopefully be competitive there.
0: जी हाँ, कॉम्पिटिटिव तो तेजस्वी शंकर हमेशा ही से दिखे पूरे ट्रैक में और फील्ड में जो उन्होंने मुकाबले खेले डिकैथलॉन में, जिसमें 10 स्पर्धाएं होती हैं, जिसको कहा जाता है कि सबसे ध्रुव स्पर्धा है। और नीरज चोपड़ा भारत के एथलीट जो कि मल्टीपल टाइम्स इंटरनेशनल मुकाबलों में मेडल जीत चुके हैं, उन्होंने जेवलिन में सिल्वर मेडल जीता, भारत के

0: ही यशवीर सिंह को कांस्य पदक हासिल हुआ। नीरज चोपड़ा कमबैक कर रहे हैं और सिल्वर मेडल जीत करके, रजत पदक जीत करके वो संतुष्ट दिखे।
1: मैंने भी अपना सीजन बेस्ट किया है और कमबैक ठीक हो रहा है। अभी बाकी कॉम्पिटिशन भी है, आज सिल्वर मेडल है और अभी ट्राई करेंगे कि अभी नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में धीरे धीरे और बढ़ाए।
0: जी हाँ, नेक्स्ट कंपटीशन में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई नीरज चोपड़ा ने। अब कंपटीशन सबसे बड़ा तो एशियाई खेल है जो कि सितंबर के महीने में यानी अगले महीने ही होने वाले हैं जापान में। प्रीति पवार भारत की मुक्केबाज थी जिन्होंने गोल्ड मेडल पंच लगाने की शुरुआत की थी बॉक्सिंग रिंग में ग्लास्को में, और प्रीति पवार अपनी सफलता को लेकर के बेहद बेहद खुश दिख रही थी।
2: Really excited and so happy that I won gold medal here. I just gave my best. Definitely I am aiming for LA 2028 and I hope and wish that I'll be part of LA 2028 and give my best for India.
0: उम्मीद करेंगे कि जिन खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं ग्लास्को राष्ट्रमंडल खेलों में वो एशियाई खेलों में भी जाएं, और ऑफ कोर्स राष्ट्रमंडल खेलों में, एशियाई खेलों में, उसके बाद ओलंपिक खेलों में भी जाएं। कुछ और खबरें आपके साथ शेयर कर लेते हैं। भारत श्रीलंका टेस्ट श्रृंखला के लिए टीम का ऐलान हो गया है। 15 अगस्त से 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज शुरू होगी। वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप कैनेडा ओंटेरियो में चल रही थी, वहां पुरुष वर्ग में भारत ने कांस्य पदक जीता टीम स्पर्धा में, और महिला वर्ग में भारतीय टीम मेडल हंट में आई जरूर लेकिन बाहर हो गई। बर्थडे की बात करते हैं। 3 अगस्त आज के दिन सुनील छेत्री फुटबॉलर अपना बर्थडे मना रहे हैं। रेयान पांचा स्विमर अपना बर्थडे मना रहे हैं। 4 अगस्त को उधम सिंह हॉकी खिलाड़ी जी, उनका बर्थडे होता है। भाग्यश्री थिप्से जो कि भारत की चेस प्लेयर थी, उनका बर्थडे होता है। 5 अगस्त को अंशु मलिक रेसलर अपना बर्थडे मनाती हैं। वेंकटेश प्रसाद क्रिकेटर अपना बर्थडे मनाते हैं। 6 अगस्त को नरसिंह पंचम यादव भारत के रेसलर अपना बर्थडे मनाते हैं। 7 अगस्त को दीपक चहर अपना बर्थडे मनाते हैं। तो फिलहाल बर्थडे की इस बातचीत के साथ ही स्पोर्ट्स कैन का ये संस्करण, स्पोर्ट्स पल्स का यह संस्करण समाप्त करने की अनुमति दीजिए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: भारत को एक से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन।
4: हिस्ट्री मेड इन टैम्परे, हिमा दास हैज डन इट। इंडिया विन बाय 137 रन्स, दे गो 2-1 अप इन द सीरीज।
5: स्पोर्ट्स पल्स।
6: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे खेल गतिविधियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स।
7: पेश है अब तक एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक बताया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभाओं की 3 सीटों का उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू। ब्रिक्स देशों के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की। त्रिसैन्य भावी युद्ध कला पाठ्यक्रम का 4वां संस्करण आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का यह पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है और संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र द्वारा समन्वित है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तक 88,06,000 से अधिक गणना परपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत लगभग 1,45,00,000 परपत्र वितरित किए गए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर का पहला श्रावण पालकी जुलूस निकाला जाएगा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल एक शांति रैली के दौरान पुलिस स्टेशन पर हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 14 लोग मारे गए और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। ग्लास्को राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार औपचारिक रूप से सौंपे गए। तो ये तो थे अब तक एफएम रेनबो मुख्य समाचार। सुनते रहिए आईआर एफएम रेनबो, दिल से दिल तक।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी 102.6 पर प्रोग्राम।
2: जी हाँ, आकाशवाणी AIR FM रेनबो। और एक बार फिर आपका स्वागत है आकाशवाणी FM रेनबो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR लेकर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त RJ वीर दमन। एक बार फिर मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लवली लिसनर्स।

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर आपके साथ हूं मैं आपका दोस्त वीर धवन सिंह। आई होप इस वक्त कुछ हमारे दोस्त ड्राइव कर रहे होंगे और कुछ हमारे दोस्त इस वक्त घर से ऑफिस के लिए निकलने की तैयारी कर रहे होंगे और

और इस अलग अलग चरणों में मेट्रो का परिचालन शुरू होगा। जो हिस्सा पहले तैयार होगा उस पर परिचालन पहले से शुरू किया जा सकता है। और पूरी लाइन पर जैसे मैंने आपको बताया कि 15 स्टेशन्स बनेंगे, जिनमें 11 भूमिगत स्टेशन्स होंगे। तुगलकाबाद एरो सिटी मेट्रो लाइन की परियोजना फेज 4 के 3 प्रमुखता वाले कॉरिडोर का हिस्सा रही है। इस कॉरिडोर के भी 3 हिस्से हैं, जिसके तहत तुगलकाबाद से आनंदमयी मार्ग तक 2.65 किलोमीटर भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर के लिए सुरंग का काम पहले ही पूरा हो चुका है। और इस हिस्से पर आनंदमयी मार्ग, तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी व तुगलकाबाद, इन 3 स्टेशनों का कार्य प्रगति पर है। और वहीं संगम विहार से साकेत जी ब्लॉक तक 4.27 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड होगा। तो अगर ये यहाँ पर स्टेशन बन जाएंगे तो ट्रैफिक से भी थोड़ी निजात मिलेगी, और आप आसानी से अगर अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचना चाहते हैं तो मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। और अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हैं या कहीं जा रहे हैं तो आप हमें ट्रैफिक अपडेट्स देख सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। अपने नाम और जगह के नाम के साथ आप भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर।

0: जी हाँ, सिग्नल सिग्नल को हमेशा फॉलो कीजिए, ट्रैफिक सिग्नल हो। अगर ट्रैफिक सिग्नल को आप फॉलो करेंगे तो चालान से भी बचे रहेंगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अपने जो भी आपके ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो ज़रूर कीजिए, ठीक है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और उसके बाद फिर आता हूँ। बातों का सिलसिला चलता रहेगा आकाशवाणी एफ एम रेनबो 102.6 पर, दिल से दिल तक।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफ एम रेनबो

और दोस्तों आपको मैं वेदर अपडेट भी दे देता हूं कि मौसम आज कैसा है। जी हाँ, दिल्ली में अधिकतम तापमान लगभग 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने की संभावना है और गरज के साथ बौछारें और हल्की बारिश हो सकती है। वैसे दिल्ली के कई इलाकों में रविवार को दोपहर के वक्त तेज हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई। बारिश के चलते तापमान में मामूली गिरावट भी आई। इस दौरान ठंडी हवाओं ने मौसम को भी खुशनुमा बना दिया था। हालांकि इस राहत के साथ कई इलाकों में थोड़ा जलभराव भी हुआ, ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो 4 अगस्त को येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने और 8 अगस्त तक रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है, तो अगर आप घर से निकल रहे हैं तो छाता लेकर निकलें, क्योंकि मौसम का पता नहीं है कि मौसम कब बदल जाए, क्योंकि ये मौसम का जादू है और इस जादू से कौन बच पाया है।

0: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
1: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
0: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
1: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक YouTube चैनल पर लाइव प्रसारण।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर आपके साथ हूं मैं आपका दोस्त वीर धवन आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर। दिल्ली में कांवड़ियों के स्वागत को बनेंगे 20 भव्य स्वागत गेट। यात्रा के अंतिम दिनों में होगी पुष्प वर्षा। दिल्ली में कांवड़ियों के स्वागत के लिए 20 स्वागत गेट बनाए जाएंगे जिनमें जिनके नाम देवताओं पर रखे होंगे। कांवड़ यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जिनमें पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात हैं और शिविरों में सुविधाएं भी दी जा रही हैं। और आपको बता दें कि जाफराबाद रोड पर वेलकम डीडीए फ्लैट्स की तरफ जाने वाली सड़क को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया है और जाफराबाद रोड कावड़ मार्ग है। वहीं शादरा जीटी रोड पर सड़क पर शिविर लगाने से वाहन धीमी गति से चल रहे हैं और कई जगह डाइवर्जन्स हैं।

और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की अपडेट के अनुसार कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से 11 अगस्त 2026 के चलते सिंघू बॉर्डर मुकरबा चौक वजीराबाद रोड पर भारी जो माल वाहनों के लिए डायवर्जन और पाबंदियां लागू हैं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन नंबर 1095 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और कांवड़ यात्रा का जो वो है 9 अगस्त से लेकर 4 अगस्त के बीच कांवड़ियों की भारी भीड़ के कारण पश्चिमी और उत्तर दिल्ली के कई मार्गों पर यातायात प्रभावित रहेगा और कई जगह डायवर्जन रहेंगे। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जाने वाले भारी माल वाहनों को रिंग रोड से शास्त्री पार्क खजूरी और भजनपुरा की ओर जाने की अनुमति नहीं है। मुकरबा चौक से वजीराबाद जाने वाले माल वाहनों को सिग्नेचर ब्रिज या पुराने वजीराबाद पुल की बजाय चांदी राम अखाड़ा की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं दिल्ली NCR। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। और अगली खबर है कि ग्रेटर नोएडा के गांवों को जोड़ने वाली सड़कों पर लगेंगी एलईडी स्ट्रीट लाइट्स। जी हाँ, ये एक पॉजिटिव खबर है और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के गांवों को जोड़ने वाली सड़कों पर रात के अंधेरे में अब राहत मिलेगी और प्राधिकरण ने इन सड़कों पर एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगाने का फैसला लिया है। और अभी तक गांव को मुख्य मार्गों से जोड़ने वाली जो सड़कें थी उन पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी। उजाला ना होने के कारण रात में हादसों का खतरा बना रहता था। राहगीरों, दोपहिए, चार पहिए वाहन जो थे उनकी चालकों को आवाजाही में बड़ी दिक्कत आती थी, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटना होती रहती थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब ये फैसला लिया गया है कि जो भी गाँव को जोड़ने वाली सड़कें हैं उन पर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी। आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर आप ट्रैफिक अपडेट्स हमें भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंसे हैं या फिर आप कहीं जा रहे हैं और ट्रैफिक स्मूथ है तो उसकी अपडेट्स भी हमें अपनी जगह के साथ, अपने नाम के साथ हमें भेज सकते हैं। फिलहाल आपके लिए एक और ब्यूटीफुल ट्रैक और उसके बाद कुछ और खबरों का और बातों का सिलसिला चलता रहेगा आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर। दिल से दिल तक।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: जी हाँ, ये है आकाशवाणी FM रेनबो और आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, और आपके साथ हूं मैं आपका दोस्त RJ वीर दमन सिंह। और हमारे पास एक ट्रैफिक अपडेट आया है जो मिस्टर वीपी जैन ने भेजा है दिलशाद गार्डन से। कह रहे हैं कि यहां पर अभी शुरुआत हुई है और यहां से अभी ट्रैफिक हैवी होना शुरू हो गया है। दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन से अगर आप ISPT की तरफ जा रहे हैं, और धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ता ही जाएगा, तो अगर आप इस तरफ से आ रहे हैं तो अकॉर्डिंगली अपने टाइम को प्लान करके चलिएगा कि आप थोड़ा ट्रैफिक में आपको वेट करना पड़ सकता है। थैंक यू सो मच मिस्टर वीपी जैन, आपने हमें ये ट्रैफिक अपडेट भेजा। और राजेश भल्ला एडवोकेट कंकड़खेड़ा मेरठ से लिख रहे हैं कि कांवड़ यात्रा दौरान गली मोहल्लों में सन्नाटा है, स्कूल भी बंद है, लेकिन रौनक जो है ना बाईपास में है, जिसमें एक साइड में कांवड़ यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ हल्के वाहन चल रहे हैं। क्या बात है। जी हाँ, जब कांवड़ यात्रा होती है तो इस दौरान काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ होता है आसपास, और बिल्कुल हर तरफ जो होता है पूजा पाठ का माहौल होता है और कई जगह जो है स्टॉल्स भी लगे हुए होते हैं। थैंक यू सो मच हमें ट्रैफिक अपडेट भेजने के लिए। दोस्तों, आप भी हमें ट्रैफिक अपडेट भेज सकते हैं, और मैं यही कहूँगा कि आप अपने नाम और जगह के नाम के साथ भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। और राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। गुड मॉर्निंग, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। और ईश्वर चंद प्रजापति दिल्ली बवाना से लिख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल ट्रैफिक स्मूथ है, यहाँ कोई ट्रैफिक जाम नहीं है। और अनूप कुमार झारखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, पॉजिटिव वाइब्स के साथ। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप भी दिल्ली में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, दोस्त कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, तो आप हमें ट्रैफिक अपडेट्स भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6 पर। दिल से दिल तक प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। और अगली खबर है, नीट UG 2026 काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो गया है। पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त से शुरू होकर 12 अगस्त 2026 तक चलेंगे और सीट आवंटन का परिणाम 17 अगस्त को आएगा। काउंसलिंग की मुख्य जो तारीखें हैं वो हैं 5 अगस्त पहली है पंजीकरण, जिस दिन शुरू होगा। पंजीकरण की अंतिम तारीख है 12 अगस्त दोपहर 3 बजे तक आप ये आवेदन कर सकते हैं। और चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के लिए 6 अगस्त 2026 से सीट आवंटन परिणाम जो है वो 17 अगस्त 2026 और कॉलेज में जो रिपोर्टिंग और प्रवेश है वो 18 अगस्त से 22 अगस्त 2026 तक की ये तारीख है। और उम्मीदवार आधिकारिक जो वेबसाइट है MCC ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बुलेटिन और नियम देख सकते हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: जी हाँ, ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त वीर दमन सिंह। और हमें एक ट्रैफिक अपडेट भेजी है अमन मनचंदा जी ने। अमन मनचंदा जी जो कि इस वक्त शायद अक्षरधाम से अपने ऑफिस के लिए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि ट्रैफिक जाम है अक्षरधाम के पास ड्यू टू ऑफिस आवर्स, और तो इसलिए अपना जो टाइम का शेड्यूल है, टाइम की प्लानिंग वो लेकर चलें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक मिल सकता है। और सुमन मलिक मेरठ से कह रहे हैं कि ट्रैफिक अपडेट है कि हम सभी ट्रैफिक नियम का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें और कांवड़ियों के लिए रास्ता अवश्य दें, जिससे कांवड़ियों को रास्ता मिले और वहाँ उनको कोई असुविधा ना हो। और अगला मैसेज हमें भेजा है शोभित ने, कह रहे हैं कि 15 मिनट का ट्रैफिक जो है जाम है छतरपुर, वहाँ पे वेटिंग टाइम है MG रोड छतरपुर पर, अगर आप गुरुग्राम की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। और विशाल मल्होत्रा सिरसा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। दिनेश कुमार काठमांडू नेपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। और विजा राम बाढ़ में राजस्थान से कह रहे हैं कि मौसम बड़ा सुहाना है रेनबो के साथ, तो भाई क्या बात है, थैंक यू सो मच, आप सभी का दिल से धन्यवाद। और हमारे साथ ईश्वर चंद प्रजापति दिल्ली बवाना से जुड़े हुए हैं, आपका भी तहे दिल से स्वागत है। अब दोस्तों मेरा भी आपसे विदा लेने का वक्त आ गया, और आपको बता दें कि अगला प्रोग्राम दिल के तराने गाने नए पुराने लेकर आपके साथ रहेंगी निशा तंवर, और उसके बाद आप सुनेंगे मैचलेस म्यूजिक आर। जी हाँ, मैचलेस म्यूजिक आर आप सुनेंगे पूजा आनंद के साथ वेस्टर्न म्यूजिक, और उसके बाद आकृति खंडूरी लेकर आएंगी बॉलीवुड ट्रेल्स 11 बजे, और 11 बजे बॉलीवुड ट्रेल्स, और उसके बाद 1 बजे आप सुनेंगे रेनबो हेल्पलाइन आकृति खंडूरी के साथ। और वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम प्ले इट कूल रहेगा 12 बजे, और जिसमें आपके साथ रहेंगी पूजा आनंद, और शालिनी खंडेलवाल लेकर आएंगी आशियाना दोपहर 2 बजे, और 3 बजे रेडियो डॉक्टर आप सुनेंगे, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है डेंगू कॉजेज एंड सिम्टम्स एंड क्योर। एक्सपर्ट रहेंगे डॉक्टर SK रसानिया, प्रोफेसर ऑफ एक्सीलेंस LHMC लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली के, और जिसके संचालन करेंगी शालिनी मित्तल। और अल्फा जैन आप सुनेंगे शाम 4 बजे शालिनी खंडेलवाल के साथ, और जिसमें यूथ स्पीक्स होगा, आज की गेस्ट हैं विक्रांत शर्मा। सिटी राइट्स आप सुनेंगे प्रियंका मामगिन के साथ 5 बजे, और शाम को मैसेज मसाला मिक्स सुनेंगे नीरजा चतुर्वेदी के साथ 6 बजे। तो अब वीर दमन को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए सफर पर, अपना ख्याल रखिएगा, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच।

एफएम रेनबो पर अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक बताया। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। त्रिसैन्य भावी युद्धकला पाठ्यक्रम का 4वां संस्करण आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का यह पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है और संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र द्वारा समन्वित है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तक 88,06,000 से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा हो गया है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत लगभग 1,45,00,000 प्रपत्र वितरित किए गए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर का पहला श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल एक शांति रैली के दौरान पुलिस स्टेशन पर हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 14 लोग मारे गए और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। केरलम में मूसलाधार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने सभी 14 जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का संभावना व्यक्त की है। राज्य में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार औपचारिक रूप से सौंपे गए। ये थे आकाशवाणी रेनबो पर इस घंटे की खास खबरें।

0: आपकी वाणी
1: मंडे मॉर्निंग में यस आकाशवाणी 102.6 पर मैं निशा यहाँ आ गई हूँ लेकर दिल के तराने गाने नए पुराने और ये है वही खासम खास प्रोग्राम जहाँ पर आपको नए गानों के साथ साथ तीन खास रेट्रो गानों का एक तड़का भी मिलता है। तो ये तड़का इससे पहले हम लगाए आपको बता दूं कि आज के जो तीन रेट्रो गाने मैंने रखे हैं ना क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है बहुत सारे लोगों ने आज उपवास रखे हैं तो आप स्वस्थ रहे और इसी तरह जीवन में उपवास रखने का मौका आपको लगातार मिलता रहे यही कामना मैं आपको कर रही हूँ।

और बहुत ही सभी शिव भक्त को भक्तों के लिए एक बहुत ही खास भजन भी, मतलब कि कहूँ गीत चलाने वाली हूँ। और आपको बता दूँ कि सावन स्पेशल सॉन्ग होंगे आज हमारे रेट्रो गीतों में, तो वो भी जरूर एंजॉय कीजिएगा। बने रहिए आकाशवाणी पर, दिल के तराने गाने नए पुराने। मैं निशा।

तीन अगस्त का दिन है, हमारी तो मुलाकात हो ही गई है। मेरा नाम है रिश्रा, दिल के दरानी, गाने नए पुराने 102.6 FM पर आप सुन रहे हैं, 9:13। और अब पहला रेट्रो गीत आपको सुनवाई देती हूँ। जैसे कि पहले कहा था, सावन की बात आज होगी क्योंकि सावन का पहला सोमवार है और साथ ही ये सावन का महीना बहुत सारी बारिश हमें देने वाला, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। दो ये प्रेडिक्शंस बहुत पहले से हमें सुनने को मिल रही थी कि इस बार का ये सावन में कुछ खास बारिश नहीं होगी, लेकिन ठीक है, कल एकदम से ही सही, लेकिन बहुत तेज़ बारिश आई थी, है ना। तो इसीलिए मेरा मन किया कि क्यों ना ये जो हॉट कोल्ड और थोड़ा सा ये ग्रीसी वेदर जो होता है ना, तो क्यों ना ये सब मुश्किलों को या परेशानियों को एक साइड रखकर उस एरा, इस चीज़ पर, इस ब्यूटीफुल बारिश पर या सावन पर जो हमारे हिंदी सिनेमा में गाने बने हैं, तो क्यों ना वो खास रेट्रो गीत मैं आज आपके लिए लेकर आऊँ। तो यस, मैं पहली फिल्म जिसका गाना आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि सावन की ही कहानी हमारे सामने कह रहा है, वो है मिलन फिल्म। ये फिल्म आई थी 1967 में और इसमें राधा और गोपीनाथ की कहानी थी। ये सुंदर जो कैरेक्टर

0: बहुत खूबसूरती के साथ प्ले किए थे सुनील दत्त और नूतन जी ने, आपको गाना याद आ ही गया होगा। ये मिलन फिल्म थी, एक तेलुगु फिल्म की रीमेक, और इसका संगीत दिया था हमारे प्यारे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल साहब ने। तो बिना समय गवाए ये खूबसूरत गाना हमारे लता जी की आवाज़ में आपके कानों तक ले ही आते हैं। ठीक है, इंजॉय कीजिए ओनली ऑन 102.6 एफएम रेनबो। मैं निशा हूँ आपके साथ।
1: शोर।
2: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
2: हाँ जिया।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।

वेलकम बैक 102.6 एफएम रेनबो. गुड मॉर्निंग. दिल के तराने गाने नए पुराने में मैं निशा हूँ आपके साथ में. और फाइनली फासला मिट गया है हमारे दूसरे रेट्रो गाने के साथ भी. यस, तो यस अब आपके लिए लेकर आई हूँ मैं एक और सावन बेस्ड सॉन्ग. यस, जो आपको इस हल्की फुल्की हमारे भारत के अलग अलग हिस्सों में हो रही और कहीं तेज हो रही बारिश से एक कनेक्ट हमारा इंस्टेंट बिठा देता है. तो यस, अभी जो फिल्म है वो है चुपके चुपके. इसी फिल्म का एक बड़ा ही अच्छा सा गाना ऋषिकेश मुखर्जी साहब ने फिल्म बनाई थी और इसमें धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी और बहुत ही अच्छी फनी रोमांटिक फिल्म बनकर तैयार हो गई थी. जिज्जा जी की इंटेलिजेंस को चैलेंज करने वाली बहुत ही मतलब मास्टरपीस फिल्म थी जिसे सबने बहुत पसंद किया था. और हमारे एसडी बर्मन साहब का संगीत था और गानों के बोल आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे. तो फिर से हम अपनी लता जी को ले आते हैं आपके कानों तक पहुंचाने के लिए. एंजॉय दिस सॉन्ग.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

तीज की खुशियां, मेहंदी के रंग और सावन के झूले, कुछ ऐसा ही महीना है ये खास हमारे दिल के खास हम खास करीब। तो इसीलिए इस सावन के महीने में सावन के ही गीत आपको सुनवा रही हूँ। और अभी इस वक्त जो फिल्म खास मुझे याद आ रही है, दिस इज मेड बाय बासु चैटर्जी, मंजिल इज द नेम ऑफ द फिल्म। 1979 में ये फिल्म आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन और मौसमी चैटर्जी एक दूसरे के ऑपोजिट कास्ट कर रहे थे, मेन लीड एक्टर्स थे, और अमिताभ बच्चन इसमें अमीर बनने की एक्टिंग कर रहे थे। मतलब वैसे तो हम लोग कई तरह से अमीर होते हैं, लेकिन वो जो पैसों वाला अमीर होता है ना, वो इनका कैरेक्टर पैसों वाला अमीर बनने की एक्टिंग करता है जस्ट टू गेट द लव ऑफ हिज लाइफ। तो यस, इसी तरह से बड़ी मुश्किलें इनके जीवन में आ जाती हैं। ये फिल्म कुछ ऐसी ही कहानी कहती है। आर डी बर्मन के संगीत जब बीच बीच में आता है और योगेश के लिखे हुए बोल आते हैं तो दिल को छू जाते हैं वो हमारे, और हमें एक अलग ही जोन में लेकर चले जाते हैं। मतलब एक फिल्म की कहानी चल रही होती है और एक कहानी देखने वाले की होती है। अब एक कहानी इस गाने को सुनने वाले की होगी। सो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 दिल के तराने गाने नए पुराने कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मेरा यहाँ से जाने का समय, लेकिन जाने से पहले बस ये जान लीजिए 11 बजे ठीक होंगी आकृति कंडूरी आपके साथ, लेकर आएंगी बॉलीवुड ट्रेल्स, और उससे पहले यानी कि अभी ठीक 10 बजे मैचलेस म्यूजिक आवर सुनना मत भूलिएगा पूजा आनंद के साथ में। और मैं निशा फिलहाल लेती हूँ विदा, और बाहर बारिश तो नहीं, हाँ बादल छाए हुए जरूर मुझे खिड़की से नजर आ रहे हैं। तो बस सावन के इस मौसम को सावन के गीतों के साथ आपने इंजॉय किया होगा, एंड आई होप you love the show. Thank you so much for listening and have a great day ahead.

0: and watch it. Trust me, it'll become your favorite. It is like a crash course in life. I love that movie. That has the most beautiful acting being done by Amol Palekar. Well, that was a movie that was all about, well, hits and trials. And at least try and say what you want. Well, that many a times it so happens that we try and do things, but they don't come somehow fall in line with what we want. It's something like happens with everyone every day of our life. That's right. I'm sure all of you are saying just that. But this is all about a timid young man who falls in love with Prabha, this gorgeous Vidya Sinha, but is too afraid to share his feelings with her. Everyday situation. And things take a turn when another man, and who is that? Of course, Asrani, who tries to woo Prabha. And then comes Ashok Kumar, Colonel Julius Nagendranath Caesar. Oh, you have to see the movie to believe it. It was produced by B.R. Chopra, directed by Bachu Chatterjee, came way back in 1976. But trust me, this is one movie which has music par excellence given by Salil Chaudhary. Songs are beautiful. The acting is amazing. Movie is simple, but you will fall in love with it. Well, this is a movie which you will not want to miss. So go ahead and check it out. And trust me when I say this is a movie that will make your weekend a bit more happier than usual. You know, movies like Baato Baato Mein, Khatta Meetha, Naram Garam, Choti Si Baat, Khoobsurat, Golmaal, Babarchi, there were so many of them. They were all so simple. Simple storylines, and you fall in love with the movies. At the moment, you'll fall in love with something else. And that is a little break I just need to take. So stay close, stay tuned. We'll be back in just a couple of seconds. Remember, you tuned in live to Akashvani FM Rainbow 102.6, musically yours. My name's Pooja Anand. And this is, of course, a show that simply says, we there for you only on the Matchless Music Hour.
1: Namaskar, main Delhi ki Mukhyamantri Rekha Gupta bol rahi hu. Delhi sarkar ne Delhi Lakshmi Yojana ko manzoori de di hai. Is yojana ke tahat patra mahilaon ko हर माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है।

0: आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
2: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े।

0: आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
0: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक YouTube चैनल पर लाइव प्रसारण।

पेश है इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वो कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने भारतीय दल के प्रदर्शन पर गर्व व्यक्त किया और भारत द्वारा 13 स्वर्ण पदकों सहित 39 पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी गई। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। त्रिसैन्य भावी युद्ध कला पाठ्यक्रम का 4वां संस्करण आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का ये पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो को फर्जी बताया है जिसमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन फिर शुरू होने का दावा किया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पालकी सवारी निकाली जाएगी। केरलम में मूसलाधार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने सभी 14 जिलों में अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का संभावना व्यक्त की है। राज्य में येलो अलर्ट भी जारी है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज होगी। ये थे अभी तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: और आकाशवाणी रेनबो पर बॉलीवुड रील्स में बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपके साथ इस घंटे रहूंगी मैं आकृति खंडूरी।

बॉलीवुड की चटपटी अटपटी मजेदार और जायकेदार खबरें सुनते हैं आप बॉलीवुड ट्रेस में, जिसे हम लेकर आते हैं आपके लिए आकाशवाणी रेनबो पर 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, या फिर देश या दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो आप जुड़े रह सकते हैं आकाशवाणी रेनबो से न्यूज ऑन एयर ऐप पर या फिर वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर। हमेशा दिन के 24 घंटे आपके साथ रहता है आकाशवाणी रेनबो।

जी हाँ, बॉलीवुड रिस्क में बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ हम आपके लिए आपके साथ हैं। और साथ ही एक बार फिर बता देती हूँ कि हमेशा की तरह इस घंटे भी आपको मौका मिलेगा आज का बॉलीवुड सरताज बनने का। तो प्रोग्राम में जो बातें शेयर की जा रही हैं उसे ध्यान से सुनिए, और प्रोग्राम में छुपा ही होगा क्योंकि इन्हीं बातों में आज का बॉलीवुड सरताज का सवाल भी, जिसे आप सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जब पहुँचाएंगे सही जवाब के साथ तो बन सकते हैं आज के बॉलीवुड सरताज। और पुराने जानने वाले, पुराने सुनने वाले तो मुझे पता है उन्हें तो हमारा व्हाट्सएप नंबर रटा हुआ है, लेकिन नए सुनने वालों को बताना चाहूंगी व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9868107070। और फिलहाल आज के प्रोग्राम में पहली अपडेट आ रही है टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म के बारे में। रेमो डिसूजा की ये फिल्म है, अनटाइटल्ड है, एक्शन फिल्म है और स्टार कास्ट जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है। टाइगर श्रॉफ की तो कंफर्मेशन हमने आपको बताई दी थी, साथ ही साथ अब एल्विश यादव भी इसमें आ गए हैं और एक नया नाम जो हाल ही में पता चला है वो है नुसरत भरूचा का, जिनका नाम भी इस फिल्म के साथ जुड़ गया है। और टाइगर श्रॉफ की अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर वो काम कर रहे हैं, और इनफैक्ट अभिषेक बैनर्जी भी इस फिल्म में है। नुसरत भरूचा और अभिषेक बैनर्जी इसमें आए हैं और फिल्म की कास्ट मतलब मजबूत पे मजबूत होती जा रही है। फिलहाल फिल्म का प्रोडक्शन जो है वो नीरज तिवारी और विकी जैन मिलकर कर रहे हैं, और एक अगर

और देखते हैं टाइगर श्रॉफ, अभिषेक बनर्जी और एलविश यादव की तिकड़ी इस फिल्म में जो आ रही है तो आगे कैसे कैसे चलता है। फिलहाल फिल्म की शूटिंग जैसे हमने आपको बताया शुरू हो चुकी है और आने आते आते फिल्म का टाइटल जैसे ही कंफर्म होगा बॉलीवुड ट्रेल्स में आपके लिए सबसे पहले पहुँचेगी खबर। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो पर बॉलीवुड ट्रेल्स।

0: वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है? पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा।

इसे ये ट्रैक आपके लिए लेकर आए थे हम आकाशवाणी रेनबो पर। बॉलीवुड रील्स में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ मैं आकृति, और बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स को पहुँचाने का पूरा जिम्मा हमने यहाँ पर आपके लिए लिया हुआ है। फिलहाल अगले अपडेट बॉलीवुड से आ रही है हमारे पास, महेश बाबू और एसएस राजामौली की 1400 करोड़ के बजट में बनने वाली फिल्म। जी हाँ, फिल्म का नाम है वाराणसी, और फिलहाल ये मूवी जो है अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुकी है, यानी कि उसका आखिरी शेड्यूल जो है वो शुरू हो चुका है, और इसकी शूटिंग जो है, फिल्म का नाम है वाराणसी, महेश बाबू और एसएस राजामौली की ये फिल्म आखिरी शेड्यूल की शूटिंग बची हुई है। आपको बताते हैं कि क्या क्या इसकी लेटेस्ट अपडेट है। फिलहाल ज़्यादा सीरियस और जो लेंथी पार्ट्स हैं उसकी शूटिंग तो ऑलरेडी पूरी कल ही गई थी, बस अब कुछ सीन्स हैं जो जिसको शूट करना बाकी है, और ऐसा बात की जा रही है कि बहुत ही जल्दी रामोजी सिटी फिल्म सिटी में इसकी शूटिंग की जाएगी, और बहुत ही प्लानिंग के साथ राजामौली जो हैं बड़ी सोच समझ के साथ, शेड्यूल्स के साथ फिल्म की शूटिंग उन्होंने अभी तक की है। वो माना जा रहा है अक्टूबर 2026 में फिल्म के सारे जो शेड्यूल्स हैं उनकी शूटिंग पूरी कर ली जाएगी और फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन काम जो है वो शुरू हो जाएगा। फिलहाल अब तक यही खबर आ रही है कि फिल्म जो है 7 अप्रैल जो है उसको रिलीज़ के लिए रखा गया है। लीड रोल में महेश बाबू का होगा और प्रियंका चोपड़ा जो हैं उनके ऑपोजिट जो हैं लीड एक्ट्रेस के किरदार में दिखाई देंगी, और पृथ्वीराज सुकुमारन जो हैं वो लीड विलेन के रूप में आएंगे। अब तक जो भी ग्लिम्स आए हैं पब्लिक ने खासा पसंद किया है। फिलहाल एग्जैक्टली इसकी क्या डेट होती है रिलीज़ की वो भी हम आपको जैसे ही हमें पता चलेगा बॉलीवुड्स में बताएंगे। फिलहाल एसएस राजामौली एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर शानदार उनको रिस्पांस मिलता है, और आज तक उनका रिकॉर्ड है कि उनकी एक भी फिल्म फ्लॉप नहीं हुई है। उनकी अभी तक की सारी, मतलब 4 फिल्म जो हैं वो ब्लॉकबस्टर रही हैं, एगा, बाहुबली, बाहुबली 2, RRR जैसी फिल्म्स का नाम शामिल है, और ऐसे में वाराणसी भी ब्लॉकबस्टर होती है तो ये टू बैक उनकी 5वीं ब्लॉकबस्टर फिल्म होगी।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
2: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026,
2: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

एब्सोल्युटली वेलकम बैक टू बॉलीवुड ट्रेल्स. आपके साथ हूँ मैं आकृति. और बॉलीवुड की अगली अपडेट हम तक आ रही है वेलकम टू द जंगल की सफलता के बाद अक्षय कुमार और डायरेक्टर अहमद खान की जोड़ी के बारे में, जो एक बार फिर से बड़े पर्दे पर यानी कि सिल्वर स्क्रीन पर लौट रही है. एक नई फिल्म की शुरुआती चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं. फिलहाल अभी तक क्या कहानी होगी, कौन से जॉनर की मूवी होगी, उस पर तो आखिरी स्टैंप नहीं लगी है. लेकिन ये खबर पक्की आई है कि इस जो फिल्म की बारे में चर्चाएं काफ़ी जोरों शोरों से चल रही हैं. अक्षय की बात करें तो पहले से ही कल कई फिल्म्स की शूटिंग और रिलीज़ में वो बिज़ी हैं, और अहमद भी अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स को आखिरी रूप देने में लगे हुए हैं. लेकिन इसीलिए नई फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले दोनों अपनी अपनी अवेलेबल डेट्स और प्रोडक्शन टाइमलाइंस पर भी काम कर रहे हैं. पिछले काफ़ी समय से चर्चा थी कि अहमद खान जो हैं अपनी अगली फिल्म टाइगर श्रॉफ और शनाया कपूर के साथ एक ज़ॉम्बी कॉमेडी के रूप में कर सकते हैं. और वेलकम फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म को लेकर भी काफ़ी खबर जो है चल रही थी. फिलहाल पता ही हमें कि अहमद के डायरेक्शन का जो स्टाइल है और अक्षय की जो स्क्रीन प्रेजेंस है एक्शन फिल्म्स में, बहुत अच्छा उनका तालमेल बैठता है. दोनों पहले भी एक साथ काम कर चुके हैं, और अब ये जो नया प्रोजेक्ट आएगा वो कब शुरू होगा, जैसे ही खबर मिलती है आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे. फिलहाल ये खबर पक्की है कि दोनों एक नए प्रोजेक्ट में साथ साथ आ रही हैं.

जैसे अगस्त के महीना शुरू हो चुका है और अगस्त के महीने में बहुत सारी फिल्म्स हैं जो बॉलीवुड के स्क्रीन पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं। कुछ फिल्म्स के बारे में बता देते हैं आपको। ओ माय गॉड, पंकज त्रिपाठी की ये फिल्म है, 7 अगस्त को 2026 को सिनेमा हॉल्स में रिलीज़ हो रही है। और पंकज के अलावा इसमें पवन मल्होत्रा, राजेश कुमार और माही रॉय भी हैं। पहले ये 31 जुलाई को आने वाली थी, बाद में इसको शिफ्ट कर दिया गया। इमरान हाशमी की आवारापन 2, जी हाँ, इसका भी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। 14 अगस्त को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। शबाना आज़मी इसमें विलन के रोल में दिखाई देंगी। दिशा पाटनी भी इस फिल्म का हिस्सा है। पहला पार्ट यानी कि आवारापन लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, देखते हैं सीक्वल कैसा रहेगा। बंटवारा 1947 के बारे में बार बार हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स में। सनी देओल एक बार फिर से एक्शन करते हुए दिखाई देंगे, ट्रेलर सामने आ गया है। 14 अगस्त को फिल्म हो रही है ये रिलीज़। और सनी बाजी के अलावा प्रीति जिंटा, करण देओल, शबाना आज़मी, अली फजल, अभिमन्यू सिंह इस फिल्म में है। और इसके अलावा टॉक्सिक, जी हाँ, रॉकिंग स्टार यश की टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स, 26 अगस्त को रिलीज हो रही है। और कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया भी इस फिल्म में है। और रक्षाबंधन के मौके पर श्रद्धा कपूर की ईठा यानी कि 28 अगस्त को ये फिल्म रिलीज हो रही है। इसमें ये लावणी कलाकार विठाबाई नारायण गायकर की जिंदगी पर बेस्ड है, उसका किरदार निभा रही है श्रद्धा। और खोसला का घोसला 2, जी हाँ, 28 अगस्त 2026 को ये फिल्म सिनेमा हॉल्स में रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अनुपम खेर, बोमन ईरानी और दिव्या खोसला साथ में काम करते हुए दिखाई देंगे। प्रशांत भाटिया ने इस फिल्म को बनाया है, पहला पार्ट काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। उसी फिल्म का ट्रैक आपके लिए बजाती हूँ कैलाश खेर की आवाज़ में।

बॉलीवुड सरताज सवाल का इंतजार है ना आपको। जी हाँ, आज का है वो पल जब हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आज का बॉलीवुड सरताज का सवाल, जिसका सही जवाब हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर सबसे पहले पहुंचाने वाला बन जाएगा आज का बॉलीवुड सरताज। तो सवाल आपके लिए ये है कि SS राजामौली की अपकमिंग फिल्म का आपको हमें नाम बताना है। SS राजामौली की अपकमिंग फिल्म का नाम आपको हमें बताना है। इस फिल्म में महेश बाबू हैं, प्रियंका चोपड़ा हैं मेन किरदार में, और ये फिल्म 7 अप्रैल अगले साल यानी कि 2027 को रिलीज हो रही है। जी हाँ, बताइए हमें SS राजामौली की आने वाली फिल्म का नाम। बहुत चर्चा इसकी चल रही है, आखिरी शेड्यूल इसका शुरू होने वाला है और महेश बाबू प्रियंका चोपड़ा इस फिल्म में मेन किरदार निभा रहे हैं। और व्हाट्सएप नंबर है 9868107070।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं

0: हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

और इसी के साथ बॉलीवुड समाप्त करने का समय आ चुका है, लेकिन बॉलीवुड सरताज आज का कौन बन रहा है जरूर आपको बताने वाले हैं हम। हमने आपसे सवाल पूछा था SS राजामौली की अपकमिंग फिल्म का नाम बताइए, जिसमें महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा मेन कैरेक्टर्स में हैं। आपके बहुत से सवाल के सही जवाब हम तक पहुंचे हैं, लेकिन सबसे पहले इस सवाल का सही जवाब जो कि है वाराणसी जी हां, बताने वाले हैं प्रवीण चौहान साहब, खारगांव मध्य प्रदेश से, और बन रहे हैं आज के बॉलीवुड सरताज। वैसे उनके अलावा भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने सवाल का सही जवाब हम तक पहुंचाया, जल्दी से सभी का नाम लेना चाहूंगी। वाराणसी बताने वाली हैं तनुजा शाह, इसके अलावा दानिश खतौली से सलीम मलिक साहब का भी सही जवाब हम तक आया है, सागर सिंह रावत गढ़वाल से, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, कंचन सोनिया बिहार से, शंकर गोवा से, सीमा मेरठ से।

और धर्म भाटिया जी, तरुण कोहली साहब का सही जवाब, मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कायम कीर्तिनगर से, शिवम कुमार पटना साहिब से हमें फ़ोन कर रहे हैं, ये हैं बसंत तोमर साहब, विनोद सोनी साहब, उमेश कुमार, कृष्ण कुमार साहब का भी सही जवाब हम तक आया, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, हरीश कौर साहब, ऋषु कटारिया, लेकिन सबसे बड़ी बधाई जा रही है आज के प्रोग्राम में प्रवीण चौहान साहब को, मध्य प्रदेश से, जो हमसे जुड़े हैं और हमें इस सवाल का सबसे सही जवाब यानी कि वाराणसी बताया है। तो इसी के साथ मुझे यानी आकृति को भी आज के प्रोग्राम से दीजिए विदा। 1 बजे आपसे मुलाकात होगी रेनबो हेल्पलाइन में, जिसमें आज हम बात करेंगे मिड एंट्री इन CUET के बारे में। एक्सपर्ट डॉक्टर आनंद सोनकर, जो कि डेप्यूटी डीन एडमिशन से हमारे साथ रहेंगे कुछ ही मिनटों में। पूजा स्टूडियो में बस एंटर ही करने वाली हैं, प्लेट कूल लेकर, और 2 बजे आशियाना में शालिनी खंडेलवाल आपके साथ रहेंगे, और 3 बजे रेडियो डॉक्टर प्रोग्राम में आज बात होगी चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड आयुर्वेदा। डॉक्टर रीना अरोरा, आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट, हमारे साथ रहेंगी।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर,
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मंगल भवन मंगलहारी
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
4: पता का चाय गजब का स्वाद।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: Beautiful song for a beautiful message. Hey Yash, I hope your friends heard that one, because that one moved so many hearts. Thank you so much for all those of you messaging in. You tuned in live to Play It Cool. We're playing it cool with some cool messages from all of you to your friends. Right now, let's take that short break. Stay close, stay tuned. We'll be back in just a couple of seconds.
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
4: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

पेश है अभी तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार। नीट पेपर लीक पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर गतिरोध के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर, गुजरात के मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल और दतिया सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। दिल्ली की एक

अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व भाजपा सांसद ब्रिज भूषण शरण सिंह को बरी किया। तमिलनाडु में मदुरई जिले के मेलूर में सड़क दुर्घटना में एक शिशु सहित 5 लोगों की मौत हो गई है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थतों के जरिए होने की उम्मीद है। आज सावन माह का पहला सोमवार है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पालकी सवारी निकाली जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने भारत द्वारा 13 स्वर्ण पदक सहित 39 पदकों को जीतने की प्रसन्नता व्यक्त की है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी गई। और मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये थे अभी तक के आकाशवाणी रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: रेनबो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं आकृति खंडूरी और कहना आपसे यही चाहती हूं कि क्लास 12th पास आउट होने के बाद हर स्टूडेंट का ड्रीम होता है कि उसे अपने पसंद के कॉलेज में और अपने पसंद के कोर्स में एडमिशन मिले। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो टाइम पर एडमिशन प्रोसेस कम्प्लीट नहीं कर पाते और ऐसे में पूरा एक साल उनका बर्बाद हो जाता है। अगले साल फिर दोबारा भरने की चिंता जो है, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने की चिंता बनी रहती है। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि नहीं भाई, आपको एक दूसरा मौका मिल सकता है, क्या CUET में मिड एंट्री स्टूडेंट्स के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी दे सकता है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आज रेनबो हेल्पलाइन में हम बात करेंगे मिड एंट्री इन CUET। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट प्रोफेसर आनंद सोनकर, जो कि जॉइंट डीन एडमिशंस दिल्ली यूनिवर्सिटी हैं, हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्रोफेसर सोनकर आपका स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आकृति जी।
1: जी, और सुनने वालों को, श्रोताओं को, स्टूडेंट्स को जिन्होंने जो अंडर ग्रेजुएट के लिए एडमिशन के लिए तैयारी में हैं और समहाउ मेन जो एडमिशन की प्रोसेस था उसको वो मिस कर चुके हैं, उनके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है। उनके पेरेंट्स भी हैं, बहुत परेशान होंगे, तो आपके लिए भी मिड एंट्री आज ही से शुरू हुई है डॉक्टर प्रोफेसर सोनकर।
2: जी मैम, आज ही से स्टार्ट की है।
1: जी हाँ, तो इसके बारे में डिटेल्स में प्रोफेसर सोनकर से हम जानेंगे। मिड एंट्री इन CUET, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर मैसेज करके हमें अपने सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन भी मिला सकते हैं, जो है 1800111026, या हमारे स्टूडियो का लैंडलाइन दिल्ली का STD कोड लगाइए 011 और फिर डायल कीजिए 2342108 एंड 2342108 मिड एंट्री इन CUET। यही रेनबो हेल्पलाइन में आज का विषय है। प्रोफेसर आनंद सोनकर हमारे साथ स्टूडियो में है। प्रोफेसर सोनकर, सबसे पहले तो यही मैं जानना चाहूँगी कि CUET में ये मिड एंट्री जो है, इसका मतलब क्या है?
2: आकृति जी, जैसा कि आपने बताया कि बच्चे साल भर इंतज़ार करते हैं एडमिशन का, पर कभी कभी वो फॉर्म भरने से चूक जाते हैं
1: जी।
2: तो ये सुनहरा मौका हमने उन बच्चों के लिए दोबारा किया है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करना भूल गए थे, तब आपके पास आज से लेके बुधवार शाम तक ये मौका फिर से है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, लॉगिन करें और फॉर्म भर सकते हैं आप।
1: अच्छा, तो बुधवार मतलब बस 3 दिन के लिए खोला है?
2: जी मैम, क्योंकि देखिए 2 लिस्ट हमारी ऑलरेडी जारी हो चुकी हैं, कॉलेजेस का सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो हमें वो भी ध्यान में रखना है कि जो बच्चे आए उनकी क्लासेस ज़्यादा मिस ना हो जाए।
1: ऑल राइट, ओके। बिकॉज पहला सवाल हम तक यही आया था कि भाई इसकी डेडलाइन क्या है, तो अब आपने हमें बता ही दिया है कि डेडलाइन जो है

0: वो केवल परसों तक ही है, यानी कि 5वीं तारीख, फिफ्थ,
1: जी मैम, बुधवार 5 अगस्त।
0: बुधवार 5 अगस्त को कितने बजे तक सर?
1: मैम शाम कर सकते हैं,
0: अच्छा,
1: रात तक।
0: उस दिन जिस उसकी उस दिन की डेट तक जो है आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि मिड एंट्री के लिए भी CUET स्कोर ज़रूरी होगा?
1: हाँ जी मैम,
0: अच्छा,
1: ये दाखिले जो हमारे हैं ये पूर्णतया CUET के स्कोर पर ही हो रहे हैं, तो ये मौका सिर्फ उन्हीं छात्रों के लिए है जिन्होंने CUET की परीक्षा दी है।
0: अच्छा, तो अगर CUET आपने नहीं दिया है तो आपको मिड एंट्री का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुछ नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स का कुछ ऐसा भी पता है कितनी सीट्स के लिए हैं अभी?
1: जी मैम, खाली सीटें कितनी अवेलेबल हैं इसका ब्यौरा हम जल्दी जारी करेंगे, आज ही हम अपनी वेबसाइट पे डालेंगे, तो आप वेबसाइट पे देखें www.du.ac.in,
0: अच्छा,
1: उसमें जाएं, एडमिशन के होम पेज पे देखें, आपको पूरी डिटेल लिस्ट मिलेगी कि किस कॉलेज के किस प्रोग्राम की किस कैटेगरी में कितनी सीटें अवेलेबल हैं।
0: जी, और एक और सवाल हमें आ रहा है कि क्या इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फी देनी पड़ेगी? पिछली बार गलत डॉक्यूमेंट्स जो थे वो अपलोड कर दिए थे एक स्टूडेंट ने, तो ऐसा कुछ भी होगा?
1: देखिए, आपने जो सवाल पूछा है उसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था और आपने उसको आधे में छोड़ दिया, पूरा नहीं किया या गलत फॉर्म किया, और दूसरा ये है कि आपने बिल्कुल भी नहीं किया था। तो
0: अच्छा,
1: अगर आपने पहले फॉर्म भरा था और आपने फीस पे करी है तब आपको लिए कोई भी चार्ज नहीं होगा, तब आप सिर्फ उस फॉर्म को ठीक कीजिए, अपनी त्रुटियाँ ठीक कीजिए, सब्जेक्ट मैपिंग कीजिए, प्रेफरेंसेस सेव कीजिए और आप एलिजिबल हो जाएंगे। पर अगर आप दूसरी कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आपने बिल्कुल भी कुछ रजिस्ट्रेशन शुरू ही नहीं किया था, तब आपको फ्रेश कैंडिडेट की तरह रजिस्टर करना है, आपकी जो सोशल कैटेगरी की फ़ीस है वो ली जाएगी, जो कि हमारी अनरिजर्व्ड OBC और EWS के लिए 250 रुपये है, SC ST और PWD कैटेगरीज के लिए 100 रुपये है, प्लस उसके साथ आपको हमारी एक मिड एंट्री फीस है ₹1,000, वो
0: ओके,
1: आपको देनी होगी।
0: मिड एंट्री फी 1,000 रुपीज़ की है, वो ज़रूर देनी होगी। रेनबो हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं मिड एंट्री इन CUET। हमारे साथ हैं प्रोफेसर आनंद सोनकर जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज्वाइंट डीन ऑफ एडमिशंस हैं। आप उनके सवालों आप अपने सवाल पूछिए, आपके हर सवाल का जवाब प्रोफेसर सोनकर हमें देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: रेनबो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, मैं आकृति खंडूरी। और आपसे यही कहना चाहती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से उन स्टूडेंट्स को एक बार फिर एडमिशन का मौका मिल रहा है जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कहीं पर चूक गए थे। DU आज से मिड एंट्री ऑप्शन शुरू कर चुका है, यानी कि 2 राउंड्स के बाद कॉलेजेस की जो खाली सीट्स हैं उन पर अब तक उन स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा जिन्होंने DU के कोर्सेज के लिए कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम इसके पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है, या फिर गलत फॉर्म भर दिया है, या फिर डॉक्यूमेंट्स गलती से कुछ गलत अपलोड आपने कर दिए थे। इन सभी को मिड एंट्री का फ़ायदा मिल सकता है। आपके बहुत से सवाल हम तक आ रहे हैं, नए जुड़ने वालों को पूछना बताना चाहूँगी कि आप हमारे स्टूडियो में आज के हमारे गेस्ट एक्सपर्ट जो हैं प्रोफेसर आनंद सोनकर, जो कि जॉइंट डीन एडमिशन हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनसे सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 9868107070। फिलहाल आकांक्षा का मैसेज आया है प्रोफेसर सोनकर, ये कहती हैं कि मेरी बेटी ने CUET के माध्यम से DU में BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स में आवेदन किया था। पहले राउंड में जो कॉलेज मिला वो उनको लेना नहीं था, तो उन्होंने अपग्रेडेशन का ऑप्शन चुना। अब दूसरे राउंड में भी एक कॉलेज मिला है, लेकिन वो भी इनकी प्रेफरेंस लिस्ट में काफ़ी नीचे है। एक चीज़ और ये कहती हैं कि इन्होंने ECA कैटेगरी में अप्लाई किया है, तो सवाल इनका ये है कि अगर हम अभी दूसरे राउंड में मिली सीट को एक्सेप्ट कर लें लेकिन फ्रीज ना करें, तो क्या इससे ECA कैटेगरी के तहत मिलने वाले संभावित कॉलेजेस या सीट पर कोई प्रभाव पड़ेगा, कृपया मार्गदर्शन करें।
4: देखिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि पहले राउंड में भी आपको सीट ऑफर हुई, आपने ली और अपग्रेड किया। आप इस सेम प्रोसेस को इस राउंड में भी कंटिन्यू रखें, आप सीट एक्सेप्ट करें, कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, आप पेमेंट करें और आप फिर से अपग्रेड दबाएं। आपको अगले राउंड में अगर सीट अवेलेबल होगी तो आपकी प्रेफरेंस के अनुसार दोबारा आपको एलोकेट कर दी जाएगी। दूसरा सवाल जो आपने ECA के बारे में पूछा आकृति जी, वो एलोकेशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। वो अब एलोकेशन हमारी जब वेंसडे को ये मिड एंट्री प्रक्रिया बंद हो जाएगी, उसके बाद वो एलोकेशन हमारा थर्ड लिस्ट के साथ लाइव किया जाएगा। तब इस विद्यार्थी के डैशबोर्ड पे इन्हें 2 अलग अलग एलोकेशंस दिखाई देंगे, एक इनका नॉर्मल सोशल कैटेगरी में और दूसरा ECA कैटेगरी में। तब ये चूज़ कर सकते हैं कि इनको किस में एडमिशन लेना है।
3: जी,

0: पैंथर तोमर साहब का दिल्ली से मैसेज आया है कि अगर मिड एंट्री में दो स्टूडेंट्स के सीयूजी मार्क्स जो हैं, स्कोर जो हैं, वो बराबर हैं, तो पहले किसे सीट मिलेगी?
1: बहुत अच्छा सवाल है ये। इसके लिए हमारा जो एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जिसे हम बोलते हैं कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम डॉक्यूमेंट, जो हमारी वेबसाइट पे है, उसमें भी टाई ब्रेकिंग के रूल्स दिए गए हैं। तो ऐसी अक्सर सिचुएशन आ जाती है कि बच्चों के सेम स्कोर होते हैं, तब हम उनके ट्वेल्थ के नंबर देखते हैं। पहले हम उनके बेस्ट 3 मार्क्स देखेंगे, जिसका हायर होगा उसको देंगे। अगर वो भी सेम है तो हम बेस्ट 4 पे जाएंगे, देन अगर उसमें भी क्लैश है तो बेस्ट 5 पे जाएंगे, उसमें भी है तो हम डेट ऑफ बर्थ पे जाएंगे। तो हमारी ये प्रक्रिया पूरी उसमें लिखी हुई है, आप वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट देखें और पढ़ें।
0: जी, एक और सवाल है हम तक पहुंचा कि क्या मैं मिड एंट्री फॉर्म में केवल उन्हीं कॉलेजेस को चुन सकता हूं जहां पर सीट्स खाली हैं, या सभी कॉलेजेस की लिस्ट भर सकते हैं?
1: ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे देखें, थोड़ी देर में वो सूची जारी कर दी जाएगी कि कहाँ पे कितनी सीटें खाली हैं। आप उसको देखकर भरें तो ही ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, पर आप चाहें तो और प्रोग्राम्स भी डाल सकते हैं।
0: जी जी, एक और सवाल है कि अगर मिड एंट्री का फॉर्म भरते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्या उसे सुधार का मौका मिलेगा?
1: ये नहीं मिल पाएगा आपको। देखिए, जिन्होंने पहले चरण में रजिस्ट्रेशन किया था, उनके पास तो अब मौका है कि वो अपनी गलतियाँ सुधार सकते हैं, लेकिन ये एक तरह से आप समझिए लास्ट एंड फाइनल कॉल है। अगर इस समय आपने कोई गलती की तो अफसोस, हम आपको मौका नहीं दे पाएंगे। तो बहुत ध्यान से भरें। और आकृति जी, इसी बात पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आजकल की जनरेशन, हम जानते हैं, फ़ोन पर ही सब काम करना चाहते हैं, पर मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब आप हमारा फॉर्म भर रहे हों तो कृपया आप एक लैपटॉप या डेस्कटॉप या टैब ऐसे डिवाइस पर करें लॉग इन जहाँ आपको पूरी वेबसाइट ध्यान से दिखे, पूरे पोर्टल के आप हर चीज़ को देख पाएँ। फ़ोन की छोटी सी स्क्रीन में कभी कोई कॉलम रह जाता है, कोई चेकबॉक्स आप टिक नहीं कर पाते, फिर आपको बाद में पता लगता है दोस्तों से बात करके कि अरे मैंने ये तो किया ही नहीं, ये मेरा छूट गया। तो ये आपका एक आखिरी मौका है सही फॉर्म भरने का। आराम से आप भरें, 3 दिन आपके पास हैं, अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ डिवाइस पे बैठें ताकि बीच में कोई इंटरप्शन ना हो, और ध्यान से भरें और सेव करें।
0: यही सावधानी आप कहेंगे कि ये सावधानी ज़रूर रखनी चाहिए कि भाई आप फ़ोन पे ना करें। इट्स मुझे लगता है कि कॉलेज एडमिशन जो है एक तरह से आपके भविष्य की तरफ आपको ले जाता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आई थिंक उतनी ही सिंसेरिटी हमें फॉर्म अप्लाई करते हुए भी रखनी चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करने होते हैं प्रोफेसर सोनकर?
1: देखिए, साधारण डॉक्यूमेंट हैं, आपकी क्लास 12th की मार्कशीट है, आपकी क्लास 10th की मार्कशीट है, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं जैसे कि OBC या EWS या SC ST, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये ध्यान रखें कि सर्टिफिकेट बच्चों के नाम का हो, क्योंकि अक्सर बच्चों को ऐसे लगता है कि हमारे मम्मी पापा के नाम का सर्टिफिकेट है तो वो भी चल जाएगा, तो दिल्ली विश्वविद्यालय उसको नहीं मानता है। ये बात हमने अपने बुलेटिन में भी लिखी हुई है, और आशा करते हैं कि बच्चों के पास उनके नाम का सर्टिफिकेट होगा। तो बस यही कुछ दस्तावेज हैं जो आपको चढ़ाने हैं। ध्यान रखें कि जब आप स्कैन करें तो स्कैनिंग अच्छी हो, कि पढ़ने में दिक्कत ना आए कॉलेज के टीचर को, नहीं तो वो आपको क्वेरी रेस करेंगे और दोबारा पूछेंगे।
0: जी जी, एक और सवाल है कि जो गर्ल चाइल्ड है या सिंगल गर्ल है, उन लोगों के लिए कुछ स्कीम्स हैं या फिर जिनके माता पिता नहीं हैं?
1: जी मैम, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक बहुत ही खास प्रोविजन है जिसको हम सिंगल गर्ल चाइल्ड या शॉर्ट में SGC कहते हैं। इनमें वो सभी लड़कियां आवेदन कर सकती हैं जो या तो अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं, या अगर वो ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर हैं और उसमें एक सिस्टर हैं, या अगर वो दोनों ही ट्विन सिस्टर हैं, तो हम दोनों ट्विन सिस्टर को भी मौका देते हैं, क्योंकि देखिए ये तो बायोलॉजिकल इवेंट था
0: जी,
1: तो हम उनको इस चीज से वंचित नहीं करेंगे। तो अगर आप ट्विन सिस्टर्स हैं, या आप ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर में एक सिस्टर हैं, या आप ओनली डॉटर हैं इन द फैमिली, तो आप इस कोटे में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हर कॉलेज के हर प्रोग्राम में आपके लिए एक सीट सुनिश्चित की गई है जो कि आपके मेरिट से आपको दी जाएगी।
0: जी, हर्षित जो हैं दिल्ली से ये सवाल पूछ रही हैं कि अगर किसी स्टूडेंट ने ऑलरेडी एडमिशन ले रखा है किसी कॉलेज में, तो लेकिन वो उस कॉलेज को अब चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या उनको मिड एंट्री भरनी पड़ेगी?
1: देखिए, ये कन्फ्यूजन अक्सर बच्चों में देखा गया है कि अगर आप ऑलरेडी एडमिटेड हैं तो क्या आप मिड एंट्री में आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। मिड एंट्री सिर्फ उनके लिए है जो अभी तक सिस्टम में आए ही नहीं थे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, या आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है और आपके फॉर्म में कुछ त्रुटियां रह गई थी, तो हमने साथ में करेक्शन विंडो भी दिया है, तो आप करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आज की तारीख में आपके पास एक सीट है तो आप इसमें भाग नहीं ले सकते
0: और मनीष का सवाल है कि

0: मिड एंट्री से एडमिशन का अप्लाई करने के बाद इसका रिजल्ट कब तक आएगा?
1: ये देखिए, हमारा शेड्यूल हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। जो हमारा अगला राउंड आएगा वो आएगा हमारा 8 अगस्त को।
0: अच्छा,
1: तो 8 अगस्त को ये सारे एलोकेशन लाइव किए जाएंगे, तो आप अपने डैशबोर्ड पर देखें। और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें डैशबोर्ड पर देखना है, क्योंकि अक्सर बच्चे सोचते हैं हमें SMS आएगा, हमें ईमेल आएगा, ऐसा नहीं है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के पोर्टल पे लॉगिन करें और अपना एलोकेशन चेक करें
0: जी। और पोर्टल है www.du.admissions.in।
1: जी मैम, ये हमारी मेन वेबसाइट है और एडमिशन का पेज है www.admission.uod.ac.in।
0: अच्छा, तो इस पे आप चेक करते हैं।
1: आपने जो बोला मैम, du.ac.in पे जाके भी एडमिशन के टैब्स में जा सकते हैं।
0: अच्छा,
1: वहां से भी मिल जाएगा और डायरेक्ट भी खोल सकते हैं।
0: डायरेक्ट भी मिल जाएगा, तो डैशबोर्ड को चेक करते रहिए, उसमें रिजल्ट्स जो है वो जल्द ही अवेलेबल होगा। 8 अगस्त आप पहले ही बता चुके हैं, तो कुछ ही दिन है, मतलब आज जो है 3 तारीख है, 4-5 दिन में जो है ये रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। मिड एंट्री इन CUET, यही रेनबो हेल्पलाइन का आज का टॉपिक है। प्रोफेसर आनंद सोनकर, जो कि जॉइंट डीन एडमिशंस दिल्ली यूनिवर्सिटी है, हमारे साथ हैं और आपके सवाल हम तक पहुंच रहे हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
4: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
3: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026,
4: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आकृति खंडूरी, और कहना आपसे यही चाहती हूँ कि एक सही कॉलेज, सही कोर्स और राइट समय पर, सही समय पर लिया गया राइट डिसीजन जो है, ये तीनों ही बातें स्टूडेंट्स के फ्यूचर की डायरेक्शन को तय करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। लेकिन अगर किसी वजह से DU में एडमिशन के वक्त आपसे कोई चूक हो गई है तो क्या किया जा सकता है, इसी सवाल का जवाब तलाश रहे हैं हम। और इसीलिए आज का रेनबो हेल्पलाइन का टॉपिक भी है मिड एंट्री इन CUET, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यह अपॉर्चुनिटी, यह अवसर एक बार फिर से स्टूडेंट्स को दिया है। आज से लेकर बुधवार यानी कि 5 अगस्त तक आपको यह मौका मिल रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे आज के एक्सपर्ट प्रोफेसर आनंद सोनकर, जो कि जॉइंट डीन एडमिशन्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और प्रोफेसर सोनकर, कुछ सवाल हम तक आए हैं, नए सुनने वालों को बता दें 9868107070 हमारा नंबर है जिस पर आप अपने सवालों को हम तक पहुंचा सकते हैं। मिड एंट्री फॉर्म में दिव्यांग श्रेणी के छात्रों को क्या विशेष सुविधाएं या छूट मिलेंगी?
7: आकृति जी, देखिए, हमने दिव्यांग छात्रों के लिए हर प्रोग्राम में कुछ सीटें सुनिश्चित कर रखी हैं, तो 5% सीट्स उन सभी के लिए सुनिश्चित हैं। बाकी फॉर्म भरते समय भी उनके लिए आवेदन शुल्क सिर्फ 100 रुपये रखा गया है, और आप दाखिले के बाद आपको कॉलेज में सारी तरह की सुविधाएं मिलेंगी, जैसे जो छात्र देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल लाइब्रेरी का उपलब्ध होती है, जो पढ़ने में असमर्थ हैं उनके लिए हमारे सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं जो उनके लिए रीडिंग करते हैं, तो हर तरह की सुविधाएं हर कॉलेज में अवेलेबल हैं। चलने फिरने का उनका ध्यान रखा जाता है, पढ़ने का ध्यान रखा जाता है, उनके लिए असाइनमेंट वगैरह देने के लिए स्पेशल सुविधाएँ दी जाती हैं
6: जी।
7: तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, विश्वविद्यालय में आए, रजिस्टर करें, हम चाहते हैं आप हमारे साथ जुड़ें।
6: जी जी, और एक वो सवाल रह गया था कि जिन लोगों के माता पिता नहीं हैं।
7: हाँ जी, इसके लिए भी हमारे विश्वविद्यालय ने एक ऑर्फन कोटा के नाम से एक कोटा शुरू किया है अभी कुछ ही वर्षों पहले। इसमें हम हर कॉलेज के हर प्रोग्राम में एक मेल ऑर्फन कैंडिडेट और एक फीमेल ऑर्फन कैंडिडेट को सीट देते हैं। इसके लिए जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तब आपको ऑर्फन के कॉलम के आगे चेकबॉक्स में चेक करना होता है, और आपको डॉक्यूमेंट देने होते हैं जिसमें कि आपके माता और पिता का डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप किसी ऑर्फनेज में पले बढ़े हैं तो आपके पास ऑर्फनेज का कोई डॉक्यूमेंट होता तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो आप उसे अपलोड करें और फॉर्म भरें, और फिर आपके लिए हम आपको सीट देंगे जो आपके डैशबोर्ड पे दिखाई देगी
6: जी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी, जी जी,
7: एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इन बच्चों के लिए हमने फीस भी मात्र 10 रुपये रखी है।
6: अच्छा
7: जी,
6: ओके। सो जब दिल्ली विश्वविद्यालय की बात आती है तो एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो प्रख्यात है देश और दुनिया से, इनफैक्ट लोग यहाँ आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ हॉस्टल की सुविधाएं कैसी मिलती हैं?
7: देखिए, जैसा कि आप जानते हैं देश के कोने कोने से ही बच्चे हमारे पास आते हैं, तो हर कॉलेज में हॉस्टल की व्यवस्था है, लगभग हर कॉलेज में। हर कॉलेज में मैं नहीं कह सकूँगा क्योंकि कुछ में नहीं है। तो आप जब एक बार दाखिला ले लें उसके बाद आप श्योर हो जाएं कि आपको इसी कॉलेज में रहना है, आपने अपना एडमिशन अगर फ्रीज़ कर दिया है तब आप उस कॉलेज के हॉस्टल के लिए अप्लाई करें। हर कॉलेज में आपको इंडिविजुअली अप्लाई करना होता है, इसके लिए कोई कॉमन फॉर्म नहीं है जैसे एडमिशन के लिए है। तो

0: जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया उसकी वेबसाइट पे देखें, फॉर्म भरें, दस्तावेज लगाएं, और आपका जो एलोकेशन है वो आपकी मेरिट के हिसाब से ही होगा। जो आपका CUET स्कोर है, जिससे आपको एडमिशन मिला है, उसी से आपको एलोकेशन किया जाएगा। और हर प्रोग्राम वाइज कुछ सीटें सुनिश्चित की जाती हैं हर प्रोग्राम के लिए, ताकि हर प्रोग्राम के बच्चे आ पाए। पर अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो आप ये मौका नहीं ले सकते।
1: डेफिनेटली। वरुण पूछ रहे हैं कि सर, ये जो कट ऑफ होती है मिड एंट्री एडमिशन के लिए, अलग होगी रेगुलर एडमिशन से?
0: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है कि पहले और दूसरे राउंड में सीटें आवंटित की जा चुकी हैं, उनकी कट ऑफ हम दिखा चुके हैं। अब जो हमारा 3 दिन पोर्टल खुला है, आज 3 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक, इसमें कुछ नए बच्चे भी रजिस्टर करेंगे, तो हो सकता है नए बच्चों के अंक ज़्यादा रहे हों और वो पहले रजिस्टर करना भूल गए हों, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपकी कट ऑफ हाई चली जाए। आप ये मत सोचिएगा कि सेकेंड राउंड से नीचे ही जाएंगे नंबर, वो हाई भी जा सकते हैं।
1: अच्छा, ऑलराइट। एक सवाल आया है और इस पर चर्चा भी काफ़ी कुछ चलती रहती है आजकल, सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह भी आती हैं। मेघा पूछ रही हैं कि जो मिड एंट्री प्रोसेस है, ये ऑनलाइन होने के साथ साथ क्या ऑफलाइन भी होता है?
0: ओह, ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने आकृति जी, क्योंकि बच्चे आजकल के हमारे रील्स देखते हैं और बड़ी जल्दी उनसे आकर्षित हो जाते हैं। हमारा एडमिशन प्रोसेस पूर्णतया ऑनलाइन है। दिस प्रोसेस इज कम्प्लीटली ऑनलाइन। आप सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल से ही अप्लाई कर सकते हैं। कोई ऑफलाइन मैकेनिज्म नहीं है, कोई और तरीका नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में आने का। हमारे पोर्टल से रजिस्टर करें, और इस बात का भी ध्यान रखें कि जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं वो भी आप अपने डैशबोर्ड के थ्रू ही करें, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फ़ी हो, चाहे वो एडमिशन फ़ी हो। और कोई तरीका नहीं है, दिल्ली विश्वविद्यालय कोई ईमेल नहीं भेजता कि आप इस लिंक पे पेमेंट करें, कोई QR कोड नहीं भेजता कि आप इस पे करें। और ऐसा कोई भी इंसान जो आपको ऐसा आश्वासन देता है कि मैं आपका दाखिला विश्वविद्यालय में करा दूंगा, उस पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। आप सिर्फ हमारे पोर्टल पे भरोसा करें।
1: यानी कि एडमिशन की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है और पोर्टल के माध्यम से ही होता है। बहुत से लोग इस बात को कहते हैं कि नहीं, ऑफलाइन भी हो रहा है और बहुत नुकसान भी इसके माध्यम से उनको हो जाता है। तो कुछ खास सावधानियां, एक तो आपने यही बताया हमें बरतने के लिए, और डॉक्यूमेंट अगर पहली बार भरते हुए कुछ गलत हो गया तो 5 से पहले ठीक किया जा सकता है?
0: जी जी मैम, 5 तारीख को रात को 11:59 पे हमारा पोर्टल बंद होगा, उससे पहले कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय का एक यूट्यूब चैनल भी है, यूनिव ऑफ दिल्ली, UNIV ऑफ दिल्ली के नाम से। आप वहां जाएंगे तो हमारे ऑलरेडी हमारे बनाए हुए वीडियोस भी हैं, क्योंकि आजकल बच्चे अक्सर गूगल में सर्च करते हैं और जो भी पहला वीडियो आया देख लिया, तो हो सकता है वो आपको सही इन्फॉर्मेशन ना दे पाए। तो आप हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे सारे वीडियोस हैं, कैसे फॉर्म भरें, क्या सावधानियां रखें उसको देखें, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं, तो इसके बारे में भी उसमें जिक्र किया गया है। इसके बारे में हम भी अभी थोड़ी देर में बात कर सकते हैं अगर हमारे पास समय रहता है।
1: जी, इनफैक्ट बता ही दीजिए कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं।
0: देखिए, अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि हमारा, अगर उनको लगता है कि स्कोर बहुत कम है, तो वो क्या करते हैं कि बहुत ही जो नामी गिरामी कॉलेज है जहाँ पे स्कोर्स बहुत हाई जाते हैं, वो उनको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखते ही नहीं है।
1: अच्छा।
0: पर मैं चाहूँगा कि ऐसा आप कभी भी नहीं करें, क्योंकि आपको पता नहीं है कि किसका कितना स्कोर है, कौन किस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है। तो प्रेफरेंस लिस्ट आप वैसे ही बनाएं जिस ऑर्डर में आप पढ़ना चाहते हैं। अच्छा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप नंबर 1 पे वही कॉलेज रखें जिसमें जाने की आपकी दिली इच्छा है। आप लंबी बनाते जाइए प्रेफरेंस लिस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। 2, 4, 6, 8, 10 आप ऐड करते जाइए। हम आपसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाने का कुछ चार्ज तो ले नहीं रहे। आप उसमें सारे प्रोग्राम डालें, सारे कॉलेज डालें, और लेकिन वो ही डालें जो आप सच में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको उनको हटाने का मौका नहीं मिलेगा। कि आप ये बोले कि सर मेरी 10th प्रेफरेंस मुझे मिल गई, मेरे को 9th और 8th नहीं चाहिए, वो मौका हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो ये ध्यान रखें, जो आप पढ़ना चाहते हैं उसको आप प्रेफरेंस इसमें जरूर रखें, और जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उसको बिल्कुल ना रखें।
1: अच्छा, हिमांशी दिल्ली से एक सवाल आपसे पूछ रही हैं। इनका कहना है कि पहले राउंड में इनको जो कॉलेज एलोकेट हुआ था उसमें इनका EWS था
0: जी,
1: और ये सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाई तो वो कॉलेज कैंसिल हो गया। फिर दूसरा राउंड का इनको मौका मिला ही नहीं
0: जी।
1: तो ये कि चाह रही है कि अब मिड एंट्री के माध्यम से क्या वो कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकती हैं।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: इनका स्कोर 316 है, इन्होंने बताया है। जी
0: जी, देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं थे तो आपका फॉर्म कॉलेज ने रिजेक्ट किया। आपके लिए ही ये मौका दिया है हमने मिड एंट्री, आप दोबारा से लॉग इन करें पोर्टल में, अपना नया सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए, नया सर्टिफिकेट नंबर डालिए, हम आपको

0: राउंड में फिर से एलोकेशन देंगे।
1: अच्छा
0: स्कोर से बताना थोड़ा मुश्किल होगा ऐसे, क्योंकि मुझे पता नहीं ये 3 सब्जेक्ट्स का है या 4 का है।
1: जी, जी।
0: तो इसके लिए आप कट ऑफ हमारी देखिए वेबसाइट पे, मिनिमम एलोकेशन स्कोर सेकेंड राउंड का डला हुआ है, आपको थोड़ा अंदाजा मिलेगा।
1: जी जी, तो ये मिड एंट्री का जो सिस्टम है कब से शुरू हुआ है, कितना समय हो गया है?
0: ये हमने काफी सालों से शुरू किया है, क्योंकि अक्सर हमारे पास रिक्वेस्ट आती थी कि सर हम इनिशियली रजिस्ट्रेशन करना भूल गए हैं।
1: ओके,
0: तो फिर उनके लिए हमने ये मौका रखा कि आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करें, लेकिन अब तक जैसा कि आप जानते हैं काफी सीटें भर चुकी हैं।
1: जी जी,
0: तो अब बची हुई सीटों में ही आप एलिजिबल होंगे।
1: अच्छा, हिमांशी ने एक और मैसेज किया है, ये कहती है इनका EWS सर्टिफिकेट बन ही नहीं पाया है, तो फिर ये
0: देखिए उस केस में तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए आपको दस्तावेज तो चाहिए,
1: आपको डॉक्यूमेंट तो वेरीफाई कराने पड़ेंगे कि आप उस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अच्छा एक चीज,
0: लेकिन
1: और
0: आकृति जी इसमें मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर उनके पास EWS डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो भी हम उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जरूर ट्रीट करेंगे। देखिए ये बात बाकी सबके लिए भी लागू है, अगर आप OBC, EWS, SC, ST, PWD जिससे भी जिस भी श्रेणी से आप आते हैं, अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है आप हम आपको UR में जरूर कंसीडर करेंगे अगर आपका स्कोर उसमें आ रहा है तो।
1: ओके,
0: एवरी कैंडिडेट एंड ऑल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल अंडर UR कैटेगरी, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरी प्रक्रिया से बाहर ही हो गए हैं।
1: हाँ,
0: बस अब आपके स्कोर का खेल है सर,
1: खेल है। अच्छा एक बड़ी उत्सुकता हो रही है प्रोफेसर सुनकर कि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलतियां करते हैं, मतलब क्या चीज है जिसको ज्यादा होता है?
0: देखिए फॉर्म भरते समय अक्सर बच्चे माता पिता का नाम ही थोड़ा कभी कभी केयरलेसली भर देते हैं, वो बिल्कुल सेम वैसे ही भरें जैसे आपके क्लास 10th और 12th के मार्कशीट में है। जो कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी का फायदा लेना चाहते हैं वो उन सर्टिफिकेट्स का भी ध्यान रखें। OBC और EWS सर्टिफिकेट में अक्सर देखा गया है कि वो पुराना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, क्योंकि देखिए वो दोनों इनकम से लिंक हैं, हमें पता है भारत सरकार ने तय किया हुआ है कि जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम होगी सिर्फ उनको ही ये बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए हमारे बुलेटिन में भी लिखा है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो वो ही डॉक्यूमेंट अपलोड करें तभी हम आपको इस कैटेगरी का बेनिफिट दे पाएंगे।
1: ऑलराइट, ओके। सो मिड एंट्री इन CUET, यही आज का विषय है रेनबो हेल्पलाइन का। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं स्टूडियो में, प्रोफेसर आनंद सोनकर जो कि जॉइंट डीन एडमिशन्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आपके सवाल हम तक पहुंच रहे हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 के माध्यम से।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: रेनबो हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकृति खंडूरी और मेरे साथ हैं प्रोफेसर आनंद सोनकर जो कि जॉइंट डीन एडमिशंस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और आज बात हो रही है रेनबो हेल्पलाइन में मिड एंट्री इन CUET की। आपके बहुत से सवाल हम तक आ रहे हैं। ये सवाल है व्हाट इज हिज नेम या पल्लवी का। और पल्लवी कहती हैं कि 8 अगस्त को एक बार इसका रिजल्ट जब आ जाएगा तो कितनी

0: जल्दी इसको एक्सेप्ट करना होता है, उसकी भी कोई टाइमलाइन होती है सर?
1: जी मैम, एक्सेप्ट करने के लिए नॉर्मली हम बच्चों को 24 आवर्स देते हैं।
0: अच्छा।
1: तो इस बात का ध्यान रखें, 8 तारीख को लॉगिन करें, और अगर आपको सीट मिली है तो व्यू सीट एलोकेशन टैब में जाएं और देखें और उसे एक्सेप्ट करें।
0: ऑल राइट, तो भाई डिसीजन जो है जल्दी लेना भी सिखा रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसके अलावा कुछ लोग ये भी पहुँच रहे हैं कि CUET का जो ये स्कोर है ये दो सब्जेक्ट से थोड़ा सा अलग है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी काम आता है।
1: जी मैम, देखिए बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं इंडिया में जो इन स्कोर्स को कंसीडर कर रही हैं, तो अगर आप इसका एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं तो आप NTA की वेबसाइट पे देख सकते हैं। उनके वेबसाइट पे एक प्रॉपर PDF डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे उन यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए गए हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट, जो इन सब स्कोर्स को एक्सेप्ट करती हैं।
0: जी, आरव का गुड़गांव से मैसेज है कि अगर एक बार मिड एंट्री का ऑफर जो मिला उसको एक्सेप्ट कर लिया लेकिन उसके बाद हम उसको चेंज कराना चाहते हैं, तो क्या ये प्रोविजन मिलता है?
1: बिल्कुल मिलेगा आपको। आपको अगर सीट मिलती है आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फीस पे कीजिए और अपग्रेड दबाइए। अगर सीट अवेलेबल होगी तो ज़रूर आपको दी जाएगी।
0: जी, देव दिल्ली से कहना चाहते हैं कि ज़रा हेल्पलाइन और एनी ऑफिशियल कॉन्टैक्ट पॉइंट जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं रिगार्डिंग मिड एंट्री।
1: इसके लिए हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय ने काफ़ी प्रयास किए हैं। देखिए, आप हमें ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो UG@admission.TU.ac.in ये हमारा ईमेल आईडी है जो हमारी वेबसाइट पे भी डला हुआ है। हमारे हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं जो कि मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 5 PM एक्टिव रहते हैं, 8065-068-771, फिर आखिरी में आप 7274-7778-8284, ये हमारी वेबसाइट पे भी नंबर उपलब्ध हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं, आपको तभी हेल्प किया जाएगा। हमारा चैटबॉट भी है, तो चैटबॉट में आप लॉगिन करते हैं, होम पेज पे ही आपको दिखेगी मे आई हेल्प यू, आप उसमें अपना क्वेरी पोस्ट कीजिए, बट ये सुविधा भी सिर्फ वर्किंग आवर्स में अवेलेबल होगी। ईमेल आप जब चाहें आप तब लिख सकते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हर ईमेल का जवाब 24 से 48 घंटे के अंदर आपको दे दें।
0: और वर्किंग आवर्स क्या हैं सर?
1: मैम 10 AM to 5 PM मंडे टू फ्राइडे
0: है। एक मैसेज आया है कुणाल का दिल्ली से, और वो कहते हैं कि मिड एंट्री के लिए केवल अंडर ग्रेड प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स ही फ़ायदा उठा सकते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिलेगा?
1: देखिए, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में आना चाहते थे तो आपने ये मौका मिस कर दिया है। हम मिड एंट्री कर चुके हैं, उसके बाद हम एक राउंड भी कर चुके हैं और हम स्पॉट राउंड पे आ गए हैं, तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में ही अभी आप ये मौका उठा पाए। हाँ
0: जी। अच्छा, हर साल डेट्स क्या फिक्स रहती हैं या?
1: देखिए मैम, ये डेट्स हमारी CUET के रिजल्ट से आधारित की जाती हैं, क्योंकि एग्जाम जब होगा रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही हम रजिस्ट्रेशन खोल पाते हैं, तो ये तारीख थोड़ी आगे पीछे होती रहती हैं।
0: ऑलराइट, श्रेया का सवाल ये है कि मिड एंट्री के थ्रू एडमिशन मिलने के बाद क्या स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड भी इसी के थ्रू मिलता है? कैन दे हैव द एक्सेस टू स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड?
1: देखिए, हर कॉलेज में अपना एक स्कॉलरशिप सेल होता है और फी वेवर भी बच्चों को दिया जाता है, तो ये सब आप जब दाखिला ले लें, कॉलेज चले जाएं, फिर आप कॉलेज में इनके लिए अप्लाई करें।
0: ओके।
1: और उसके बाद कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करते हैं, बच्चों को इंटरेक्शन के लिए बुलाते हैं और फिर उनको स्कॉलरशिप देते हैं।
0: जी जी, रोहन का मैसेज आया है कि मिड एंट्री की थ्रू एडमिशन के बाद फी स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस होता है क्या सर?
1: नहीं नहीं, फी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, जो फीस राउंड वन और राउंड टू के छात्रों ने भरी है वही आपको भरनी है।
0: अच्छा। निशा का सवाल है कि ऑलरेडी कॉलेज शुरू हो चुके हैं, पढ़ाई शुरू हो चुकी है, तो मिड एंट्री के बाद जो स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा उनके लिए कोई प्रोविजन है कि वो जो ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है उसको दोबारा से उन कुछ मौका मिले उनको?
1: जी, हमारा जो एकेडमिक सेशन है इस बार 28 जुलाई को शुरू हुआ था, तो अभी एक दो हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन आपको ज़रूर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सारे टीचर्स आपको हेल्प करेंगे, जो आपका सिलेबस मिस हो गया उसको कवर अप करने में हेल्प करते हैं।
0: जी जी, ऋषभ कहते हैं कोई मिनिमम CUET स्कोर चाहिए क्या सर मिड एंट्री के लिए?
1: नहीं, देखिए मिनिमम CUET स्कोर तो हमने कोई तय नहीं किया है, बस आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है कि 3 सब्जेक्ट्स का देखेंगे या 4 का, उसका जो भी एग्रीगेट है उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको सीट दी जाएगी।
0: सौरभ नोएडा से पूछ रहे हैं, प्रोफेसर साहब बताइए कि अगर मिड एंट्री में भी एडमिशन नहीं मिलेगा तो क्या ऑप्शन एक्सप्लोर किया जा सकता है?
1: देखिए, मिड एंट्री में आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, इसके अगले राउंड में हम आपको सीट देंगे, नहीं मिलेगी तो आप स्पॉट राउंड में ट्राई कीजिएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और उसके बाद भी आप वेट कीजिए और हमारी वेबसाइट देखिए, हो सकता है उसके बाद भी हम कोई प्रोविजन लाएं उन सीटों के लिए जो बच गई हैं।
0: ऑल राइट। इस बात को हालांकि आप बार बार कह रहे हैं, लेकिन फिर भावना का मैसेज आ गया कि कहाँ पर ऑथेंटिक एंड ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी मिडेंट्री प्रोसेस के बारे में, आप बार बार हालांकि बता रहे हैं।
1: देखिए, हमारी वेबसाइट www.admission.du.ac.in, आपको हमारी सारी टाइमलाइंस, सारे रूल्स रेगुलेशंस, सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सब कुछ आपको वहीं मिलेगा।
0: और जैसा कि आपने कहा कि ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें तरीका भी आपको जो है
1: यूनिव ऑफ दिल्ली, उसमें आप जाएं और वीडियोस आप हमारे देखें।
0: जी। एडमिशन के स्पेशल रूल्स और कंडीशंस मिड एंट्री के लिए रेगुलर से अलग हैं क्या, ये दीक्षा का सवाल है।
1: नहीं मैम, कोई इनमें कोई बदलाव नहीं है, वही रूल्स हैं जो पहले थे।
0: जी, और सवाल अब आखिर में, क्योंकि प्रोग्राम के अंत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, आपसे प्रोफेसर आनंद यही पूछना चाहूँगी कि हमारे स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, और एक मिड एंट्री का प्रोसेस जो है स्ट्रेस फ्री हो, वेल इन्फॉर्म्ड मैनर में हो, उसके लिए क्या करना चाहिए।
1: देखिए, बस सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमारी वेबसाइट पर जाएँ, हमारे जो दो बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिसको हम कहते हैं बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन BOI, जिसमें हर प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी दी गई है, और CSAS कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, जिसमें आपको बाकी सारी जानकारी दी गई है, आप पढ़िए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, बच्चे जस्ट गूगल में रैंडम सर्च करते हैं, कोई भी वीडियो आ गया, देख लिया, और फिर कन्फ्यूजन के शिकार हो जाते हैं। तो आप ऐसा ना करें, हमारी वेबसाइट पे जाएं, BOI पढ़ें, CSAS पढ़ें, और उसके बाद हमारी वेबसाइट से आवेदन करें और थोड़ा इंतज़ार करें। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर सीट मिलेगी।
0: बिल्कुल ज़रूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर सोनकर हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए और मिड एंट्री इन CUET के बारे में इतना जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।
1: थैंक यू आकृति जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपने मुझे बुलाया, और आशा करता हूँ कि आज के प्रोग्राम से काफ़ी छात्रों को फ़ायदा हुआ होगा।
0: जी हाँ, यकीनन हुआ होगा, और मैं भी आज की बातचीत के बाद यही समझ पाई हूँ कि सही जानकारी और सिंसेरिटी जो है बहुत ज़रूरी है। आप चाहे शिक्षा की बात करें, करियर की बात करें, या लाइफ का, मुझे लगता है कोई भी अवसर क्यों ना हो, हमने आज बहुत अच्छे से समझा कि मिड एंट्री की क्या नियम हैं, क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या आधिकारिक जानकारियां हमको किन किन प्लेटफॉर्म्स पे मिलेंगी। याद रखिए, अवसर कभी कभी हमारे सामने एक अलग रास्ते से भी आ सकते हैं। आपको एक मौका और मिल रहा है, उसको पहचानिए और सही मौके पर सही कदम उठाइए। इसी के साथ मैं आकृति भी आज के प्रोग्राम से लेती हूँ विदा। नमस्कार।

नमस्कार, दो बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है, जिनमें नीट परीक्षा मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई भी शामिल है। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर, गुजरात के मांजलपुर सीट से भाजपा के सत्येंद्र भाई पटेल और दतिया सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत 3रे स्थान पर। तमिलनाडु में मदुरई जिले के मेलूर में सड़क दुर्घटना में 1 शिशु सहित 5 लोगों की मौत हो गई। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। पूरा देश सावन माह के पहले सोमवार पर शिव भक्ति से सराबोर है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पालकी सवारी निकाली जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र

मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने भारत द्वारा 13 स्वर्ण सहित 39 पदक जीतने पर प्रसन्नता व्यक्त की। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी गई। और मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे शालिनी, लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम आशियाना। तो दोस्तों, कल वीकेंड पर आपने किया होगा भरपूर आराम, या फिर शायद किया होगा आपने बहुत सारा काम। और वीकेंड के बाद जब सोमवार का दिन आता है तो मुझे लगता है कि शायद ही ये दिन किसी को अच्छा लगता होगा, क्योंकि कई लोग तो बहुत आराम करते हैं लेकिन कई लोग अधूरे काम को निपटाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। कोई सोता है देर तक, और किसी के लिए कपड़े धोना, सफाई करना, राशन लाना, बच्चों के साथ समय बिताना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना आज हम इसी मुद्दे पर बात करें कि अगर घर में छुट्टी का दिन है तो वहाँ पर कैसा नज़ारा देखने को मिल रहा है, जिससे कि परिवार के काम हो रहे हैं या आराम हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा काम कर रहा है या कोई बहुत ज़्यादा आराम कर रहा है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे हम आज बात आपके अपने शो आशियाना में।

दोस्तों, कई घरों में वीकेंड पर या फिर छुट्टी के दिन एक ही नज़ारा देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति तो कर रहा होता है ढेर सारा काम और दूसरा कर रहा होता है भरपूर आराम। तो दोस्तों, अगर परिवार एक है तो जिम्मेदारियां भी तो साझा होनी चाहिए ना। आपको क्या लगता है, अगर बच्चे अपना काम करें, अपने कमरे को अपने आप ही ठीक करें और पापा भी आराम से सोफे पर ना पड़े रहें बल्कि मम्मी के साथ थोड़ा सा हाथ बटाएं, और अगर हाथ नहीं बटाना चाहते तो थोड़ा सा बाजार का काम संभाल लें, क्योंकि अब पहले की तरह तो रहा नहीं कि जो महिलाएं घर में ही हैं वो बाहर का भी काम कर रही हैं, और लगातार काम करते करते उनको भी आराम चाहिए होता है। इसीलिए ज़रूरी ये है कि हर कोई थोड़ा थोड़ा हाथ बटाए, जिससे कि काम जल्दी ख़त्म हो जाए और साथ बिताने के लिए ज़्यादा समय मिले। आखिर परिवार की सबसे बड़ी ताकत ही तो है एक दूसरे का साथ, और तभी तो पूरे परिवार के चेहरे पर आएगी मुस्कान।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।

क्या किया जाए जिससे कि परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग हो जाए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों, हर घर की पता है एक ही सबसे बड़ी कमी है और सबसे बड़ा दुश्मन है हर घर का, वो है मोबाइल स्क्रीन। छुट्टी के दिन भी होता क्या है कि कई लोग घर में अपने अपने फ़ोन में बिज़ी नज़र आते हैं और ऐसे में परिवार के लोगों के साथ जो बॉन्डिंग है वो नहीं बन पाती और दूरी बनी रहती है। तो क्यों ना इस बार एक छोटा सा नो मोबाइल आवर रखा जाए। साथ में चाय पी सकते हैं आप, कोई बोर्ड गेम बन खेल सकते हैं या किचन में कुछ कुकिंग कर सकते हैं साथ ही साथ वे, और हाँ, पुरानी तस्वीरों को निकाल सकते हैं जिससे कि उन्हें देखते देखते उन पुरानी यादों को ताज़ा किया जाए और दिल खोलकर की जाए बातें। यकीन मानिए दोस्तों, ये छोटी छोटी यादें ना किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट से कहीं ज़्यादा खूबसूरत होती हैं और उससे ज़्यादा खुशी देती हैं।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
3: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े।

0: आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
1: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026।
0: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना आपके अपने स्टेशन ऑफ द नेशन आकाशवाणी रेनबो पर। हम बात कर रहे हैं कि छुट्टी के दिन परिवार में क्या कुछ किया जाए जिससे परिवार के सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। दोस्तों होता क्या है ना कि कई बार घर में हम काम का इतना प्रेशर ले लेते हैं कि काम करते चले जाते हैं। छुट्टी का दिन होता है लेकिन सुबह से उठ के घर के एक एक कोने की सफाई करना, कुछ स्पेशल बनाना, सारे बचे कुचे काम निपटाना और उसके लिए सिर्फ वीकेंड का ही दिन मिलता है या फिर कोई छुट्टी का दिन। लेकिन लेकिन लेकिन दोस्तों आराम करना भी ज़रूरी है क्योंकि ये शरीर और मन की ज़रूरत है। अगर पूरे सप्ताह आपने लगातार काम किया है तो थोड़ा देर तक सोना, अपनी पसंदीदा किताब पढ़ना या फिर संगीत सुनना भी ज़रूरी है। आप अपनी हॉबी को भी समय दे सकते हैं क्योंकि आराम का मतलब पूरा दिन बिस्तर पर पड़े रहना नहीं है, बल्कि थोड़ी सी सैर करना, हल्की एक्सरसाइज करना, परिवार के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से आपको नई ऊर्जा मिलती है जिससे कि आप दोबारा अगले हफ्ते के लिए तैयार हो सकें पूरी एनर्जी के साथ। इसीलिए ये संतुलन बनाना बेहद ज़रूरी है।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: दोस्तों, अब आशियाना में बात करेंगे घर की नन्ही सी मुस्कान की, यानी कि उन छोटे छोटे बच्चों की जिन्होंने इस प्रकृति में अब पहला कदम रखा है, यानी कि इन्फेंट्स की। दोस्तों, स्वस्थ बचपन की पहली पहचान होती है माँ के साथ, माँ के दूध के साथ। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक पूरी दुनिया विश्व स्तनपान सप्ताह मना रही है। इस वर्ष भी उद्देश्य है स्तनपान के प्रति जागरूकता बढ़ाना और हर माँ को सही जानकारी और सहयोग देना। जन्म के पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना बच्चे के बेहतर पोषण, मजबूत प्रतिरोधक क्षमता और स्वस्थ विकास के लिए बेहद अहम माना जाता है। वहीं ब्रेस्ट फीडिंग माँ की हेल्थ के लिए भी बेहद लाभदायक है। तो आइए, इस विश्व स्तनपान सप्ताह पर हम सभी लोग मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां हर माँ को स्तनपान कराने के लिए परिवार, समाज और वर्क प्लेस हर जगह पूरा सहयोग मिले, क्योंकि स्वस्थ शुरुआत ही स्वस्थ भविष्य की नींव है।

दोस्तों इस मैसेज के साथ ही जरूरी है अपने परिवार के हर छोटे बड़े व्यक्ति के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ बॉन्डिंग को बनाना और उसको बनाए रखना, क्योंकि छुट्टी का दिन सिर्फ काम का या आराम का नहीं होता बल्कि एक बैलेंस बनाने का दिन होता है जिसमें आप परिवार के लोगों के साथ अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने मन के लिए कोई सुकून भरी शुरुआत कर सकते हैं।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है।
2: वो लिखते हैं, रेडियो उद्घोषक और श्रोता का रिश्ता आवाज से शुरू होकर विश्वास, आत्मीयता और दिलों के जुड़ाव तक पहुँचता है। इसी आत्मीयता को हम उमंग कार्यक्रम में देख सकते हैं। यही जुड़ाव बना रहे।
0: जी हाँ श्रोताओं, यही जुड़ाव बना रहे, हमारी भी यही इच्छा है। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी सुनवाई जाती है। इसी कड़ी में श्रोता संवाद में सर अजीत जी और प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी से मनोदर्पण विषय पर बातचीत सुनी और पसंद आई।
0: आगे आपने लिखा है, कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी सराहनीय लगी। इस जानकारी को सुनकर विद्यार्थी, शिक्षक एवं अभिभावक निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। श्रोता संवाद में मानसिक स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण जानकारी सुनवाने के लिए हम प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल जी एवं सर अजीत जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
2: एक निवेदन भी करते हैं कि ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित करें। किसी कारणवश ये कार्यक्रम श्रोता सुनने से वंचित रह गए हों तो वो भी इस कार्यक्रम को सुन सकें और कार्यक्रम सुनकर लाभ भी उठा सकें। एक बार पुनः आभार, शुक्रिया, धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और आदित्य जंघेल के साथ साथ अंजलि जंघेल जी का। आप लिखते हैं कि रेडियो की पहचान उसकी आवाज नहीं बल्कि श्रोताओं के दिलों से उनका जुड़ाव है। और अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान जिज्ञासा, विराट तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव लिखते हैं,
0: नियत स्टेशन से अगर हम उमंग कार्यक्रम नहीं भी सुन पाते हैं तो किसी न किसी स्टेशन से जरूर सुन लेते हैं
2: जी,
0: क्योंकि ये आसपास के किसी न किसी स्टेशन से अलग अलग समयों में प्रसारित होता रहता है।
2: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए। और अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो श्रोताओ, हमारा पहला प्रश्न था, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान क्या है?
2: इसका उत्तर है साथियों, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान है दादा साहब फाल्के पुरस्कार।
0: अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, श्री महादेव देसाई महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे। वे महान देशभक्त और गांधी जी के अनुयायी थे।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न।

0: हमने आपसे पूछा था श्रोताओं कि बिजली बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे।
1: इसका उत्तर है लगभग 10,000 बार।
0: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। श्रोताओ, हमने आपसे पूछा था अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है।
1: अंग्रेजी शासन के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IAS के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा।
0: और श्रोताओ, अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमने आपसे पूछा था अपनी किस पुस्तक में APJ अब्दुल कलाम जी ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है।
1: साथियों, पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनके शिक्षक ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
0: तो श्रोताओ, ये थे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये नारा किसने दिया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: YouTube में जाकर टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करके सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक भी डाउनलोड कर सकते हैं।
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर, जैसा कि आप जानते हैं, और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। श्रोताओ, संदेश जरूर भेजिएगा।
1: जी, आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIET NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है मेरी माँ।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है। ये पाठ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी की जेल डायरी का एक अंश है, जिसमें उन्होंने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माताजी की भूमिका को सराहा है।
0: मेरी माँ, मेरी

0: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
1: राम प्रसाद बिस्मिल के मुख से निकली इन पंक्तियों से भला कौन परिचित नहीं होगा। ये वो गीत है जिसे लगभग पूरा भारत गाता था।
2: सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
1: इस गीत ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों की रग रग में क्रांति की ज्वाला भर दी थी। इस गीत को गाते गाते न जाने कितने स्वाधीनता सेनानी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए।

उनका नाम था राम प्रसाद, लेकिन बिस्मिल के उपनाम से वो बहुत प्रसिद्ध हुए। इसी उपनाम से उन्होंने बहुत सी देशभक्ति की कविताएं और गजलें लिखी। बिस्मिल का अर्थ होता है बेचैन या घायल। राम प्रसाद बिस्मिल एक लेखक, कवि और क्रांतिकारी थे, जिनका जीवन हमेशा देश के असंख्य युवाओं के लिए

0: प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
1: वो कहते थे,
2: मेरा रिश्ता क्रांति और कलम दोनों से है।
0: बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के एक गांव में मुरलीधर और मूलमती के यहां हुआ था।
3: सरिया खेलते हैं किसन रामा दूसरे पिसन।
0: वो बचपन से ही बहुत नटखट प्रवृत्ति के थे। उनका मन पढ़ाई में कम और खेल कूद में ज्यादा लगता था। उन्हें तैराकी, कुश्ती जैसे खेल बहुत पसंद थे।
1: अपने बचपन और शिक्षा के बारे में बताते हुए उन्होंने अपनी आत्मकथा मेरे निज दिनों की छटा में लिखा है।
2: जब मैं कोई 7 वर्ष का हुआ तो पिताजी ने स्वयं ही मुझे हिंदी अक्षरों का बोध कराया और फिर एक मौलवी साहब के मकतब में उर्दू पढ़ने के लिए मुझे भेज दिया गया। वहां से मैंने 4th जमात पास की।
0: समय का पहिया चलता गया। उनके पिताजी पर स्वाधीनता संग्राम का बहुत प्रभाव था और शायद इसलिए वो अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध थे, लेकिन उनकी माता के हस्तक्षेप के कारण उन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए मिशन स्कूल भेज दिया गया।
1: बिस्मिल के जीवन में यदि हम गहराई से झांकें, तो पता चलता है कि वो अपनी माता से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जीवन में अपनी माता की भूमिका को बहुत अहम माना है। वो मानते हैं कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में उनकी माता का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वो लिखते हैं,
2: 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। उस समय वे नितांत अशिक्षित ग्रामीण कन्या के समान थी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष के बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उनमें खुद ही पैदा हुआ। मोहल्ले की सखी सहेली जो भी घर पर आया करती थी, उनमें जो शिक्षित थी, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। परिश्रम के फल से थोड़े ही दिनों के बाद वे देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी।
0: साथियों, उन दिनों समाज द्वारा स्त्री शिक्षा पर बिल्कुल जोर नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिस्मिल की माताजी आज भी सब महिलाओं और कन्याओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और आदर्श हैं।
2: मां तो मां होती है बस। ऐसे मेरी माता मेरे धर्म कार्यों और शिक्षादि में बड़ी सहायता करती थी। वे प्रातः 4 बजे ही मुझे जगा दिया करती थी। मैं नित्य प्रति नियम पूर्वक हवन किया करता था और यहीं से मेरी रुचि अध्यात्म और सत्य निष्ठा के प्रति बढ़ी। सच कहता हूं, यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो शायद मैं भी साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता और सत्य के प्रति मेरा इतना अधिक अनुराग न होता।
1: अपनी सत्य निष्ठा के बारे में उन्होंने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है।
2: एक बार पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा ले। आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत उत्तर दिया, ये तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मामला खारिज हो जाएगा, लेकिन मुझ पर कोई प्रभाव ना हुआ और ना ही मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में मैं हमेशा सत्य का आचरण करता था और चाहे कुछ हो जाए मैं सत्य बात कह देता था।
0: तो ऐसी थी सत्यवादिता राम प्रसाद बिस्मिल की और इस शिक्षा की नींव डाली थी उनकी माताजी ने।
1: पराधीन भारत में अपनी पीढ़ी के कई युवाओं की तरह

0: राम प्रसाद बिस्मिल भी अंग्रेजी शासन के अत्याचारों से परेशान थे। माता की शिक्षा, श्रेष्ठ गुरुजनों की प्रेरणा और अनेकानेक देश प्रेम और अध्यात्म से ओतप्रोत साहित्य के अध्ययन ने उनके मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर दी थी।
1: उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपना जीवन देश की आजादी की लड़ाई में समर्पित करने का फैसला कर लिया। आठवीं कक्षा तक अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल बहुत कम उम्र में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन गए थे।
0: नौ अगस्त 1925 को हुए काकोरी रेल कांड में वो अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिए गए। जेल में ही उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और अंग्रेजों से छिपकर उसके अंशों को जेल से बाहर भेजते रहे।
1: उनकी आत्मकथा का शीर्षक था मेरे निज जीवन की छटा। आत्मकथा को उनके मित्रों ने प्रकाशित करवा दिया।
0: गोरखपुर जेल में लिखी गई आत्मकथा में उन्होंने अपनी माता को बड़े ही मार्मिक शब्दों में संबोधित किया है।
2: जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, मैं अनेक जन्मों में भी प्रयत्न करूं तो तुमसे ऋण नहीं हो सकता। मां, तुम्हारी ही दया से तो मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी मां, पर मुझे विश्वास है तुम ये सब समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलिवेदी की भेंट कर गया और तुम्हारी कोख कलंकित न की। अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा तुम्हारा बेटा। मां, जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा ना, तो उसके किसी पन्ने पर तुम्हारा नाम भी

काकोरी रेल कांड में उन पर मुकदमा चला और उनके साथ 3 और क्रांतिकारी साथियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दे दी गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरी माँ, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम राग शंकरा।
1: इस कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध राग शंकरा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसके स्वर विस्तार, आरोह अवरोह, गायन समय और स्वर मालिका के बारे में भी बताया गया है।

उत्पत्ति बिलावल थाट से हुई है। इसके आरोह में ऋषभ और मध्यम अर्थात रे और म तथा अवरोह में केवल मध्यम यानी म वर्जित स्वर है, परंतु राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए ऋषभ अर्थात रे का प्रयोग कर्ण स्वर के रूप में किया जाता है। आरोह में 5 और अवरोह में 6 स्वर प्रयोग

राग शंकरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग शंकरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग शंकरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, हम आशा का दीप जलाएं। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना

0: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम राग शंकरा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अजीत
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: सौम्या मलिक,
1: जगबंधु और मुकुल के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: नमस्कार, आप सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, जो आप सुनते हैं प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से अपने फेवरेट चैनल FM रेनबो पर, जहां सेहत से जुड़ी हर उलझन का मिलता है सटीक समाधान। आज आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त काजल, और आज के हमारे इस फोन इन कार्यक्रम का विषय है बच्चों का स्वास्थ्य, पोषण और आयुर्वेद। इस विषय पर हमारे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रीना अरोरा, जो आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं। नमस्कार डॉक्टर।
2: नमस्कार जी,
1: स्वागत है आपका हमारे इस फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में।
2: धन्यवाद जी।
1: कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये गाना

0: आशा करते हैं ये गाना आपको भी पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब कैसा था ये गाना?
1: बहुत बढ़िया।
0: तो अगर आपके मन में भी है कोई सवाल तो पूछिए ना, बस फोन उठाइए और डायल कीजिए 011-2342-1080। दूसरा नंबर भी है, नोट कर लीजिए, जो है 011-2342-1082। और हाँ, आप व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है रेडियो डॉक्टर, जिसमें आज का विषय है बच्चों का स्वास्थ्य, पोषण और आयुर्वेद। तो डॉक्टर रीना अरोरा जी, आपसे पहला सवाल, जैसा हमारा विषय है बच्चों का स्वास्थ्य और पोषण, इसमें आयुर्वेद की क्या भूमिका है, इस बारे में आप क्या कहेंगी?
1: जी, आयुर्वेद की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें, अगर उसको लोग माने। आयुर्वेद में बच्चों का स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए बहुत कुछ वर्णित है। उनका डेली मसाज होनी चाहिए, उनकी एक प्रॉपर दिनचर्या होनी चाहिए, और उसके बाद डाइट की अगर बात करूं तो प्रॉपर रेनबो पूरा डाइट मिलनी चाहिए उनको, सात रंग जैसे होते हैं
0: जी, जी।
1: तो अलग अलग सब्जियां उनको सारी खानी चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, दूध पीना चाहिए, देसी घी खाना चाहिए, बट इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: ये सब चीज़ें अगर बच्चे करें तो वो स्वास्थ्य में कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे।
0: और ये जो डाइट प्लान है हमारा, वो डाइट प्लान मतलब बच्चों को कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है बच्चे स्कूल भी जाते हैं,

0: स्कूल जाने के कारण उनका जो उनकी जो दिनचर्या है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। बच्चे ये नहीं समझ पाते कि मुझे कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। तो ऐसा कुछ है कि उनका डाइट प्लान क्या होना चाहिए?
1: हाँ, एक बेसिक डाइट प्लान बच्चों का बता देती हूँ। सुबह
0: जी
1: सुबह अक्सर बच्चे जल्दी स्कूल जाते हैं, 6 बजे या 7 बजे बसेस आ जाती हैं,
0: जी
1: तो सुबह दूध पी के जा सकते हैं बच्चे, क्योंकि अक्सर वो बोलते हैं मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ नहीं खा के जाऊँगा, ये बहुत कॉमन है।
0: जी जी
1: च्यवनप्राश दे सकते हैं सुबह बच्चों को हम, वो बहुत पौष्टिक है सबके लिए। और उसके बाद उनको आप एक फ्रूट ज़रूर पैक करके दीजिए, उनको आदत डालिए बचपन से कि आपको एक फ्रूट खाना है। प्रॉपर न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट दीजिए, जिसमें दाल का चीला हो सकता है, बॉयल्ड चने हो सकते हैं, कोई ना कोई परौंठी हो सकती है, लेकिन सेम मोनोटोनस मील रोज़ नहीं देनी चाहिए। कभी आप दलिया दे सकते हैं, बहुत सब्जियां डाल के चेंज कर करके, और एक बच्चों को सुंदर खाना बना के दीजिए, हेल्दी और सुंदर।
0: जी
1: अगर आप कहें कि नहीं बेटे आपको सिर्फ घिया और खिचड़ी है हेल्दी वो खाना है, तो बच्चा आपकी बात नहीं
0: जी जी
1: सुनेगा।
0: जी जी
1: तो इसमें मैं
0: बिल्कुल
1: गलती बच्चे की नहीं आपकी मानूंगी। तो
0: जी
1: आप
0: जी
1: बच्चे को हेल्दी खाने को इस तरह बना के दीजिए कि
0: हाँ
1: उसका दिल करे खाने का।
0: जी
1: अब जैसे आजकल बच्चों को बहुत शौक है मोमोज खाने का, तो
0: हाँ
1: आप रागी के आटे के मोमोज बनाइए, उसके अंदर सब्जी फिल कीजिए, उसको स्टीम करके दे दीजिए, रोटी सब्जी तो है वो, और क्या है।
0: जी जी
1: तो ऐसे ही अगर स्प्रिंग रोल्स खाते हैं बच्चे,
0: जी
1: उसमें भी आप मिलेट्स का आटा यूज करके उसका बेस बना के बीच में सब्जी स्टफ करके उनको देसी घी में फ्राई करके कभी कभी दे दीजिए, कम से कम बाहर के गंद खाने से तो बचेंगे। बेसिकली क्या है, रोटी सब्जी तो है ये,
0: जी जी
1: लेकिन अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करें तो आप बच्चे को बहुत पौष्टिक खाना दे सकते हैं।
0: जी और डॉक्टर साहब, आजकल देख रहे हैं कि बच्चों में मोटापा ओबेसिटी जो है एक आम समस्या बनती जा रही है, तो ऐसे में क्या बच्चों को फैट फ्री खाना देना उचित होगा? आयुर्वेद क्या कहता है इसमें?
1: बच्चों को कभी भी फैट फ्री खाना आयुर्वेद नहीं एडवाइस करता।
0: जी
1: ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए और ब्रेन का काम जिनका होता है उनको
0: जी
1: देसी घी बहुत ज़रूरी है उनके लिए, इसमें बहुत रिसर्च हो चुकी है। और इसका जो वेट जो बढ़ रहा है उसका बहुत बड़ा एक कारण फ़ोन भी है। छोटे छोटे बच्चों को हम अपनी जान छुड़ाने के लिए कई बार फ़ोन पकड़ा देते हैं, उसके
0: जी
1: बाद तो खैर बच्चों को उसकी आदत पड़ चुकी होती है। आप जैसे ही फ़ोन खींचोगे बच्चा रोना शुरू कर देगा, चिल्लाएगा, अलग अलग तंग करेगा आपको बुरी
0: हाँ,
1: तरह से।
0: छोटे छोटे बच्चों में
1: हाँ,
0: भी ये
1: तो
0: देखा
1: वो गलती
0: जाता
1: कुछ हमारी भी है ना, हमारे पास
0: है
1: टाइम नहीं होता बच्चों को।
0: जी
1: पहले बच्चों को पेरेंट्स संभालते थे, बड़ी बड़ी फैमिलीज थी, एक ने दूसरा बंदा संभाल लेता था।
0: जी
1: तो
0: जी
1: ये न्यूक्लियर फैमिलीज भी इसका बहुत बड़ा कारण है
0: जी
1: कि उनके
0: जी
1: पास बात करने के लिए और टाइम किसी के पास है नहीं, तो
0: जी
1: वो अल्टीमेटली घर पे कई बार अकेले बच्चे मेट्स के पास होते हैं या वैसे अकेले हैं तो फोन पे लगे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज जीरो हो जाती है। तो वो एक कारण है वेट बढ़ने का फैट्स की बजाय। और जंक फूड्स भी एक बहुत बड़ा कारण है। प्रॉपर मील, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आपको बता रही थी कि
0: जी
1: ये अपना एक मील, एक फ्रूट और एक मील लेके जाएं, आने के बाद दाल प्रॉपर एक कटोरी भर के दाल, एक सब्जी और रोटी बच्चों को मिलनी चाहिए, साथ
0: जी
1: में छाछ या दही जो सीजन है उसके अकॉर्डिंगली, शाम को दूध दें, फिर रात का डिनर दें जिसमें रोटी सब्जी दें। तो ये एक मिनिमम एक डाइट है जो बच्चों को मिलनी चाहिए। अलग अलग क्वांटिटी वेरी कर सकती है, किसी का पित्त प्रकृति है, किसी की वायु है, किसी की कफ है, एक्टिविटी लेवल, डिजीज के अकॉर्डिंगली, एज के अकॉर्डिंगली, बट ये
0: जी
1: बेसिक इतनी मिनिमम डाइट सबको कम या ज्यादा मात्रा में लेनी चाहिए।
0: जी
1: और
0: एक
1: अगर वो सब्जियां खाएं
0: जी
1: बहुत ज्यादा तो वेट नहीं बढ़ता। आजकल के बच्चे मैंने देखा है बहुत, अगर वो उन्होंने कहा कि मैं घिया, तोरी, टिंडे, करेले, बीन्स वगैरह नहीं खाऊंगा तो मदर्स मान लेती हैं। हमारे टाइम में
0: जी
1: मदर्स कहाँ सुनती थी, वो जो बना है वो खाना है
0: वो खाना
1: आपको।
0: है जी जी
1: तो
0: जी
1: ये भी एक रीजन है।
0: हाँ मैम, एक मैसेज आ रहा है,
1: जी
0: ये अनमोल गुप्ता सरिता विहार से बता रहे हैं कि इनका लड़का 4 साल का है, 2 महीने पहले उसे गले में चोट लग गई थी, इसके बाद आवाज़ में हकलाना आ गया था, क्या करें, पहले सही था, तो ये जानना चाह रहे हैं। हालांकि ये हमारे विषय से इतर है, लेकिन चूंकि ये जानना चाह रहे हैं तो इनको आप इनके सवाल का जवाब दे
1: गले
0: दीजिए।
1: में चोट लग गई थी तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि वोकल कॉर्ड्स में कोई ना कोई दिक्कत हुई है, वहीं पे चोट लगी है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर एक बार डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बिना रिपोर्ट्स के मैं भी कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगी,
0: जी
1: लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसकी आवाज़ वापस आ जाएगी। प्रॉपर आप इलाज कीजिए, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी मिल सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट्स लेके जाइए और आप कंसल्ट कीजिए।
0: जी तो मैम अपने विषय पर लौटते हैं फिर
1: जी
0: से। बच्चों में मैम स्ट्रेस और एंजाइटी ये बढ़ रही है और उनकी दिनचर्या इससे प्रभावित हो रही है, तो कैसी हो उनकी दिनचर्या, उनके मानसिक विकास के लिए आयुर्वेद में क्या बताया गया है?
1: इसमें हमें थोड़ा सा मैं दो तीन चीज़ें बोलूँगी। एक तो कि फ़ोन भी इसका बहुत बड़ा कारण है, बच्चे हर चीज़

0: नहीं है, बट
1: हाँ
0: उनके लिए उनकी एज के अकॉर्डिंगली बढ़ी है,
1: जी
0: तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है। और दूसरा, अगर डाइट के अकॉर्डिंगली मैं बात करूं
1: जी
0: तो देसी घी बहुत इफेक्टिव है मेंटल हेल्थ के लिए, गाय का दूध बहुत अच्छा है, बच्चों को पीना चाहिए, सीताफल जो होता है दिस इज़ वेरी गुड ब्रेन टॉनिक, ये बच्चों को खाना चाहिए, चाहे उसका मीठी मीठा बना के खाएं, सब्जी
1: जी
0: बनाएं, रोटी में डालें, जैसे भी बनाएं, बहुत सारी उसकी रेसिपीज जो यूट्यूब पे मिल जाएंगी
1: जी
0: तो वो आप देख सकते हैं। तो
1: जी
0: बच्चों को किसी भी तरह उसको खिलाइए सुंदर तरीके से।
1: जी तो बच्चे तो ज्यादातर आलू
0: हाँ,
1: या फिर चने,
0: यही तो वेट बढ़ने का कारण
1: राजमा,
0: है आलू।
1: हाँ तो वो मतलब सीताफल तो देखना नहीं चाहते।
0: हाँ तो
1: भिंडी, एक भिंडी है जो सब्जी देखती हूँ कि बच्चे मतलब चाव
0: बहुत
1: से उसकी
0: ज्यादा,
1: भुजिया खा लेते
0: हाँ
1: हैं, लेकिन सीताफल जरूरी है।
0: सीताफल का अगर सूप बनाएं तो शायद उनको पता नहीं लगेगा, रोटी में आटे में गूंदिए तो उनको पता नहीं लगेगा। यही मैं बोल रही हूँ कि उनको हमेशा बताना नहीं कि सीताफल दे रहे हैं,
1: जी
0: उसको चेंज कर दीजिए, उसका कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन चेंज कर दीजिए आप।
1: हाँ, तो वो प्रेजेंटेशन चेंज
0: हाँ
1: करने से जैसा मतलब अच्छा दिखेगा
0: अच्छा
1: तो
0: दिखे,
1: अट्रैक्ट होगा और
0: यस
1: वो खाने के।
0: हाँ
1: मैम एक और मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पर कि मेरा बेटा 6 साल का है, वो अब भी नाइट में जब सोता है मॉर्निंग में मतलब उसे बिस्तर में पेशाब हो जाता है। ये राहुल कुमार जाटव जी हैं, गाजियाबाद से पूछ रहे हैं, तो इसका क्या मतलब?
0: इसका कारण है, एक तो बच्चे को डांटिए मत, कई बार बच्चा डर के भी उसका टॉयलेट निकल जाता है बेड पे, वो
1: जी
0: रात में नींद में भी डरता है वो उस डांट से कि मेरा सुसुना निकल जाए, तो उसको
1: जी
0: प्यार कीजिए आप, बिल्कुल मत डांटिए उसको। सेकंड है कि 6 बजे 7 बजे के बाद कोई लिक्विड ना दें, कई लोग सोते टाइम दूध देते हैं, वो भी एक कारण हो जाता है टॉयलेट आने का रात को,
1: जी
0: पानी भी बहुत ज़्यादा, 6 बजे के बाद लिक्विड्स थोड़ा कम दें,
1: जी
0: और इतना करके देखें, अगर फिर भी नहीं ठीक हो तो प्लीज़ एक बार डॉक्टर को विजिट कीजिए, ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है, आप आसपास किसी आयुर्वेदिक सलाहकार से मिल सकते हैं।
1: जी तो आयुर्वेद में मतलब इसके लिए कोई दवा
0: बिल्कुल
1: कुछ
0: हैं
1: ऐसी
0: दवाएं, बट
1: होगी?
0: मैं नाम
1: जी
0: इसीलिए नहीं बताना चाहती कि
1: हाँ
0: बच्चे को देख के उसका वेट देख के डोज वगैरह हम डिसाइड करते हैं,
1: जी जी
0: कई
1: जी
0: चीज़ें और होती हैं जिसकी हिस्ट्री लेने के बाद हम मेडिसिन बताते हैं, इसलिए जो बेसिक ये कर सकते थे वो मैंने बता दिया है, अगर इससे नहीं ठीक हो तो किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
1: और अगला सवाल ले लेते हैं मैम, बच्चों के छोटे बच्चों की मालिश कितनी ज़रूरी है और इसके लिए कौन सा तेल उपयुक्त होता है, और मालिश कितने मतलब कब करें,
0: जी
1: समय उसका क्या होना चाहिए?
0: मालिश छोटे बच्चों के लिए क्या, बड़े के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप बच्चे की जब मालिश करते हो ना,
1: जी
0: एक तो उसको नींद अच्छी आती है,
1: जी
0: एक उसका बॉडी अच्छे से ग्रो करती है, मसल्स रिलैक्स होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, स्किन बेटर होती है।
1: जी
0: और तेल जो आपने पूछा है मेरे से,
1: जी
0: तिल
1: जी
0: का तेल एक अच्छा किसी भी ब्रांड का बहुत इफेक्टिव है मालिश के लिए,
1: जी
0: कोई बहुत हाई फाई ऑयल्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं है उसके लिए।
1: जी
0: कोई किसी को बीमारी है तो अलग बात है, जैसे किसी का वेट बहुत कम है तो हम अश्वगंधा तेल कहेंगे, या ऐसे किसी ने वेट लूज़ करना है तब अलग तेल कहेंगे,
1: जी
0: अदरवाइज एक जनरलाइज वर्जन पूछो तो तिल का तेल।
1: जी
0: और थर्ड आपने पूछा किस टाइम करनी चाहिए,
1: जी
0: हमें रात को मालिश करनी चाहिए बच्चे की, ताकि वो आराम से सो जाए, आप भी डिस्टर्ब ना हो और उसको वो ऑयल जो है बॉडी में एब्जॉर्ब हो। अक्सर
1: जी
0: लोग क्या करते हैं, सुबह नहाने से 10 मिनट पहले
1: हाँ
0: मालिश कर
1: हाँ
0: देते हैं,
1: हाँ
0: वो गलत है, हमेशा रात को मालिश कीजिए ताकि बच्चा आराम से सोया रहे, तेल अंदर एब्जॉर्ब हो, उसका इफेक्ट आए उस पर।
1: जी तो रात की मालिश, और मालिश के लिए सबसे अच्छा तिल का तेल।
0: ये बड़ों के लिए भी पूरा वाजिब है ये, अगर
1: अच्छा
0: एडल्ट्स
1: बड़े
0: भी अगर
1: भी
0: मालिश करवाएं तो उनको भी
1: जी
0: बहुत रिलैक्सेशन मिलती है।
1: जी जी तो मैम एक गाना सुन लें?
0: बिल्कुल जरूर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। आप हमें 011-2342-1080 और 011-2342-1082 इन नंबर्स पर फ़ोन कर अपना सवाल पूछ सकते हैं, और 9868107070 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। और डॉक्टर साहब, ये जो सप्ताह है ना, ये हम जानते हैं कि हर साल 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है
2: जी।
1: तो इसमें जैसे अभी हमने गाना भी सुना कि देखो मैंने देखा है एक सपना तो हर एक औरत का सपना होता है माँ बनना।
2: बिल्कुल।
1: और लेकिन इसमें एक कहावत भी आपने सुनी होगी ना कि अगर तूने माँ का दूध पिया है तो बड़े होने पर स्वास्थ्य और पोषण में बचपन में मिले माँ के दूध की बड़ी भूमिका होती है। और बच्चों के लिए माँ के दूध का महत्व क्या होता है, ये जरा बताइए आप।
2: इसके लिए एक श्लोक जरूर सुनाना चाहूँगी। मातुरेव पिबेत स्तन्यम तत्परम देह वृद्धि। यानी जो माँ का दूध है ये सिर्फ एक ऐसा आहार है जो बच्चे की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए चाहिए।
1: डॉक्टर साहब थोड़ा सा आपको रोक लें, एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं।
2: जी जी,
1: हेलो।
3: हेलो, हाँ जी मैम, नमस्कार जी।
1: नमस्ते, अपना नाम बता दें।
3: मैं नाम प्रभ, पंजाब से बोल रही हूँ मैम।
1: जी जी, अपना सवाल बताएं।
3: मैम मेरा बेटा है, 13 साल का मेरा बेटा है।
1: जी जी
3: मैम, वो कुछ खाता नहीं है, जैसे कि सब्जी, कोई फ्रूट्स, जैसे सैलड वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं वो खाता है मैम।
1: अच्छा,
3: और वो
1: अच्छा।
3: बहुत दुबला और पतला बहुत है मैम, और मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। वो कुछ ऐसा नहीं, उसको जैसे जन की अलग से बनाती हूँ उसका, जिधर लिक्विड कुछ, जिधर चने की तरी होगी राजमा, वैसे ऐसे में खाता है मैम वो।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब बताएं।

0: सवाल का समाधान।
1: नमस्कार प्रणव जी।
2: हाँ जी, नमस्कार मैम जी।
1: इसको आप ना, एक तो जैसे कि मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में बता चुकी हूँ इसमें, कि कुछ सुंदर बना के खिलाएं, और दूसरा आप अदरक पे नमक लगा के, थोड़ा सा नींबू लगा के, छोटा सा टुकड़ा खाने से पहले उसको डेली सुबह शाम दें। धनिए और पुदीने की चटनी दें, ये थोड़ा एंजाइम्स इसमें बहुत अच्छे होते हैं डाइजेस्टिव, तो उसका पाचन शक्ति बेटर होगी। और अभी उसको हैवी खाने देना बंद करें, ताकि उसको भूख लगे अच्छे से। सूप्स वगैरह दे सकते हैं आप, और बाकी और भी कुछ आप कर सकते हैं ऐसा।
2: ओके मैम, थैंक यू मैम।
1: ठीक,
0: तो इनका, इनके सवाल का समाधान तो डॉक्टर इनारा जी ने दे दिया है। अब मैम आ जाते हैं अपने विषय पर, जो था कि माँ के दूध की क्या भूमिका होती है बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में, और इसका महत्व क्या है।
1: जी, माँ के दूध में बहुत सारे ऐसे विटामिन्स, मिनरल्स और कोलेस्ट्रॉल वगैरह हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बहुत होते हैं
0: जी,
1: जो आपको टोटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। पूरे 6 मंथ्स तक आपको पानी तक नहीं देना बच्चे को, खाली ब्रेस्ट मिल्क पे रखना है बच्चे को। आजकल जो कई ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनको पता नहीं होता, तो वो बहुत फोर्स करती हैं कि नहीं, गर्मी बहुत है, लिक्विड उसमें पूरा सफिशेंट है ब्रेस्ट मिल्क में, वो काफ़ी है बच्चे की ग्रोथ के लिए। तो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करना चाहिए 6 मंथ्स। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली एक स्वर्ण प्राशन संस्कार वर्णित है, जिसको इस पीरियड में करना चाहिए बच्चों को। वो बच्चे की हेल्थ और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। जो 16 संस्कार आयुर्वेद में वर्णित है, उसमें से एक जातकर्म संस्कार है, जो पैदा होते ही बच्चे को शहद चटाने का ट्रेंड है, और एक स्वर्ण प्राशन संस्कार है जिसमें स्वर्ण भस्म होती है बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, थोड़ा सा एक और मेडिसिन होती है, बना बनाया मिलता है मार्केट में
0: जी,
1: और उसको आप बच्चे को दें, ताकि उसका ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव हो, इम्यूनिटी बेटर हो और उसका मेंटल आईक्यू बेटर हो।
0: जी जी, और एक सवाल हमारे एक श्रोता पूछ रहे हैं, ये अनूप कुमार हैं रांची से, ये पूछना चाह रहे हैं कि टेल पोस्टम पोस्टम प्रोग्राम इफ इन इन्फेंट नॉट एबल टू लैक्टेशन, तो अगर बच्चा कुछ खा नहीं रहा है तो उसको कैसे मतलब खिलाना चाहिए, छोटे बच्चे के लिए शायद ये पूछ रहे हैं।
1: नहीं, मतलब बच्चा जो की डाइट दे रहे हैं वो नहीं खा रहा,
0: वो खा नहीं रहा है, तो मतलब अगर बच्चा फीड नहीं कर रहा है, अगर दूध नहीं पी रहा है, छोटा बच्चा है, तो उसे पोषणम पोषणम का क्या कोई आयुर्वेद में कुछ ऐसा प्रोग्राम है।
1: मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी इससे रिलेटेड, कई बार क्या होता है कुछ डिजीजेज भी ब्रेस्ट मिल्क के ठीक ना होने से बच्चों को होती हैं, आयुर्वेद में वर्णित हैं ऐसी बीमारियाँ, तो उसके लिए मदर्स का जो दूध है उनको भी उस पीरियड में जंक फूड्स नहीं लेने चाहिए, कुछ भी ऐसी डाइट्स ना लें जिससे उनके दूध में वो टेस्ट आए, क्योंकि दूध किससे बनना है, जो मदर ने डाइट ली है। तो जैसे कि हम दूसरे प्राणियों में चीज़ देखते हैं कि हम डाइट उनको अच्छी दें ताकि दूध अच्छा आए, ऐसे ही मदर में भी वही है
0: जी।
1: तो मदर्स की डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए, उनको स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, बीच बीच में मेथी का सेवन करें, शतावरी ले सकते हैं दूध कम आए तो, ताकि वो दूध में स्तन्य दोष भी आयुर्वेद में वर्णित हैं कि वो आपका दूध जो आ रहा है वो दूषित तो नहीं है, बच्चा इसलिए भी कई बार वो नहीं पी रहा, या फिर बच्चा बीमार है इसलिए दूध नहीं पी रहा। तो दोनों केसेस में किसी आप आसपास के डॉक्टर को कंसल्ट करें, ताकि कोई दिक्कत है तो आप उसका इलाज करवा सके।
0: जी जी, तो मैम ऐसा है ना कि 6 महीने तक कहते हैं कि माँ का दूध सबसे ज्यादा चाहिए, जैसा आपने भी बताया कि उसे पानी तक नहीं देना चाहिए माँ के दूध के अलावा। तो 6 महीने के बाद किस तरह बच्चों को खाना देना, जैसे थोड़ा थोड़ा करके क्या क्या खिलाना चाहिए।
1: आयुर्वेद में 3 स्टेजेस वर्णित हैं बच्चे की, एक शीर, एक शीर अनाद, एक अनाद। शीर जिसमें जो फर्स्ट 6 मंथ है सिर्फ दूध देना है, शीर अनाद जिसमें दूध और अन्न थोड़ा सा हम स्टार्ट कर देते हैं, और अनाद है फिर खाली जो खाना ही खाते हैं, दूध बीच बीच में लेते हैं। तो इसमें 6 मंथ्स के बाद हमारी एक बुक में मेंशनड है कि आप उसको लेहन करवाएं, यानी फ्रूट्स का आप मैश फ्रूट्स दे सकते हैं, ताकि उसका विटामिन सी कंटेंट बहुत ज़्यादा और आयरन वगैरह की एब्जॉर्प्शन हो और उसको वीकनेस नहीं हो। दलिया मैश करके दे सकते हैं, घिया तोरी वगैरह आप मैश करके बॉयल करके देसी घी डाल के, नमक डाल के थोड़ा सा वो दे सकते हैं। ऐसे ही दाल चावल को रोस्ट करके उसका पाउडर बना के रख लीजिए, सेरेलेक वगैरह की बजाय, या कैसे जो बेबी फ्रूट्स आते हैं उसकी बजाय, इसको आप पानी में घोल के थोड़ा सा नमक और देसी घी डाल के दें, तो ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है।
0: एक बार और बता दीजिए मैम कि मतलब क्या देना चाहिए, शुरुआत किससे करनी चाहिए बच्चों
1: उसमें का? आप मैश फ्रूट्स दीजिए, जैसे आप मौसमी का रस थोड़ा दे सकते हैं, मैश करके केला थोड़ा बहुत दे सकते हैं, मैश करके सेब दे सकते हैं उसको मिक्सी में।

0: या ग्राइंड कर लीजिए, उसको बच्चे को
1: जी
0: थोड़ा थोड़ा खिलाइए।
1: जी जी
0: ऐसे करके ये मैश फ्रूट्स दे सकते हैं
1: जी
0: ताकि उसका वाइटमिन सी कंटेंट बढ़े और बाकी वाइटमिन मिनरल्स भी उसके अंदर जाएं और उसको वीकनेस नहीं हो।
1: जी
0: धीरे धीरे उसकी टेस्ट बड्स और बेटर होंगी, फिर टीथिंग डेवलप हो जाती है, दांत आने शुरू होते हैं, तभी
1: जी
0: आप थोड़ा सेमी सॉलिड भी स्टार्ट करेंगे।
1: जी
0: उसमें सूजी की खीर दे सकते हैं, नमकीन खीर भी बना सकते हैं सूजी की।
1: जी जी
0: सब्जियाँ ग्राइंड करके मिक्सी में इसमें थोड़ी थोड़ी डालनी शुरू कीजिए ताकि उसका टेस्ट डेवलप हो। दालें बॉयल करके इसमें डालिए, दालें मैश करके उसको देसी घी और नमक डाल के दे सकते हैं, और रोस्ट करके दाल और चावल को रख लीजिए,
1: जी
0: उसको भून के एक बंद डिब्बे में ग्राइंड करके भी रख सकते हैं।
1: जी
0: उसको गर्म पानी डालिए, उसमें घोलिए थोड़ा सा नमक और घी डाल के बच्चे को आप ये जो आजकल पैक्ड फूड्स की बजाय आप ये दे
1: जी
0: सकते हैं, ज़्यादा हेल्दी चीज़ें हैं।
1: जी
0: थोड़ा सा इसमें मूंगफली का पाउडर भी भून के आप डाल सकते हैं रोस्टेड,
1: जी
0: तो
1: जी
0: इससे उसका स्वास्थ्य जो है ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसके बाद तो फिर नेक्स्ट स्टेज अनाथ है, उसमें नॉर्मल आपकी तरह 9वें 10वें महीने में बच्चे वही खाना शुरू कर देते हैं जो पेरेंट्स खाते हैं।
1: जी तो वो खाना जो जो
0: हाँ
1: खाना देंगे वो जो टेस्ट लग जाएगा
0: हाँ
1: वही
0: वो
1: वो
0: लग,
1: खाएगा।
0: तो इसलिए उस टाइम आपको भी डिसिप्लिन में रहना है। आप सिर्फ बच्चे को कहते हैं कि वो हेल्दी नहीं खाता, उसको खिलाने वाला कौन है? अगर आप उसके सामने डेली चाउमीन पिज्ज़ा ला रहे हैं
1: जी
0: फिर उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बेटा तू घिया क्यों नहीं खा रहा, तो गलती तो फिर हमारी भी है।
1: जी जी जी जी
0: तो हमें थोड़ा सा कंट्रोल
1: हाँ
0: करना होगा और डिसिप्लिन बचपन से बच्चे को शो कीजिए कि आपको फ्रूट्स भी खाने हैं, आपको दाल भी खानी है, सब्जी भी खानी है, तो दूध भी पीना है, तो
1: जी
0: उसको समझ आएगा कि ये बैलेंस न्यूट्रिशन है।
1: हाँ। और मैम एक इसमें एक सवाल है कि जब बच्चों के दांत आते हैं तो उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो
0: बिगड़ जाती
1: जाती है,
0: है।
1: बिगड़ जाती है, तो इसकी क्या वजह है और आयुर्वेद में इसके लिए क्या समाधान ऐसा है?
0: ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो
1: जी
0: बच्चों के डेंटिशन के टाइम ये होते हैं कुछ चेंजेस, तो उस टाइम एक दो मेडिसिन्स हैं आयुर्वेद में, वो हम उनको दे सकते हैं और उससे उनका स्वास्थ्य बेटर रहता है। रागी का आटा यूज़ कीजिए उस टाइम, उसकी ग्रेवी बना के थोड़ा सा ऐसे ही लपसी टाइप बना के दे सकते हैं, चीला बना के दे सकते हैं
1: जी
0: उनको। और कुछ एक दो मेडिसिन्स भी हैं, मैं नाम इसलिए नहीं बताना चाहूँगी, अपने आप मत लीजिए, किसी डॉक्टर से मिलिए,
1: जी
0: वो स्पेसिफिक स्टेज के लिए आयुर्वेद में वर्णित है जो आप
1: जी
0: बच्चे को दे सकते हैं।
1: जी मैम एक और मैसेज आ रहा
0: जी
1: है कि अभी का जो समय है उसमें लेट मैरिजेस हो रहे हैं, मतलब 30 के बाद शादियां हो रही हैं, जिससे माँ के दूध में इसमें कमी आती है क्या लेट मैरिजेस होने से? तो ये पूछ रहे हैं नरदेव सिंह चौहान कोटद्वार उत्तराखंड से, तो इसमें क्या बताएंगे आप?
0: इसपे बहुत सारे रीजंस हैं, डाइटरी चेंजेस भी हैं
1: जी
0: आजकल, वो डाइट्स लोग कम खाते हैं जो पहले सारे लोग लेते थे,
1: जी
0: प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट टाइम नहीं है बनाने का, तो रेडी टू ईट मील्स होते हैं कई बार,
1: जी
0: ये भी कुछ कारण है। एक्सरसाइज कीजिए और अपनी डाइट को वैसा रखिए, आप दूध का इंटेक ज़्यादा कीजिए, फ्रूट्स लीजिए, सब्जी दाल अच्छे से लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। फिर भी अगर दूध कम आता है तो
1: जी
0: स्ट्रेस भी उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न है, कई बार
1: जी
0: वर्किंग लेडीज़ को जॉब का भी स्ट्रेस होता है, घर का भी स्ट्रेस होता है, तो
1: जी
0: इसलिए भी दूध कम आता है। उसके लिए कई मेडिसिन शतावरी वगैरह ले सकते हैं, और कई मेडिसिन भी हैं जो दूध बढ़ाने में काम करती हैं, मोरिंगा बहुत अच्छा है वो ले सकते हैं रूटीन में, वैसे सब्जी में यूज़ कीजिए, लहसुन है, मेथी है, ये चीज़ें ले सकते हैं।
1: नहीं तो जैसा मैम ये पूछ रहे हैं कि 30 साल के बाद अगर शादी होती है तो क्या उससे
0: ऐसा सबके साथ नहीं है।
1: सबके साथ नहीं होता है? और मैम एक और सवाल है, ये पूछ रहे हैं अमर रमेश कुमार
0: जी
1: खत्री, इनका पूछना है कि न्यूबॉर्न बेबी का लैक्टोजेन या सेरेलैक या मदर फीड के अलावा और कोई मिल्क या शेक दे सकते हैं क्या? जैसे मदर बॉटल है, दूध नहीं आने से, मतलब न्यूबॉर्न बेबी है अगर और माँ का दूध नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए?
0: अगर माँ का दूध नहीं आ रहा
1: जी
0: तो उसका बिल्कुल नहीं आ रहा, तो
1: जी
0: उसका सब्स्टिट्यूट फिर गाय का दूध है
1: जी
0: या बकरी का दूध है, ये दोनों की स्टडी हुई हुई है,
1: जी
0: काफ़ी हद तक वो मैच करते हैं,
1: जी
0: ये आप दे सकते हैं। क्योंकि अगर आपका दूध आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी
1: जी
0: तब आप दीजिए, और अगर कम आ रहा है तो आप मेडिसिन लीजिए, उससे आपका प्रॉपरली ठीक हो जाता है वो।
1: हाँ तो मतलब न्यूबॉर्न बेबी का अगर माँ का दूध नहीं है तो फिर वो गाय का दूध या बकरी का दूध, ये दोनों वो दे
0: यस
1: सकते हैं।
0: यस
1: तो
0: यस,
1: मैम मात्रा क्या होनी चाहिए क्योंकि
0: मात्रा
1: बेबी
0: नहीं
1: का?
0: बता सकते, वो बच्चे पे
1: अच्छा
0: डिपेंड करता है कितना वो
1: जी
0: पचाएगा, कितनी उसको भूख
1: कितनी
0: है।
1: कितनी ले सकता है?
0: हाँ
1: तो मैम ये तो माँ के दूध, जो माँ का दूध कहते हैं अमृत समान होता
0: जी
1: है, और पहला दूध वो जो पीला दूध होता है
0: हाँ
1: वो कहते हैं कि बीमारियों से लड़ने में अगर हम बड़े होते हैं ना तो वो लड़ने में वो इम्यूनिटी को कहते हैं कि बूस्ट करता है,
0: बिल्कुल
1: तो उस दूध

0: की पहचान कैसे हो, बच्चे को कैसे पिलाना चाहिए, ये अगर नई नई कोई माँ बनी है तो उनके लिए बता दीजिए आप।
1: उस दूध की पहचान को नहीं जो पहली बार निकलता है,
0: जी
1: बस आप डायरेक्ट बच्चे को लगाइए ब्रेस्ट को
0: जी
1: ताकि उसको वो सक करे
0: जी
1: और वो दूध फर्स्ट वाला पी सके,
0: जी
1: ठीक है?
0: जी और मान लीजिए कि बच्चा अगर शक नहीं कर पा रहा है तो फिर उसका क्या, उसको पिलाने का क्या उपाय होना चाहिए, क्योंकि वो दूध कहते हैं कि कुछ देर ही रहता है शायद।
1: नहीं, थोड़ा 3-4 दिन रहता है, सो
0: जी
1: उसको 2-3 बार लगाएंगे तो बच्चा अपने आप करता है सक उसको।
0: जी उसको शक करता है। तो कहते हैं गर्भवती माँ को क्या क्या करना चाहिए जो होने वाले बच्चे का स्वास्थ्य और पोषण सही रहे, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चों का जो स्वास्थ्य और पोषण होता है वो गर्भावस्था में ही तय हो
1: बिल्कुल,
0: जाता है।
1: इसमें आयुर्वेद में मासानुमासिक परिचर्या बताई गई है,
0: जी
1: गर्भिणी परिचर्या बताई गई है
0: जी जी
1: कि गर्भिणी को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। हर मंथ की अलग डाइट है। मैं इसमें मेन मेन चीज़ें बताऊंगी
0: जी जी
1: कि ज़्यादातर इसमें मधुर रस का यानी थोड़ा मीठा खाना, मीठे का मतलब ये है कि स्पाइसी बहुत ज़्यादा ना लें इस पीरियड में।
0: जी
1: दूध का सेवन ज़्यादा करें,
0: जी
1: मक्खन भी बीच बीच में किसी किसी मंथ में बताया गया है। कुछ प्लांट्स हैं जैसे गोखरू वगैरह है, पर्टिकुलर मंथ्स में उनका सेवन करना चाहिए
0: जी
1: जिससे जो फीटल ग्रोथ है वो प्रॉपर होती है, उसके पूरे अंग प्रॉपर होते हैं, उसकी मेंटल हेल्थ ठीक रहती है। तो इसलिए ये कुछ चीज़ें जो आयुर्वेद में गर्भिणी परिचर्या है, जो आयुर्वेदिक एंटीनेटल केयर है,
0: जी जी
1: उसको भी अगर आप फॉलो करेंगे तो फीटल हेल्थ बच्चे की बहुत बढ़िया रहेगी।
0: जी
1: आप इस पीरियड में स्वस्थ रहने के लिए
0: जी
1: खुश रहें।
0: जी
1: मदर को देखिए, आप सिर्फ डाइट की बातें कर रहे हैं कि उसको
0: जी
1: क्या खाना चाहिए।
0: जी जी
1: अगर वो प्रेग्नेंट लेडी की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, उसका साइकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ा हुआ है,
0: जी
1: आप उसको कंटिन्यूअसली स्ट्रेस दे रहे हैं, जॉब का स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस है, प्रेगनेंसी का स्ट्रेस है,
0: जी जी
1: तो आप 20 अच्छी बार डाइट दे दें, आप उसका असर नहीं होना है। जो एक मानसिक खुशी होती है ना, जो दिल से आदमी पहले खुश होता था, वो चीज़ साथ में होनी चाहिए डाइट के।
0: जी
1: खाली आपके बहुत अच्छी डाइट से फर्क नहीं पड़ेगा। लेडीज़ का आयुर्वेद में ये वर्णित है, किसी गर्भवती स्त्री का
0: जी
1: ध्यान ऐसे रखना चाहिए जैसे आप एक तेल की भरी हुई कटोरी को लेके चल रहे हैं, तो
0: जी
1: देखिए आप कितने ध्यान से चलेंगे कि तेल
0: जी
1: गिरे
0: जी
1: ना।
0: जी जी
1: ऐसे ही गर्भवती स्त्री का ध्यान रखिए कि
0: जी
1: वो उसका खान पान का, उसकी मानसिक, उसकी स्थिति खुश रहे वो, और उसकी वैसे बाकी हेल्थ का भी। तभी आप एक्सपेक्ट कीजिए कि फीटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि जैसा माँ वैसा
0: वैसा
1: बच्चा,
0: बच्चा
1: है
0: जी
1: ना?
0: जी जी
1: तो इसलिए खाली डाइट की बात ना करें, बाकी चीज़ों को भी देखें कि उसको खुश भी रखना एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है,
0: जी
1: तभी अंदर बच्चा भी आपका ठीक रहेगा।
0: जी जी तो मैम अभी जो हैं वर्किंग लेडीज़ हैं,
1: जी
0: ऑफिस जिनको जाना है, तो उनको अपने खान पान का, अपने मेंटल स्ट्रेस का, इन सब के लिए आयुर्वेद में कोई ऐसी दवा हो जिससे वो दवा लेने की से उनके बच्चे का स्वास्थ्य बेहतर रहे, पोषण बेहतर रहे और साथ साथ गर्भवती का भी।
1: इसमें आयुर्वेद में जो मैंने अभी जैसे पिछली बार उसमें बताया है,
0: जी
1: जो मासानुमासिक वटी भी आती है, आयुर्वेदिक एंटीनेटल केयर है,
0: जी
1: जैसे हम एलोपैथिक में करते हैं वैसे आयुर्वेद में भी एंटीनेटल केयर है।
0: अच्छा।
1: हर मंथ के लिए आपको क्या डाइट है, क्या करना चाहिए, तो आप उसके साथ साथ आयुर्वेदिक एंटीनेटल केयर भी लें ताकि आपकी हेल्थ भी ठीक रहे और आपके बच्चे की भी ठीक रहे। और जो प्रेगनेंसी योगा है वो
0: जी
1: साथ में कीजिए, खुश रहिए, मेडिटेशन वगैरह कीजिए, डाइट लीजिए। तो
0: जी
1: इससे मेरे को नहीं लगता वर्किंग लेडीज़ को कोई एक्स्ट्रा फर्क पड़ेगा कि मैं वर्किंग हूँ तो, बल्कि उससे मैंने देखा है वर्किंग लेडीज़ थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होती हैं क्योंकि
0: जी
1: उनके ऊपर लोड बहुत होता
0: लोड
1: है।
0: बहुत होता है। जी मैम तो एक गाना सुन ले
1: जी
0: मैम
1: जी जी
0: एक अच्छा सा अब गाना सुनवा देते हैं आपको।
1: जी

0: डॉक्टर साहब, ये गाना माँ को समर्पित, मतलब कहते हैं ना कि माँ में तो पूरी दुनिया ही समाई
1: जी
0: हुई
1: जी
0: है।
1: जी
0: तो और माँ के लिए बच्चों की देखभाल करना, बच्चों का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, क्योंकि मतलब छोटे बच्चे की तबीयत अगर खराब हो जाए तो माँ की नींद खराब हो जाती है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: रात में सो नहीं पाती वो।
1: बिल्कुल
0: और अभी जो मौसम चल रहा है, ये बारिश का मौसम, इसमें है कि छोटे बच्चे क्या, बड़े बच्चे जो बाहर खेलने जाते हैं, वायरल फीवर है, डायरिया है, मतलब छोटी छोटी बीमारियों से परेशान हो जाते हैं। और उनकी तो ऐसे मौसम में उनकी देखभाल कैसे करें हम?
1: इसमें एक तो हमें पानी जो है या तो बॉइल्ड वाटर पिए, क्योंकि
0: जी
1: अक्सर वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं।
0: जी
1: बच्चे अगर पानी में भी खेल रहे हैं, आके अच्छे से उनके साबुन से हाथ पैर धुलवाएं उनको,
0: जी
1: और क्योंकि स्किन डिजीज़ भी बारिश के पानी से हो जाती है
0: जी
1: गंदगी की वजह से।
0: जी
1: और अगर एक किसी को आजकल वायरल भी बहुत फैला हुआ है, कोई अगर स्नीजिंग हो रही है, तो उससे एटलीस्ट बारिश से बचें और मास्क लगा के रखें। और अगर फिर भी कोई दिक्कत है, बीच बीच में हल्दी वाला दूध ले सकते हैं,
0: जी
1: तुलसी का काढ़ा पी सकते हैं, ताकि आपको खांसी जुकाम और ये वायरल जो आजकल फैला हुआ है ये ना हो। पेट ख़राब है बहुत ज़्यादा तो मसूर की दाल की खिचड़ी दे सकते हैं,
0: जी
1: क्योंकि डायरिया भी हो जाता है इस सीज़न में बच्चों को अक्सर,
0: जी
1: क्योंकि वाटर बॉर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं।
0: जी स्कूल में गए,
1: हाँ
0: खेलने गए, खेलने के मैदान में।
1: हाँ और कुक्ड मील्स लें, कच्चे
0: जी
1: कुछ भी कटा हुआ बाहर से ना लें, वो भी एक इन्फेक्शन का कारण है। सैलड्स या फ्रूट्स कटे हुए बाहर से ना खरीदें।
0: जी जी मैम, और आजकल है ना कि बाहर से, मतलब कल एक बच्चा आया तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल लाल हो रही थी, तो ये आंखों में लाली आ जाना, तो क्या कोई बड़ी समस्या तो नहीं है? और उसमें
1: कंजक्टिवाइटिस हो सकता है,
0: जी
1: वही मैं बोल रही हूँ, इस सीज़न में मैक्सिमम डिजीजेस फैलती हैं,
0: जी
1: तो उसको अवॉइड करने के लिए या तो आप स्पेक्स लगा के जाएं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है,
0: जी
1: अदरवाइज आइसोलेटेड रहें तो बेटर है, ताकि दूसरों को ना हो।
0: जी और मैम, आपने बताया काढ़ा, तो ये काढ़ा मतलब हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं ना कि अगर मौसम, अगर कुछ जुकाम वाम हो गया तो काढ़ा बना के दे दिया
1: बिल्कुल
0: जाता था, तो हम तो जैसे तैसे पी लेते थे, लेकिन आज के बच्चे वो काढ़ा मतलब कैसे बनाए जो उनको स्वाद लगे?
1: उनको एक काम करो, काढ़ा बना
0: जी
1: के उसकी चाय बना के दे दो थोड़ी सी, मत कहो कि ये काढ़ा है।
0: ये काढ़ा है, तो उसमें काढ़ा में क्या क्या, जैसे तुलसी पत्ता है और
1: मुलेठी
0: क्या
1: डाल सकते
0: क्या?
1: हो,
0: जी
1: तुलसी डाल सकते हो थोड़ी सी,
0: जी
1: जरा सी एक चुटकी भर काली मिर्च डाल सकते हो,
0: जी
1: बस इतना काफी है।
0: जी बस उसका काढ़ा बन गया,
1: हाँ
0: और उसे मतलब मीठा डाल के दें या नमक थोड़ा?
1: उसको बॉयल करने के बाद जब
0: जी
1: आपने
0: जी
1: गैस से उतार लिया, थोड़ा
0: जी
1: सा
0: जी
1: कोसा रह गया,
0: जी
1: तब उसमें जरा सी शहद डाल के दे दीजिए,
0: जी
1: तो ये काफ़ी है। उससे बच्चे को थोड़ा सूदिंग वो मिलेगा, और गार्गल्स कर सकते हैं गर्म पानी में नमक और शहद डाल के या हल्दी डाल के।
0: जी जी और तुलसी का पत्ता तो कहते हैं कि अभी के मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए।
1: तुलसी के पत्ते को कभी चबाना नहीं चाहिए, उसमें
0: ओ
1: मरकरी होता है,
0: जी
1: तो इसलिए उसका काढ़ा मैं इसीलिए मैंने बोला है। और दूध
0: हाँ
1: में तुलसी बॉयल नहीं करनी चाहिए।
0: जी, ये बहुत बड़ी बात है कि दूध में तुलसी बॉयल मत कीजिए, और तुलसी का पत्ता कच्चा मत दीजिए,
1: हाँ, चबाना नहीं उसको।
0: चबाना नहीं, मतलब उसका तो वो जूस निकाल के,
1: हाँ वो
0: जैसे
1: कर
0: है ना
1: सकते
0: शहद
1: हैं,
0: के साथ
1: हाँ वो
0: उसको
1: कर
0: दे
1: सकते हैं,
0: सकते
1: वो कर
0: हैं,
1: सकते
0: या नमकीन पसंद है तो कुछ नमक
1: हाँ
0: डाल के, या अदरक या कुछ गोल
1: अदरक
0: मिर्च
1: भी डाल
0: वगैरह।
1: सकते हैं इस काढ़े में थोड़ी सी,
0: जी
1: वो
0: जी
1: भी अच्छी है गले के लिए, तो बस
0: जी
1: इतना काफ़ी है। बच्चा फिर उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया तो बच्चे पीते नहीं हैं,
0: जी
1: इसीलिए मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बता रही।
0: हाँ, ये काढ़ा सुन के ही लगता है
1: हाँ
0: ना कि
1: बस इसको
0: काढ़ा
1: बॉयल करके थोड़ा सा इसी में चाय बना के थोड़ी सी चाय दे सकते हैं आप।
0: जी तो अगर आप भी अपना सवाल पूछना है आपको हमारे डॉक्टर से, तो आप 011-234-21080 और 011-234-21082 इन नंबर्स पर फ़ोन कीजिए ना, और 9868107070 इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी इस नंबर से जुड़ सकते हैं और फटाफट अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे इम्यूनिटी की बात करते हैं,
1: जी
0: तो इम्यूनिटी, बच्चों की इम्यूनिटी, ऐसे तो वो मतलब कहते हैं कि बचपन में ऐसे ही स्ट्रांग होते हैं बच्चे, जैसे अगर उनका पालन पोषण अगर सही किया गया हो, अगर उनके पोषण पर ध्यान दिया गया हो, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया हो, तो बच्चे मजबूत होते हैं शायद। तो लेकिन अगर कोई बच्चा कमज़ोर है, बार बार बीमार हो रहा है, तो उसकी इम्यूनिटी के लिए आयुर्वेद में क्या कोई ऐसी दवा हो जो बच्चा, भी जैसे सवाल भी किसी ने पूछा था कि बच्चा खाता नहीं है, तो आपने बताया कि ये बना के खिलाइए, तो ऐसे ही इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या कोई इम्यूनिटी बूस्टर भी ज़रूरी होता है
1: जैसे
0: बच्चों के
1: मैंने
0: लिए?
1: अभी बताया था ना, स्वर्ण प्राशन बहुत अच्छा है इम्यूनिटी के लिए,
0: जी जी
1: च्यवनप्राश भी दे सकते हैं, वो
0: जी
1: भी
0: जी
1: बहुत अच्छा है इम्यूनिटी के लिए।
0: जी जी
1: और इसके अलावा प्रॉपर खाना खाएं
0: जी
1: सुबह दोपहर शाम,
0: जी,
1: उससे एक्सरसाइज करें तभी आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी।
0: जी,
1: अगर आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते वो भी एक कारण है इम्यूनिटी कम होने का।
0: जी, और बच्चों में देखते हैं ना कि आजकल है ना कि आउटडोर गेम्स छोड़ के वो इंडोर गेम्स मतलब
1: फोन पे सारी गेम्स
0: फोन पे खेलते रहते हैं, तो बाहर जाना, खेलना, मिट्टी में
1: सनलाइट लेना
0: जी उतना ही जरूरी होता है। और पहले तो था कि हम तो बस स्कूल से आए, रखा बैग रखा और होता रहता था कब खेल ले जाए, लेकिन आजकल बच्चों को देखते हैं ना कि वो घर में रह के ज्यादा खेलना, कैरम खेलना है, लूडो खेलना है, ज्यादातर समय उनका मोबाइल में भी चला जाता है, तो मोबाइल से दूरी कैसे बनाए ये भी एक टिप्स दे दीजिए।
1: इसमें तो पेरेंट्स को कुछ ना कुछ रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि आप आजकल इतना माहौल ख़राब है कि आप किसी अननोन के पास बच्चे को छोड़ेंगे भी सोचेंगे उससे पहले, तो पेरेंट्स उनके साथ खेलें आउटडोर गेम्स, उनको पिकनिक पे लेके जाएं, तो उनका ध्यान डाइवर्ट होगा कि ये भी अच्छा लग रहा है, तो वो इंटरेस्टेड होंगे इस काम को करने में भी।
0: जी जी जी, तो ये तो अच्छी टिप्स रही। और एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो।
2: हेलो
0: जी, अपना नाम बताएं।
2: जी सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, अमित त्यागी बात कर रहा हूँ ग्राम नंगोला यूपी से।
0: नमस्ते नमस्ते, अपना सवाल पूछिए।
2: जी डॉक्टर, मैं मेरे सवाल है कि मेरी भतीजी है 6 साल की और वो खाने पीने से पीछे हटती है, मतलब हमें तो खाना देंगे वो भागे खाने को देख के, तो उसके लिए थोड़ा सा बताइए, और इस तरह के तो बच्चे उनके लिए भी थोड़ा सा हो जाएगा।
1: आप एक तो उनको कुछ भी मैंने पहले भी बताया है, कुछ टेस्टी सा बना के रखिए सामने ताकि वो बच्चे उसको खाएं। जैसे अब चाउमीन है, सारी दुनिया कहेगी चाउमीन हेल्दी है, मैं आपको बताती हूँ आप उसको हेल्दी तरीके अनहेल्दी है सॉरी आप उसको हेल्दी तरीके से बनाइए। आप उसके वो आटे में पालक मिक्स करके और उसको गूंद के, जैसे चाउमीन की जो मशीन है या कोई ऐसी घर पे और भी चीज़ें हैं उनसे वो चाउमीन की वो बना के बॉयल करके चाउमीन की तरह उसको सब्जियाँ डाल के बना दीजिए। बेसिकली ये क्या हुआ, रोटी सब्जी तो हुई, तो थोड़ा सा अपने कुकिंग एबिलिटीज़ को चेंज कीजिए। अब दाल है, मैं बोल रही हूँ दाल का चीला खिलाओ, और वो बच्चा अगर नहीं खा रहा उसको स्टीम करके उसकी किसी भी तरह से उसकी प्रोपोर्शन चेंज करके कुछ नई रेसिपीज बना के उसको दो, बेसिक्स तो चीज़ें वही रहेंगी। और अगर उसको बिल्कुल भूख नहीं लगती तो आप जैसे मैंने बताया था थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा आप नमक लगा के दे सकते हैं, धनिए पुदीने की चटनी दीजिए, सूप बनाइए डिफरेंट टाइप्स के, ताकि वो कुछ उसका नमक काली मिर्च डालिए, उसमें थोड़ा लहसुन डालिए, उसका अगर पाचन शक्ति ठीक नहीं है तो वो भी बेटर होगा। और इसके बावजूद भी अगर बच्चा खाना नहीं शुरू करता तो कृपया किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को मिलिए, वो उसकी नाड़ी देख के आपको सब कुछ बता सकें और डाइट बता सकें किससे उसकी डाइट स्टार्ट करनी है।
0: मैम एक सवाल है इनका, इनका नाम शहनवाज है, ये पूछ रहे हैं कि मेरा बेटा 7 साल का है, बरसात में उसके हाथों पैरों में कुछ खुश्की सी होती है या कुछ चकत्ते से आ जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है और इसके लिए ये क्या करें?
1: ये एक डिजीज़ है, अगर चकत्ते से आते हैं शीत पित्त बोलते हैं आयुर्वेद में, और अगर ड्राइनेस है तो स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए अगर बारिश में ही स्पेसिफिक आती है तो हो सकता है किसी इन्फेक्शियस वाटर में वो खेलता हो उसकी वजह से होती हो। नीम के पानी से एक बार वॉश करके देखिए, आप उसको नहलाइए नीम के बॉइल्ड वाटर से 3-4 बार, अगर फिर भी नहीं ठीक होता तो कृपया किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाइए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए।
0: मैम एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं।
1: जी
0: हेलो।
3: जी नमस्कार।
0: नमस्ते नमस्ते,
3: दीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
0: जी
3: अपना हमारी जो गर्भवती माताएं हैं, आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट है ऋतुचर्या, अब वर्षा ऋतु चल रही है, तो हमारी जो गर्भिणी माताएं हैं उनके लिए कौन सा उचित आहार विहार है, कृपया विस्तार से बताएं।
1: गर्भिणी के लिए अगर पूरा स्पेसिफिक वर्षा ऋतु की बात करूं तो नहीं चलेगा, गर्भिणी में मासानुमासिक परिचर्या चलती है, किस मास में क्या आहार देना है वो मैंने पहले भी बताया है कि उसमें दूध देते हैं अलग अलग प्लांट्स के साथ, मक्खन के साथ, और एक हेल्दी डाइट उसको लेनी चाहिए। वर्षा ऋतु में एक जनरलाइज्ड वर्जन में बता देती हूँ सबके लिए कि आपको इस सीज़न में शहद का सेवन करना चाहिए, स्प्राउट्स का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि वायु बढ़ती है सबकी तो वो और ज़्यादा बढ़ेगी, मटर गोभी और वाइट चने इस सीज़न में थोड़े से कम लीजिए, हल्का खाना खाइए क्योंकि मंदाग्नि हो जाती है यानी भूख कम लगती है सबको, स्पाइसी खाने का दिल करता है तो आप नमक काली मिर्च डाल के सूप्स ले सकते हैं थोड़े थोड़े, और फ्रूट्स का इंटेक बीच बीच में कीजिए ताकि सब कुछ बैलेंस रहे, एनीमा भी थोड़ा थोड़ा करवा सकते हैं सारे, तो ये एक बेसिक सी मैंने वर्षा ऋतु की जो ऋतुचर्या है बताई है, ये सब कर सकते हैं, बट गर्भिणी के लिए स्पेसिफिक डॉक्टर से कंसल्ट करके फॉलो करें।
0: जी जी जी मैम, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि आजकल बच्चों में देखती हूँ कि पैरों में दर्द की शिकायत, जैसे थोड़ा सा भी खेल कर आएंगे तो बोले पैरों में दर्द है, तो ये क्या कैल्शियम की कमी, विटामिन्स की कमी, ऐसा होता है क्या, और आयुर्वेद में इसका क्या उपाय, क्या करें
1: इसके लिए? एक तो मालिश जरूर करें ऐसे बच्चों की, एक वो सनलाइट जरूर लें, खेलें धूप में भी, थोड़ा इधर उधर चलें ताकि बाहर निकलें घर से, सारा दिन एसी में, गाड़ी में एसी, घर में एसी, तो बिल्कुल सनलाइट एक्सपोजर नहीं होता, ये भी एक कारण है। हेल्दी डाइट लें, जिनकी डाइट में प्रॉपर देसी घी होना चाहिए, दाल सब्जी रोटी और दूध पिए।
0: जी,
1: खाली जंक फूड्स खाते हैं कुछ बच्चे
0: जी,
1: और बहुत टेंट्रम्स होते हैं अगर वो ना दो आप तो ये भी एक कारण है। वीकनेस होती जाती है धीरे धीरे करके, तो जब बच्चे को वीकनेस होती है, पेन हो रही है, तो वो इरिटेट होता है।
0: हाँ।
1: तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि वो प्रॉपर खेल रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, सनलाइट ले रहा है, डाइट ले रहा है
0: जी,
1: और मसाज जी, ये सब करेंगे तो ये सब चीजों से निजात पा सकते हैं।
0: मतलब बच्चों को मसाज जरूरी है,
1: बिल्कुल।
0: और मैम खान पान में जैसे कि कभी कभी, मतलब ऐसे तो जनरली खाएंगे ही, घर का खाना तो देना ही चाहिए, लेकिन क्या एक कभी कभी हमें दे देना चाहिए?
1: बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर पूरा एक महीना बच्चा तीनों टाइम आपके हिसाब से रेगुलर खाना हेल्दी खा रहा है तो कभी कभार चीटिंग करोगे तो इट्स ओके
0: जी,
1: ले वो पच जाएगा। लेकिन कभी भी अगर आप हेल्दी नहीं खा रहे रोज यही, और दूसरा अगर आप खेलते हो अच्छे से
0: जी, जी।
1: जो रिग्रेस एक्सरसाइज की कैटेगरी में आता है
0: जी, जी।
1: तो वैसे भी कुछ कभी कभार चीटिंग की हुई चल जाएगी।
0: मतलब जंक फूड कभी कभी
1: कभी
0: कभार दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं जंक फूड में?
1: अच्छा, ये
0: मतलब
1: भी
0: क्या है जो ज्यादा नुकसान ना करे, क्योंकि ये जो मसाले होते हैं मुझे लगता है कि वो मसाले खतरनाक होते हैं।
1: इडली खिलाइए बच्चे को बाजार से, बहुत हेल्दी है वो।
0: तो वो इडली तो खैर मैम, घर में अगर इडली बनाए तो वो कौन सा, मतलब जो जनरल बनाते हैं चावल दाल वाली इडली या फिर सूजी के?
1: चावल दाल वाली ज्यादा बेटर है, फर्मेंटेड है
0: जी,
1: सूजी वाली इंस्टेंट होती है वो, अगर सूजी

0: देखा जाए थोड़ा सा वेट बढ़ाने में थोड़ा सा हेल्प करती है।
1: जी
0: चावल दाल वाला जो पुरुष है वो एक्चुअल फर्मेंटेशन होती है
1: जी
0: तो वो थोड़ा ज़्यादा हेल्दी है,
1: जी
0: और सांबर भी हेल्दी ऑप्शन में आता है तो वो भी दे सकते हैं।
1: जी
0: रसम भी है, जैसे कुछ लोगों ने बोला बच्चे को भूख नहीं लगती, खाता नहीं, तो उससे भूख स्टिमुलेट होगी।
1: और रसम जो इमली का बना होता है या
0: जो
1: फिर
0: इमली और काफ़ी
1: टमाटर,
0: चीज़ें और डलती हैं उसमें वो दे।
1: रसम जरूरी है।
0: हाँ
1: मतलब रसम खाएं तो वो तो चटपटा भी
0: पीते हैं
1: लगता
0: उसको,
1: है,
0: हाँ इसीलिए
1: पीते
0: बोल
1: भी
0: रही हूँ।
1: है। हाँ
0: छल्ली आजकल आ रही है, भुट्टा जो है
1: भुट्टा,
0: दिस
1: हाँ
0: इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, किडनी
1: जी
0: हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है।
1: वाह
0: उसके जो सिल्क फाइबर्स होते हैं, जो बाल
1: जी
0: होते हैं, उसको
1: जी
0: बॉयल करके पिए तो जिनको यूरिन नहीं आता वो पी सकते हैं। तो इसलिए भुट्टा खाइए, नमक, काली मिर्च, नींबू लगा के एंजॉय कीजिए। जंक फूड देखिए मैंने बता दिया
1: और
0: हेल्दी।
1: या फिर उसको, जैसे वो स्वीट कॉर्न आता है
0: स्वीट
1: उसको,
0: कॉर्न थोड़ा मीठा ज़्यादा कईयों को नहीं पसंद, तो
1: जी
0: भुना हुआ जो भुट्टा है वो अच्छा है।
1: जो है, जो हम
0: हाँ
1: खाते थे, जो हमें
0: यस
1: पसंद
0: यस
1: था,
0: यस
1: वो सड़क के किनारे ऐसे भी
0: हाँ
1: मिल जाया करता था और इतना टेस्टी होता था।
0: हाँ
1: तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके वो आदत दिलानी चाहिए,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: उन्हें ले जाएं बाहर। तो
0: हाँ।
1: और पानी पूरी
0: ये घर पे बनाइए आप, फिर ये
1: घर पे
0: बहुत
1: बना
0: हेल्दी
1: के,
0: है।
1: जी
0: हाँ
1: फिर ये हेल्दी है।
0: हाँ उसमें धनिया पुदीना के डाल के, नींबू डाल के आप पानी बनाइए उसका,
1: जी जी जी
0: तो 1 से 1 महीने में एक बार खा लीजिए। मैं अलाउ कर रही हूँ बट
1: अच्छा
0: बनाइए घर पे।
1: जी, घर पे बना हुआ जो भी खाना है वो
0: हाँ
1: स्वास्थ्य के
0: क्योंकि
1: लिए
0: उसमें
1: बेहतर है।
0: इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं ना,
1: जी
0: आप सफाई से बनाएंगे, प्यार से बनाएंगे।
1: जी
0: अब बाहर वाले ने 100 लोगों के लाना है, उससे ज़्यादा उम्मीद क्या करोगे आप।
1: जी जी तो बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में जितना, मतलब हमारे घर का, घर के खाने का योगदान होता है, वो बाहर के खाने तो बिल्कुल ही अवॉइड करें, और कभी कभी चल सकता
0: हाँ
1: है ना। तो मैम, ये मौसम जो है, ये मौसम बहुत बदल बदल सा रहा है, और इस बदलते मौसम में बच्चों की बीमारियां, बड़े भी बीमार होते
0: बिल्कुल
1: हैं, बुजुर्ग जो हमारे घर में हैं वो भी बीमार हो सकते हैं। तो ऐसे में एक कुछ ऐसा हो जो इम्यूनिटी वाला हो, जो सबके लिए बेहतर हो, तो उस वो आप कौन सा, मतलब कौन सी रेसिपी ऐसी बता देंगी आप?
0: हाँ उसमें एक तो जैसे मैंने बोला था ना, शहद का सेवन करें।
1: जी जी जी
0: अगर आपको मीठा, मान लो कुछ लोग ग्रीन टी पीते हैं,
1: जी
0: उसमें आप चीनी डालते हैं या गुड़
1: जी
0: डालते हैं, तो उसमें शहद डाल के पीजिए इस सीज़न में,
1: जी
0: ठीक है।
1: जी
0: अदरक का सेवन कीजिए थोड़ा
1: जी
0: बहुत, ताकि आपका जो पाचन शक्ति है वो ठीक रहे।
1: जी
0: सूप पीजिए,
1: जी
0: भुट्टा खाइए, और
1: जी
0: बहुत हैवी मत खाइए हमेशा,
1: जी
0: बीच बीच में लाइट डाइट्स लीजिए।
1: जी
0: इतना सब करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे आप।
1: जी और एक क्वेश्चन, इनने रितु हैं, ये दिल्ली से हैं, ये पूछ रही हैं कि अगर एनीमिया हो तो कौन सा फ्रूट और ड्राई फ्रूट कौन सा खाना चाहिए?
0: इसके लिए किशमिश लीजिए आप एनीमिया के लिए। आयरन की कढ़ाई में आया, आयरन के यूटेंसिल्स में खाना बनाइए आप। फ्रूट्स में अनार ले सकते हैं, चुकंदर भी खाइए आप, उससे भी गाजर से आपका बढ़ेगा ये आयरन। और काले छोले अगर काली कढ़ाई में बनाएंगे, आंवला भी अच्छा है, अंजीर ले सकते हैं आप। और इसके अलावा एक्सरसाइज जरूर कीजिए, और सिट्रस फ्रूट्स कुछ ना कुछ साथ में जरूर लीजिए, ताकि आयरन की एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो जाए। एनीमिया के लिए देसी घी भी बहुत इफेक्टिव है आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली, उसका भी सेवन कीजिए और प्रॉपर डाइट लीजिए, ताकि आपका एनीमिया ठीक हो जाए।
1: हाँ, ये एक कॉमन सी प्रॉब्लम
0: हाँ
1: है, औरतों में कुछ ज़्यादा होती है ये एनीमिया, मतलब खून की कमी हो गई,
0: बिल्कुल,
1: तो खून की कमी को बढ़ाने
0: देसी
1: के
0: घी भी
1: लिए।
0: बहुत अच्छा है इसके लिए।
1: मैम देसी घी तो हम सुन रहे हैं, लेकिन होता रहता है कि देसी घी ज़्यादा खा लेंगे तो कोई मोटापा न बढ़ जाए।
0: ये एक मिथ है, आप एक्सरसाइज कीजिए और एन्जॉय कीजिए थोड़ा बहुत देसी घी।
1: जी और
0: हाँ
1: तेल में, सरसों तेल या रिफाइंड?
0: तिल का, रिफाइंड तो बिल्कुल नहीं, तिल का तेल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, गाय का देसी घी, चारों किचन में रखिए, मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं कभी कोई कभी कोई।
1: जी तो ये पोषण के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी भी मिल गई है, और बच्चों को अलाउ हो गया है कि ठीक है महीने में एक बार जंक फूड भी खा लेंगे। तो आज के कार्यक्रम में हमने बच्चों का स्वास्थ्य, पोषण और आयुर्वेद, इस विषय में डॉक्टर
0: रीना
1: रीना अरोरा से बातचीत की। इन्होंने हर सवाल का जवाब आपको दिया, हमने आपसे आज बहुत कुछ जाना। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको भी पसंद आया होगा, डॉक्टर साहब आपको भी पसंद आया
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: होगा। अगर आप कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर से संबंधित कोई भी फीडबैक देना चाहें तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा मेल एड्रेस है health@delhi.gmail.com। आज के लिए बस इतना ही, अब कार्यक्रम को समाप्त करने की अपनी रेडियो दोस्त काजल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली

नमस्कार, 4 बज चुके हैं। पेश हैं इस घंटे के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। विधानसभा की 3 सीटों पर 30 जुलाई को संपन्न हुए उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। दिल्ली की एक अदालत ने आज महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बरी किया। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5 लाख से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत 3रे स्थान पर। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ आज बातचीत होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। पूरा देश सावन महीने के पहले सोमवार पर शिव भक्ति से सराबोर है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण सहित 39 पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी गई। और मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, जी हाँ, आप सुन रहे हैं 102.6 आकाशवाणी रेनबो। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे शालिनी, लेकर आ गई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम अल्फा जैन। और अल्फा जैन में खास सोमवार के दिन हम बात करते हैं युवाओं की। जी हाँ, आज के दिन होता है यूथ स्पीक्स और आप युवाओं में से मिलता है किसी खास को मौका यहाँ रेनबो के स्टूडियो में आने का और आपसे जुड़े मुद्दे उठाने का। जी हाँ, और आज ये मौका मिला है विक्रांत शर्मा को। विक्रांत लाइफ साइंस में ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आज उन्हें मौका मिला है यहाँ पर आने का। तो अगले कुछ समय विक्रांत रहेंगे आपके साथ इस गाने के बाद और करेंगे आपसे जुड़े एक खास मुद्दे पर बातचीत। आपको बताएंगे कुछ ऐसे ट्रिक्स जो उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान सीखे हैं, जाने हैं, और अपनी रिसर्च के दौरान उस जो भी उन्होंने आउटकम निकाला है, कंक्लूजन निकाला है, उसको आपके साथ साझा करेंगे।

नमस्कार, मैं हूं विक्रांत शर्मा और आप सुन रहे हैं यूथ स्पीक एंड अल्फा जैन आकाशवाणी FM रेनबो पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो सबका फेवरेट है या हो सकता है। दोस्तों, आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक ऐसी चीज है जो हमको बिना किसी दवाई के सुकून देती है, हमको समझती है और हमको उन पलों में वापस ले जाती है जहां से हम वापस नहीं आना चाहते। तो अगर आज आपका ब्रेन टू मैनी टैब ओपन मोड में चल रहा है तो एक लंबी सांस लेकर रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि अगले कुछ मिनट किसी बोरिंग लेक्चर के नहीं, सिर्फ आपके हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूजिक थेरेपी के बारे में कि म्यूजिक को एंटरटेनमेंट के सोर्स के अलावा थेरेप्यूटिक वे में किस तरह से यूज किया जा सकता है, स्पेशली युवाओं के लिए, क्योंकि हम युवाओं की लाइफ हमारे इमोशंस की तरह काफ़ी फास्ट चेंज होती है। हम सुबह हमारी सिचुएशन कुछ और होती है और शाम को इस सिचुएशन कुछ और, इसी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमारे इमोशंस भी चेंज होते रहते हैं। और तो चलिए आपको सुनवाते हैं एक खूबसूरत सा गीत।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

वेलकम दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि ये म्यूजिक थेरेपी होता क्या है, क्या केवल म्यूजिक को सुनना ही म्यूजिक थेरेपी है? तो मैं आपको बता दूं, केवल म्यूजिक को सुनना ही म्यूजिक थेरेपी नहीं है। यह एक पर्टिकुलर साइंटिफिक मेथडोलॉजी है जिसको क्लिनिकल साइकोलॉजी में साउंड थेरेपी बोलते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो म्यूजिक को थेरेप्यूटिक वे में किस तरह से यूज किया जाए ताकि उसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट हमें को देखने के लिए मिले, उसको म्यूजिक थेरेपी बोलते हैं। जो लोग इस थेरेपी को देना जानते हैं, मतलब इस फील्ड में मास्टर्स होते हैं या म्यूजिक की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, क्योंकि इसमें केवल म्यूजिक को सुनना ही नहीं बल्कि क्रिएट करना, इम्प्रूव करना, और जो लोग इस चीज़ को जानते हैं कि किस टाइप की कंडीशन के लिए किस तरह का म्यूजिक इफेक्टिवली वर्क करता है, उनको हम म्यूजिक थेरेपिस्ट बोलते हैं। और हम इस टॉपिक पर बात अपनी जारी रखेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: आई एम श्योर दोस्तों कि आपको ये गाना सुनकर रिफ्रेशिंग फील हुआ होगा। तो वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। अभी हमने जाना कि म्यूजिक थेरेपी के बारे में। अगर हम म्यूजिक थेरेपी की हिस्ट्री को जानने की कोशिश करें तो म्यूजिक थेरेपी की फॉर्मली शुरुआत 1945 में यूनाइटेड स्टेट के वॉर डिपार्टमेंट से हुई थी। मतलब जो लोग बैटल फील्ड पर जाकर लड़ते थे, इंजर्ड होकर वापस आते थे, उन लोगों की मानसिक स्थिति में सुधार के लिए पहली बार म्यूजिक थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। तब से लेकर अब तक 70 से 80 सालों में इस फील्ड पर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है। ये फील्ड काफ़ी ग्रो कर चुका है और काफ़ी एक्सपर्ट आपको इस फील्ड में देखने के लिए मिल सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कि म्यूजिक थेरेपी किस तरह के लोगों में पर इफेक्टिवली वर्क करता है, छोटे से ब्रेक के बाद।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1-2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले बताया था, म्यूजिक थेरेपी की शुरुआत मिलिट्री से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसा देखा गया कि हर उम्र के लोगों में, दोनों जेंडरों में थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस काफ़ी हैं इस थेरेपी की। जो लोग किसी तरह के ट्रॉमा से सफर कर रहे होते हैं या किसी भी तरह के जनरल इंसिडेंट के ट्रॉमेटिक इफेक्ट उनके ब्रेन में होते हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाते हैं, उनको कम करने में या उनको हैंडल करने में म्यूजिक थेरेपी काफ़ी इफेक्टिव होती है, क्योंकि उनके जो इमोशनल या किसी भी तरह के साइकोलॉजिकल पेन होते हैं उनको इस थेरेपी की मदद से दूर किया जा सकता है। इसके अलावा जो लोग ऑटिज्म से सफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि उनमें दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करने में या जो भी इमोशनल या सोशल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, उनमें म्यूज़िक थेरेपी को रिकमेंड किया जाता है। हमारी बातों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से म्यूज़िकल ब्रेक के बाद।

0: देखना 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूथ स्पीक और मैं हूं विक्रांत। दोस्तों, म्यूजिक थेरेपी बेसिकली हमको इमोशनली ही हील नहीं करता बल्कि हमारे डे टू डे फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। जैसा मैंने अल्जाइमर के पेशेंट में देखा था अपनी रिपोर्ट में कि उनकी मेमोरी को इम्प्रूव करने में और उनके ब्रेन फंक्शन को डेवलप करने में, खासकर उन लोगों को सिक्योरिटी देने में कि जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं उसके साथ कम्फर्टेबल हों, म्यूजिक का काफ़ी इफेक्टिव रोल है। और दोस्तों, जब हम बात म्यूजिक की करें तो एक चीज़ उसमें उधर देखी जाती है कि म्यूज़िक में जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल इफेक्ट की हम बात करेंगे एक छोटे से म्यूज़िकल ब्रेक के बाद।

वेलकम बैक दोस्तों। तो जैसे मैंने बोला था कि हम बात करेंगे इस थेरेपी के एनवायरमेंटल इफेक्ट के बारे में, तो लोग जिन लोगों को ट्रॉमा के अलावा किसी क्रिमिनल एक्टिविटी या मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से करेक्शन सेटिंग में रखा जाता है ताकि उनकी मानसिक स्थिति में सुधार हो सके, वहाँ पर म्यूजिक थेरेपी को रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक एक्टिविटी होती है जिस वजह से म्यूजिक थेरेपी अच्छे से इम्प्लीमेंट होती है और इसके इफेक्ट काफ़ी फास्ट विजिबल होते हैं। तो ऐसे लोग जिस तरह के माहौल में और जिस जगह रह रहे हैं उसके साथ कंफर्टेबल हो जाएं, उनमें म्यूजिक एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। मैंने अपनी रिसर्च के दौरान एक चीज़ नोटिस की थी कि जो लोग इस रिहैबिलिटेशन सेंटर या प्रिजन में रह रहे हैं उनमें हेट रेट, उनके एंगर इश्यूज काफ़ी बढ़ जाते हैं। और एक कहावत है कि गुस्सा और आग नहीं जानते वो किसको जला रहे हैं, तो उनके एंगर इश्यूज को कम करने के लिए भी म्यूजिक थेरेपी काफ़ी हेल्पफुल रोल प्ले करती है।

0: दोस्तों समय हो गया है 4:55 और आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे थे प्रोग्राम यूथ स्पीक्स विक्रांत के साथ। विक्रांत ने बात की म्यूजिक थेरेपी की और इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आपके साथ साझा की। तो दोस्तों विक्रांत को अब हम कहेंगे धन्यवाद क्योंकि हो गया है समय यहाँ से विदा लेने का। विक्रांत जाते जाते आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहोगे?
1: मैम मैं जाते जाते अपनी लिखी हुई कुछ लाइन बोलना चाहूंगा
0: जी
1: कि तुम चुप हुए तो क्या हुआ, तुम चुप हो तो क्या हुआ, तुम्हारे दिल की आवाज को सुनता संगीत है और कठिन हालातों में भी मुस्कुराते रहिए और जब मन करे गाते रहिए। हैव अ नाइस इवनिंग दोस्तों।
0: बहुत बढ़िया विक्रांत। तो दोस्तों इसी नोट पर हम आपको कहेंगे बाय, लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, आपको जुड़े रहना है आकाशवाणी रेनबो के साथ, सुनते रहना है आकाशवाणी रेनबो का संगीत क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए चुन चुन के बहुत सारे खूबसूरत गीत जिससे कि आप जुड़े रहें, तनाव मुक्त रहें, क्योंकि म्यूजिक थेरेपी एक ये भी है कि आप हमेशा हरदम सुनते रहें आकाशवाणी रेनबो और जुड़े रहें हमारे साथ। आगे आप सुनेंगे प्रोग्राम सिटी लाइट्स, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ।

एफएम रेनबो पर अब वक्त है मुख्य समाचारों का। लोकसभा ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी। भारतीय रेलवे ने जुलाई 2026 में माल ढुलाई में 9% की वृद्धि दर्ज की। इस दौरान 14,13,00,000 टन माल ढुलाई हुई। भारत ने आधार कार्ड से सत्यापित 5,00,000 से अधिक अंगदान प्रतिज्ञाएं पूरी की। अंग प्रत्यारोपण में वैश्विक स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह और तत्कालीन सचिव विनोद तोमर को यौन उत्पीड़न मामले में बरी किया। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ आज बातचीत संभव, यह बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। पूरा देश सावन माह के पहले सोमवार पर शिव भक्ति से सराबोर है। और खेलों में, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण सहित 39 पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी गई। और अंत में मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। तो ये थे अब तक के एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार।

लव मी लव मी लव मी एंड आई लव माई सिटी। मेरे दिल में बसी है दिल्ली। और देखा जाए तो हम सभी अपने अपने शहरों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और हमारा दिल यही कहता है, हमारे दिल से हर वक्त यही आवाज़ आती है कि एक मैं हूँ और एक मेरा शहर है। जैसा भी है मेरा है, मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, मेरा ज़िंदा होने का एहसास है। जी हाँ जनाब, अब होंगी सिटी की बातें सिटी लाइट्स प्रोग्राम में, और साथ में मैं रहूँगी प्रियंका मामगियन। अब ज़रा वक्त पर नज़र डाल ली जाए तो वक्त हुआ है 5:07 और पूरे 26 सेकंड, और वो सूरज जो सुबह उगा था अब ढलते ढलते पहुंच चुका है शाम की ओर, और सूर्यास्त अब होगा 7:10 पर लगभग उस वक्त हो जाएगा। टेम्परेचर की बात भी अब कर ही ली जाए शुरुआत में ही, तो टेम्परेचर रहेगा और है अभी 33 डिग्री सेल्सियस, और रात को 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान के रहने का अनुमान है। और साथ ही अनुमान ये भी है कि बारिश की संभावनाएँ भी नज़र आ रही हैं। तो जनाब हम तो यही चाहेंगे कि ये संभावनाएँ हकीकत में बदल जाए, वो मेघ जो आसमान पर छाए वो बस आकर बरस भी जाए, बारिश अपने साथ लेकर आए। इसमें हमारा ही फायदा है। जी हाँ जनाब, हमको भी मौका मिलेगा कि हम भी बारिश के गानों को आप तक प्रोग्राम का हिस्सा बनाकर पहुंचाएं आप तक, और आप भी उन गानों को एंजॉय करें मौसम के साथ। फिलहाल बादल क्या कह रहे हैं ये तो कुछ टाइम बाद सबको पता ही चल जाएगा, कब बरसेंगे ये हम बादलों पर ही छोड़ देते हैं, लेकिन क्यों ना हम गाना एंजॉय करें बारिश वाला, क्या पता इस गाने को सुनकर ही बादलों का मूड बन जाए और झमाझम बारिश हो जाए।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य
2: घर। नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
4: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैं प्रियंका मामगेन और हमारे साथ प्रोग्राम सिटी लाइट्स। और अगर महीने की बात की जाए, दिन की बात की जाए, तो आज है 3 अगस्त और अगस्त के महीने का इंतज़ार हम सभी भारतीयों को बेसब्री से रहता है। पावन पवित्र राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत माह अगस्त का और ख़ासकर 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस, जी हाँ, जिसका हम हर साल इंतज़ार करते हैं, जिसे हम बहुत ही खूबसूरती के साथ सेलिब्रेट करते हैं अपनी राष्ट्र को समर्पित भावनाओं के साथ। और अगर अब की बात की जाए, 3 अगस्त हो चुका है और जो 15 अगस्त की जो जितनी भी रौनक होती है ना, उससे बाज़ार बिल्कुल सजने लग गए हैं। बाज़ारों की रौनक कई गुना बढ़ चुकी है और इस रौनक के बीच में तिरंगे के रंगों ने माहौल को और भी ख़ास और ख़ूबसूरत बनाना शुरू कर दिया है। और तिरंगे के रंगों के साथ साथ, जी हाँ, पतंगे भी बाज़ार में बहुत ही तेज़ी से बिकना शुरू हो चुकी हैं और ख़ूबसूरती से आसमान को सजाने में इन खूबसूरत रंगों का, इन पतंगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। और हर एक इंसान चाहता है कि उसकी पतंग ऊंची से ऊंची उड़ान उड़े और उसकी भावनाओं को व्यक्त करते हुए आसमान को छुए। जी हाँ जनाब, पतंगों के साथ साथ जब हम मांझे की बात करते हैं तो पतंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है मांझा। और मांझा जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पतंग उड़ाते हुए जो हम मांझा इस्तेमाल करें वो

ती मांझे का इस्तेमाल करें। जी हाँ, कई बार देखा जाता है कि पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज मांझे का, सिंथेटिक मांझे का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आपको ये भी जानना होगा कि चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करना, सिंथेटिक मांझे का इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध है। जी हाँ, चाइनीज मांझे को बेचना, इस्तेमाल करना, स्टोर करना या उसका निर्माण करना, ये दंडनीय अपराध की कैटेगरी में आता है, श्रेणी में आता है। और इसीलिए हमारी दिल्ली पुलिस लगातार चाइनीज मांझे का इस्तेमाल ना करने की अपील कर रही है और साथ ही साथ चाइनीज मांझा ना यूज करने के अलर्ट्स भी जारी कर रही है। दिल्ली पुलिस जगह जगह दुकानों पर, गोदामों पर चेकिंग कर रही है। घर, मोहल्लों और सार्वजनिक जगहों पर पतंग उड़ा रहे लोगों के मांझे की जांच का काम भी कर रही है, जिससे कि कोई चाइनीज मांझा, सिंथेटिक मांझा इस्तेमाल ना करे, क्योंकि इससे बहुत नुकसान होते हैं। इंसानों के साथ साथ बेजुबान पक्षियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है और यही वजह है कि चाइनीज मांझे को बेचने, इस्तेमाल करने, स्टोर करने, निर्माण करने में पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है और ये एक दंडनीय अपराध की कैटेगरी में आता है। तो बिल्कुल भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपको कहीं सूचना मिलती है कि कहीं पर चाइनीज मांझे को बेचा जा रहा है, कहीं पर स्टोर करके रखा गया है या कहीं पर इस्तेमाल किया जा रहा है या कहीं पर उसका निर्माण कार्य चल रहा है, तो तुरंत दिल्ली पुलिस से संपर्क करके इसकी सूचना दिल्ली पुलिस को दे। और इसी के साथ हम भी चाहेंगे कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के साथ हम भी आपसे ये एक अपील करें कि आप चाइनीज मांझे का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपनी पतंग को सूती मांझे से ही उड़ाएंगे, उसे आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे।

शहर की चकाचौंध आपके साथ। जी हाँ जनाब, शाम हो चुकी है, होने वाली है और आपको मन कर रहा है, आपका मन कर रहा है कि कहीं घूम फिर के आएं। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो इस शाम का आप लुत्फ़ उठाइए, मज़ा उठाइए, कैश कर लीजिए इस वक्त को, क्योंकि ये वक्त जो है वो एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। अगर आप अपने शाम के टाइम को इंजॉय करना चाहते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ या फिर खुद अपने साथ ही इस वक्त को निभाना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, तो दिल्ली में कई सारे इवेंट्स में आप जा सकते हैं, उनको इंजॉय कर सकते हैं। त्रिवेणी कला संगम की बात की जाए तो आप यहाँ इंजॉय कर सकते हैं मशहूर पेंटर MF हुसैन साहब की पेंटिंग एग्जीबिशन। जी हाँ जनाब, MF हुसैन साहब ने कई सारे कॉन्सेप्ट्स पर कई सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, पेंटिंग्स की सीरीज़ बनाई हैं और यहाँ पर त्रिवेणी कला संगम में इन्हीं पेंटिंग की सीरीज़ को प्रदर्शित किया गया है। इस सीरीज़ में जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा त्रिवेणी कला संगम में, उसमें अष्टविनायक सीरीज़, कृष्ण लीला, महाभारत, गजगामिनी और राजस्थान सीरीज़ की पेंटिंग्स डिस्प्ले की गई हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, उनके रंगों को पहचान सकते हैं और महसूस कर सकते हैं उन पेंटिंग्स को। MF हुसैन साहब की जो पेंटिंग एग्जीबिशन है उसको नाम दिया गया है प्लूरल इम्प्रेशंस और ये हो रही है त्रिवेणी कला संगम में। कहां पर है त्रिवेणी कला संगम? तानसेन मार्ग, मंडी हाउस, न्यू दिल्ली में। और कैसे पहुंचेंगे? तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है मंडी हाउस। इसी के साथ साथ जब आप त्रिवेणी कला संगम पहुंच ही गए हैं तो ये एग्जीबिशन तो आप जरूर इंजॉय करेंगे, साथ ही साथ एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगी, क्योंकि एक पंथ दो काज, यानी एक जगह जाकर दो चीज़ें हो जाएं तो मन करता है, ये तो भाई लॉटरी लग चुकी है। तो एक और लॉटरी आप अपने नाम कर सकते हैं त्रिवेणी कला संगम जाकर। जी हाँ जनाब, त्रिवेणी कला संगम में त्रिवेणी कला क्लासेस ऑर्गेनाइज की जा रही हैं जो बच्चों के लिए रहेंगी और एडल्ट्स के लिए रहेंगी, और इसमें कथक डांस की क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। जो एज ग्रुप रहेगा चिल्ड्रन का, बच्चों का, वो रहेगा 7 से 14 साल के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। फीस की बात की जाए तो इसके लिए फीस भी रखी गई है और साथ ही टाइमिंग्स अलग अलग हैं। आप वहाँ जाकर टाइम्स के बारे में जो आपको सूट करता है उसके बारे में क्वेरी कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी की तरह एडल्ट्स के लिए भी त्रिवेणी कथक क्लासेस ऑर्गेनाइज की गई हैं और इसमें जो एज रखी गई है वो है 18 साल, और 18 साल से ऊपर के जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है, लोग हैं जो कथक को सीखना चाहते हैं, इस कला को, डांस की इस फॉर्म को सीखना चाहते हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसमें भी कई सारी कैटेगरीज हैं टाइम की, जो टाइम आपको सुटेबल लगता है आप उस टाइम में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब आप कहेंगे

अगर कोई घर बैठे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहे तो आप त्रिवेणी कला संगम .org/classes करके इसको वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ आप त्रिवेणी कला संगम .org पर जाकर भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, एकदम से व्हाट्सएप किया और तुरंत आंसर आ जाए तो क्या कहने। तो जनाब व्हाट्सएप नंबर भी है जिस पर आप व्हाट्सएप क्वेरी कर सकते हैं, 9958831338। ये त्रिवेणी कला संगम का व्हाट्सएप नंबर है। मैं एक बार फिर दोबारा रिपीट करती हूँ, अगर आप कथक क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, त्रिवेणी कथक क्लासेस, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। नंबर है 9858831338।

0: एक तो पार्टी शुरू हो रही है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
6: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
5: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
6: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
7: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

सिटी लाइट्स प्रोग्राम आपके साथ मैं प्रियंका मामगेन और बात हो रही है उन सभी इवेंट्स की जो हमारे शहर में हो रहे हैं या फिर होने वाले हैं। जी हाँ जनाब, अगर हम नाट्य विधा की बात की जाए, थिएटर की बात करें, थिएटर आर्ट की बात करें, नाट्य कला की बात करें, तो एक ऐसी कला है जो कभी भी आउटडेटेड नहीं हो सकती है। हजारों साल से नाट्य कला अलग अलग रूपों में हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रही है और नाटकों को देखना, थिएटर को देखना, लाइव देखना, उनके मंचन को

देखना अपने आप में एक अलग सा रोमांच लिए होता है, जिसका अनुभव करना अपने आप में ही अद्वितीय होता है। जी हाँ जनाब, अगर आप कला प्रेमी हैं, कला से प्यार करते हैं, थिएटर से प्यार करते हैं, नाटकों से प्यार करते हैं, उन्हें देखना आप पसंद करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिल्कुल आपके हाथ के पास पहुँच चुकी है। सिर्फ करना क्या है, एक क्लिक करना है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रीय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के भारत रंग महोत्सव की। 26वां भारत रंग महोत्सव 2027 को आयोजित किया जाएगा। ये इंटरनेशनल थिएटर फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है और दुनिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल इसे कहा जाता है, नाट्य उत्सव है ये। और हम सभी जानते हैं कि हर साल NSD इस नाट्य महोत्सव का आयोजन करती है, तो जो 26 ये जो 27 अभी 2026 चल रहा है, तो जनवरी 2027 को 26वें भारत रंग महोत्सव इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया जाएगा NSD की तरफ से, और इसके तहत एंट्रीज मांगी गई हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप थिएटर ग्रुप चलाते हैं, ड्रामा इंस्टीट्यूट है, थिएटर कंपनीज हैं, थिएटर डायरेक्टर हैं, आप इंडिया में हैं या फिर अब्रॉड हैं, आप किसी भी कंट्री में हैं, तो आप अपनी एंट्रीज, अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं NSD की वेबसाइट पर। और ये जो थिएटर फिल्म फेस्टिवल होगा जनवरी 2027 के समय पर मंथ में, वो दिल्ली के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों में होगा और साथ ही साथ विदेशों में भी इस थिएटर फेस्टिवल को आयोजित किया जाएगा NSD की तरफ से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, थिएटर डायरेक्टर हैं, आपका ग्रुप है, इंस्टीट्यूट है, थिएटर ड्रामा इंस्टीट्यूट है या थिएटर कंपनी, और आप चाहते हैं कि आप के अंदर जो कला है, आपके ग्रुप के अंदर जो कला है, वो इतने बड़े स्तर पर आकर सभी लोगों तक पहुंचे, तो ये एक बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है। आपको 27 अगस्त से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। इसी के साथ साथ आप ज़्यादा जानकारी के लिए, इस इवेंट की ज़्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, www.nsd.gov.in। साथ ही इंक्वायरी करनी है आपको, तो आप दो फोन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। दिल्ली के लैंडलाइन नंबर्स हैं 011, दिल्ली का कोड है, उसके बाद फोन नंबर्स हैं 2307-3647 और दूसरा नंबर है 011-2303-1116। NSD की वेबसाइट पर जाइए, क्लिक कीजिए वेबसाइट में उस ऑप्शन को जहां पर आपको 26वें भारत रंग महोत्सव 2027 इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल ऑफ इंडिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो बस क्या करना है, एक छोटा सा क्लिक करना है और अपॉर्चुनिटी, उफ, इतनी बड़ी।

0: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: आकाशवाणी रेनबो की मैजिकल फ्रीक्वेंसी से।

लाइट्स प्रोग्राम बिल्कुल उरूज पर पहुंच चुका है। अगला प्रोग्राम नीरजा लेकर आएंगी आपके साथ। मैसेज मसाला मिक्स प्रोग्राम होगा। वैसे कुछ भी काम करो तो जो प्लानिंग रहती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है। और हम अपनी बात करें तो हमने तो कल संडे का फुल इस्तेमाल करते हुए पूरी प्लानिंग कर ली है। जी हाँ, हमारी RWA ने पूरी प्लानिंग कर ली है कल संडे को मीटिंग करके कि हम राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को किस तरीके से मनाएंगे और हर घर तिरंगा अभियान में किस तरीके से हम सभी शामिल होकर तिरंगे को फहराएंगे और सेल्फी भी लेंगे। जी हाँ, राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त और 15 अगस्त के अवसर पर अगस्त के महीने में हम सभी सेलिब्रेट करते हैं हर घर तिरंगा अभियान। और इस साल 9 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक हम हर घर तिरंगा अभियान सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम अपने देश के तिरंगे की, हमारे तिरंगे की, हमारे ध्वज की बात करें तो राष्ट्रीय एकता, अखंडता, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र गौरव की भावना का प्रतीक है हमारा तिरंगा। हमारी आन बान शान, हमारी एकता का प्रतीक, अखंडता का प्रतीक, राष्ट्र गौरव का प्रतीक हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा। तिरंगे की बात हो तो तिरंगा महज एक ध्वज नहीं है बल्कि ये भारत की एकता, विविधता और दृढ़ता का जीवंत प्रतीक है। हमारे देश भारत का वो ध्वज, वो चिन्ह जो हमें विश्व में पहचान दिलाता है। और हर साल की तरह इस साल भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अगस्त के महीने में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तिरंगा लोक उत्सव। हर घर तिरंगा जिंदगी का हिस्सा है, धड़कन है, जान है, आन बान और शान है हमारा तिरंगा। तो आप भी प्लानिंग कीजिए किस तरीके से आप हर घर तिरंगा उत्सव में पार्टिसिपेट करेंगे, किस तरीके से सेल्फीज लेंगे और फिर उसे अपलोड करेंगे। जी हाँ, MyGov की अधिसूचित आधिकारित वेबसाइट harghartiranga.com पे। तो जल्दी से प्लानिंग कीजिए और हर घर तिरंगा अभियान में जुड़ जाइए। और हाँ, बिल्कुल सेल्फी लेना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। harghartiranga.com में उस सेल्फी को अपलोड भी करना है आपने। हर घर तिरंगा फहराइए। जय हिंद।

सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। लोकसभा के सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट और मध्य प्रदेश के दतिया में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। बिहार के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में मतगणना जारी है। भारतीय रेलवे ने जुलाई 2026 में माल ढुलाई में 9% की वृद्धि दर्ज की। इस दौरान 14 करोड़ 13 लाख टन माल ढुलाई हुई। दिल्ली के राउज एवेन्यू अदालत ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह और तत्कालीन सचिव विनोद तोमर को यौन उत्पीड़न मामले में सबूतों के अभाव में बरी किया। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में सुरक्षा बलों के कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ आज बातचीत संभव, यह बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। पूरा देश सावन माह के पहले सोमवार पर शिव भक्ति से सराबोर है। और खेलों में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण सहित 39 पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी गई। और मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। बने रहिए FM रेनबो पर। यूं ही

0: आकाशवाणी रेनबो पर आरजे नीजा है आपके साथ लेकर प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। ये वो खास कार्यक्रम है जिसे हमारे श्रोता ही बहुत खास बना देते हैं, और आप जो हमसे अभी जुड़े हैं बस दोस्त यही कहना चाहेंगे कि जुड़े रहना और अपने दिल के जो एहसास हैं जिस विषय से हम आपसे रूबरू होंगे उनको हमें ज़रूर व्हाट्सएप करके भेजिएगा। हमारा नंबर है 9868107070, यही वो नंबर है। और आज बात मैं करना चाहती हूँ पूरे देश के माहौल को देखकर कि आइए ना, देश के लिए हमारी ओर से कैसी रहेगी एक पहल। यानी आज जो विषय है वो है देश के लिए मेरी पहल। कहना ये चाह रही हूँ कि देश बदलने के लिए हमेशा बड़े पद की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी एक अच्छा नागरिक होना भी सबसे बड़ी देशभक्ति होती है। हम अपने अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, ये मुझे और आपको सोचना है। हर बार हम देखते हैं कि हमारे फौजी भाई, हमारी पुलिस, हमारे इतने सारे जो साथी हैं, हमारे शिक्षकगण जगह जगह हमें सहयोग देते रहते हैं और मार्गदर्शन करते रहते हैं। उनके प्रति हमारे मन में सम्मान है, प्यार है, अपनापन है, लेकिन अब एक्शन की ज़रूरत है दोस्त। तो मैं और आप किस तरह से मदद कर सकते हैं? क्या हम पौधा लगा सकते हैं? क्या पानी का सही इस्तेमाल कर सकते हैं? या हम स्वच्छता को अपना सकते हैं? या हम अपने काम ईमानदारी से कर सकते हैं? ऐसा जो भी जज्बा आपके अंदर आता है और आप करते रहते हैं उसे ही साझा करना है दोस्त। एक शब्द में या एक लाइन में अपनी पहल देश के लिए बताइए ना। अपना नाम और अपने शहर का नाम दोस्त बिल्कुल नहीं भूलना, और जोश और जज्बा बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए जैसा इस गीत में है।
1: एक चिंगारी सिद्ध से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा।
0: और हम सलाम कर रहे हैं हर उस सैनिक को जो जगह जगह पर देश के अंदर और देश के बाहर हर जगह हमें सुरक्षित होने का एहसास दिलाता है।

आकाशवाणी रेनबो पर आप जुड़ गए हैं नीरजा के साथ। प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स और मैं बात कर रही थी कि देश के लिए अपना पहला योगदान क्या हो सकता है। ईमानदारी से अपना काम करना हो सकता है या कोई ऐसी बात यानी जो हमें जिम्मेदार व्यक्ति या कुछ ऐसा करने को कह देती है और जुनून जगा देती है जिससे हमें लगता है कि भारत की मजबूत नींव में हम भी एक छोटी सी ईंट तो है ही। चलिए, सूर्यकांत वैशाली गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, मैसेजेस बहुत आ रहे हैं लेकिन विषय से जुड़े हुए मैसेजेस ही शामिल कर पाऊंगी। आप सभी समझते हैं ये आपका चैनल है, आप ही के हिसाब से चलता है, तो विषय से जुड़ा ही संदेश भेजना दोस्तों। और देश के लिए आपकी पहली पहल क्या होगी इस पर बात कर रहे हैं। तो सूर्यकांत जी ने लिखा है कि देश की सेवा केवल सीमा पर खड़े सैनिक ही नहीं करते बल्कि हम नागरिक अपने छोटे छोटे कार्यों से भी राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते हैं। मेरी पहल है कि मैं अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखूं, पेड़ लगाऊं, पानी और बिजली की बचत करूं, कानूनों का पालन करूं और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूं। आइए हम सभी ये संकल्प लें कि देश को स्वच्छ, सुरक्षित, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देंगे, क्योंकि जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तभी भारत और अधिक सशक्त, समृद्ध और विकसित बनेगा। देश के लिए मेरी पहल भारत के उज्जवल भविष्य की नींव है। सूर्यकांत जी, सच कह रही हूँ कि सब आपके संदेश को देख करना बहुत खुश हो रहे होंगे और ऐसा आपने जज्बा जगा दिया कि हमें भी बहुत कुछ करने के लिए आपने प्रेरित कर दिया है। नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से हमारे साथ जुड़े हैं और शुभ संध्या कह रहे हैं। जी, आप आ गए, बस संध्या शुभ हो ही गई ही है। और कहते हैं, हम किसान हैं, हम देश की उन्नति के लिए अनाज पैदा करते हैं और यही सहयोग करते हैं। जी, ये बहुत बड़ा सहयोग है आपका। आप जानते हैं कि हमारी ये जो शरीर रूपी गाड़ी है ना, ये आप ही के माध्यम से चलती है, नहीं तो हम एक पल कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और सच में हमें बहुत अच्छे से शिक्षित किया गया है, हम सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं जानते और शिक्षित भी हो गए हैं, तो हमें ये साबित करना है ना। और अगला मैसेज पे चलती हूँ। किशन वंजानी, नीलम स्वाति और केशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से आनंद हमें दे रहे हैं और कहते हैं कि शो हमें अपने देश के लिए सभी कहते हैं हमें अपने देश के लिए सभी नागरिकों को स्वच्छता अभियान स्वच्छता अपनाना चाहिए और सभी को हर दिन एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए और पानी को स्वच्छ समझकर ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जल है तो कल है। थैंक यू सो मच आपका कि आप इस बात को समझ रहे हैं। जब हम समझेंगे और सच में इसे बिल्कुल युद्ध स्तर पर हम शुरू हो जाएंगे इस बात को पूरी करने में, तो ज़िंदगी सच में बदल जाएगी। अनिल शर्मा जी का सरिता विहार से आया है मैसेज, कहते हैं, नीरजा बेटी शुभ संध्या। सच में जब आप अंकल ऐसा लिखते है ना, ऐसा लगता है बिल्कुल मैं

अभिलाषाएं दिन भर रखना, बढ़ा चढ़ा के ताड़ ना कर, मंद मंद बहने दे नदिया राह में इसकी आड़ न कर, प्रकृति को मित्र बना ले इसमें जीवन छुपा हुआ, स्वार्थ में डूबे डूबे ए मानव इससे तू खिलवाड़ न कर, इससे तू खिलवाड़ न कर। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां आपने लिख दी हैं। और ये जो आप कोई फ़ोटो भेज रहे हैं ना विजेंद्र जी, ये फ़ोटो नहीं मैं देख पाऊंगी, आप अगर संदेश भेजेंगे तो मैं ज़रूर कुछ कर पाऊंगी। पंकज अमरावती से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं कि सावन सोमवार की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, आज तो दिल ही अलग खुशी से झूम रहा है सुबह से, बहुत बहुत धन्यवाद। और लिखा है कि मैं तो एक किसान हूँ। अच्छा पंकज जी, और खेती किसान करके देश के लिए अन्न धान्य के लिए फसल उगाता हूँ, और देश अपनी तरफ से एक छोटी सी मदद करता हूँ, देश के लोगों को अन्न की पूर्ति होती रहे यही कामना करता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है आपके इस अच्छे से काम के लिए। तो मैं तो कहूँगी जब आपका आदर होगा, जब टीचर्स का आदर होगा, जब हमारी सेना का आदर होगा, तो सच में और होते रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन हमें और अपना प्यार और अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए। और कायदे से जीना कोई बुरी बात नहीं है, है ना। अरिजीत सिंह की आवाज में ये ट्रैक आपके लिए।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
6: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
7: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
8: आज की रात मजा,
7: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
6: म्यूजिक मस्ती।
9: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
10: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
6: म्यूजिक मस्ती।
11: आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैसेज मसाला मिक्स, और साथ हूं मैं आपके नीरजा चतुर्वेदी। और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आज की देश के लिए हमारी ओर से पहल क्या होगी। भाई, सड़कों पर कूड़ा ना फेंकना, पानी बचाना, बिजली का सही तरह से इस्तेमाल करना छोटे कदम हैं लेकिन बड़ा असर छोड़ते हैं। इसी विषय से हम जुड़े हैं और सरफराज आलम जी ने तो बड़ी प्यारी सी एक रचना ही लिखकर भेज दी है। कहते हैं आइए देश के लिए पहल करें, आइए देश के लिए एक पहल करें, एक एक पौधा धरती माँ के आंचल में धरें, हरियाली से महके अपना हिंदुस्तान, यही है प्रकृति के प्रति सच्चा सम्मान। सीमा पर सैनिक जगाते हैं रात दिन, तभी सुरक्षित रहता है अपना वतन। हम भी उनका थोड़ा सा मान बढ़ाएं, हर वर्ष एक पौधा अवश्य लगाएं। क्या बात है, स्वच्छ हवा निर्मल जल का दीप जलाएं, हर आंगन में जीवन की हरियाली लाएं। देश की सेवा केवल शस्त्र उठाना नहीं, एक पेड़ लगाना भी देशभक्ति से कम नहीं। बात सच कह रहे हैं आप, बिल्कुल खरी खरी आपने बात कही है। लेकिन ये भी बात है कि अगर ऐसा है तो हम ग्लोबल वार्मिंग के इतने कड़े दौर पर क्यों चल रहे हैं और हमने पहले ऐसा नहीं किया है, और अब तो एक्शन लेने का समय आ गया। दोस्त, बातों का तो समय चला गया है, इसलिए हम सब जो जो बांट रहे हैं, लिख रहे हैं, अब की बार हमें करके दिखाना है। रजनी शर्मा बागपत से हमारे साथ हैं और लिखा है, सलाम है उन सोल्जर्स को जो हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। बिल्कुल, और ये जज्बा बहुत आसान नहीं है, और पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं तब जाके कुछ कर पाते हैं, और अब ये हमारी ओर से जिम्मेदारी है कि हम उन्हें कितना अपनापन दे पाते हैं। गुड इवनिंग मैम जी, अच्छा काम करने का कोई वक्त नहीं होता। अरे वाह, शम्सुल कमर राही जी कितनी प्यारी बात कही है, हम जब चाहें कोई अच्छा काम कर सकते हैं, बस दिल में जज्बा होना चाहिए। बिल्कुल यही बात मैं कह रही हूँ, जैसे किसी राह चलते बुजुर्ग को रोड पार करा देना, किसी खाली जगह पर पेड़ लगा देना और आसपास साफ सफाई का ध्यान करना, और हाँ, सैनिकों का सम्मान करना। बिल्कुल यही कह रही हूँ कि अब ये सब हमें करके दिखाना होगा, क्योंकि कहते हैं ना, एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स, तो अब समय आ गया है एक्शन लेने का। सत श्री अकाल नीरजा जी, तुसी केवे हो जी? जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे साथ हैं और कहते हैं हम सब मिलकर ये सब कर सकते हैं, हम कुछ भी करके इन बातों का ध्यान सकते हैं। यूं ही रोड पर, मेट्रो में कुछ भी कूड़ा फेंक दिया करते हैं, मेरे देश का नाम खराब होता है, इसलिए हम सबको चाहिए कि हम जो भी खाएं पिएं उस डस्टबिन में डालें। बिल्कुल प्रदीप सलूजा जी, मैं यही कह रही थी कि बहुत

0: सारे काम नहीं, एक ही उठा लीजिए, सब अपनी तरफ से एक एक बीड़ा उठा लीजिए और करके दिखाइए ना, और आसपास वालों को भी इतने प्यार से, इतने अपनेपन से वो जज्बा जगा दीजिए कि वो करना ना चाहें बस उनसे हो जाए। मोनीश हमारे साथ उत्तर प्रदेश बिलासपुर से जुड़े हैं और कहते हैं कि मोनीश इद्रिसी, ओके हम, हाँ तो यही हम तो यही कर सकते हैं कि साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं और कहीं भी कूड़ा नहीं फेंकते हैं, और जहाँ डालना है कूड़ा वहीं फेंकते हैं। बिल्कुल अगर ये बात है हमारी तो हम सब अपने आसपास देखें और देखें ना कितनी सफाई है और कितनी स्वच्छता है। अगर है तो सच कह रही हूँ, बहुत बड़ा इनाम है आपके लिए, और अपने कंधों को किसी का इंतज़ार नहीं कीजिए, खुद ही थपथपा दीजिए, और अगर कुछ अच्छा ना लगे तो खुद ही साफ़ कर दीजिए। विशाल मल्होत्रा सिरसा हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं मुझे लगता है हमारे देश में योगदान की मदद होगी, हमारे देश में योगदान की, ओके जब आपका योगदान पूरा करने के लिए एक नागरिकता है, पूरा जुनून की ज़रूरत है, धैर्य के निर्णयों का पालन करने की ज़रूरत है, और सच में सैनिकों के लिए मैं अपनी तरफ से बिल्कुल सम्मान देने की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम भी वही बात कर रहे हैं। विष्णु प्रसाद दांगी ग्राम खजूरिया तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से कहते हैं देश की सेवा करने से तात्पर्य है कि हम स्वयं ही शिक्षा को महत्व दें। सच सच कहा आपने विष्णु जी, आजकल तो बच्चों की क्या बात करें, बड़े भी अध्यापक शिक्षक गण का सम्मान करना भूल जाते हैं, है ना, तो बच्चे कैसे करेंगे। तो इसलिए इस बात का बहुत ध्यान देना है, शिक्षा को महत्व देंगे तो शिक्षक को देंगे। लिखते हैं देश विकास के कार्यों में सहयोग करें, शिक्षा स्वास्थ्य पर्यावरण सुरक्षा संस्कृति की सुरक्षा आदि बातों पर विशेष बल दें, और हमारे परिवार में सभी शिक्षित रहें और सुधार के कार्य स्वयं अपने परिवार से शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं नीता अमरावती से हूँ और जुड़ी रहती हूँ एफएम रेनबो से, और टीवी कम देखती हूँ लेकिन रेडियो बचपन से सुनती हूँ। अरे दोस्त बिल्कुल हमारे जैसी हो आप, है ना। सभी को मेरी हाथ जोड़कर विनती है, ईमानदारी और अच्छे सोच से हम अपने घर से लेके गांव तक 15 अगस्त तक हर बार, मतलब हर रोज़ एक एक पेड़ ज़रूर लगाएँ। और मैंने 10 साल पहले मेरे घर के सामने लगाए पेड़, अभी बहुत बड़े हो गए हैं, वाकई में कितना अच्छा लगता होगा ना। बिल्कुल, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब मेरे साथ जुड़े हैं, तो बिल्कुल एक बहुत ही खूबसूरत से ट्रैक के साथ आपको जोड़ रही हूं।
1: दुनिया में दिखे मुझे सिर्फ तू,
0: तुम्हारे लिए ही है सांवरे, सुन लेना।
1: रहता यहां तू ही क्यों,
0: ड्राइव सेफली। हाँ, किचन में खाने की तैयारी हो रही है, थोड़ा सा प्यार भी डाल दीजिए ना मसालों के साथ।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आकाशवाणी रेनबो पर आप हैं नीरजा के साथ और प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, जहां बात हो रही है देश के लिए एक पहल मेरी और आपकी क्या रहेगी। जब हम नियमों का पालन करते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करते हैं, तब हम सिर्फ कानून नहीं देश का भी सम्मान कर रहे होते हैं। ऐसे ही विषय से मैं आज आपसे जुड़ गई हूँ और जानना चाह रही हूँ आपकी पहल क्या होगी अपने देश के लिए। और जो श्रोता हमारे साथ अभी जुड़े हैं, बिल्कुल जुड़े रहना, आप ही का कार्यक्रम है और हमें अपने एहसास जरूर भेजिएगा 9868107070 पर। प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं और कहते हैं, मेरी शॉपिंग करने के समय मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को खरीदने की पहली प्राथमिकता होती है। वाओ, वंडरफुल प्रवीण जी, मैं RRR फॉर्मूले को अपनाता हूँ, रिड्यूस रीयूज रीसाइकिल और हर बार वोट देता हूँ। कितनी अच्छी बात आपने कही है और सच में ये बात सुननी नहीं चाहिए, इस बात को तो बिल्कुल हम सबको मान लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी हमारे साथ जुड़े हैं शांति नगर सोनीपत से और बड़े ही प्यार से आदर से लिखते हैं और कहते हैं, आप जो भी काम करें ईमानदारी से करें, कितनी प्यारी बात है ना। पानी, बिजली, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के उपयोग सोच समझ कर करें, पेड़ लगाएं, साफ सफाई रखें और आपकी संध्या शुभ हो, जीवन बहुत शुभ और सुखद हो। बिल्कुल, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद कि आप इस तरह से इतने प्यार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे साथ जो भी हमारे साथ जुड़े, प्लीज़ इस विषय से ज़रूर जुड़िएगा, मैं तभी आपके मैसेजेस शामिल कर पाऊँगी। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, आपका प्यार हमें मिल रहा है, लेकिन जवाब भी ज़रूरी है और ये देश की बात है। दोस्त, मैं कोयम टूर से रुचिका हूँ और मैं हमारे देश की रक्षा करने वाले वीर जवानों को दिल से सलाम करना चाहती हूँ। इस देश की सेवा होने के नाते मुझे लगता है कि हम नए विचारों, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी के ज़रिए भारत को सही मायने में आत्मनिर्भर बना सकते हैं और अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं, सच में, और कर रहे हैं। और इनके अच्छे कामों को हमें नहीं भूलना चाहिए और भूले भी नहीं हैं। आपके बड़े सब आपको बहुत प्यार से एडमायर करते हैं और सच कहूँ तो बड़ा गर्व करते हैं कि

हमारे देश के बच्चे इतने प्यारे हैं। नीरजा जी प्लीज़ हमारा मैसेज भी पढ़ो ना। विजेंद्र जी अकोला महाराष्ट्र से कह रहे हैं, मैसेज तो ज़रूर पढ़ा जाएगा लेकिन प्लीज़ के साथ कैसे पढ़ पाऊँगी, है ना। ये आप ही का प्रोग्राम है, आप ही ने मैसेज भेजा है, क्रम से चल रही हूँ। दोस्त अभी आपका नंबर आया है, लिखा है, मैं दीदी पौधे भी लगाता हूँ और पानी भी बचाता हूँ। कितनी अच्छी बात है विजेंद्र जी, और ये बहुत बहुत बड़ा सम्मान है प्रकृति का। नीरजा जी शुभ संध्या, मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू। रवि जोशी जी मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं, पर्यावरण को साफ रखने के लिए अपने घर आंगन में पौधे लगाता रहता हूँ और आसपास के लोगों को भी प्रेरित करता रहता हूँ। सच में बहुत अच्छा करते हैं आप, लगाते होंगे तो भी लोगों को सीखने को मिलता होगा, जब किसी को थोड़ा सा जोश लगा देते होंगे तब भी अच्छा लगता होगा। बहुत सारे उत्सव आ रहे हैं, चलिए ना पेड़ देते हैं सबको, छोटा छोटा पौधा दीजिए और बताइए कि उसके गुण बताइए और एक दूसरे को ज़रूर बांटिए। हाय गुड इवनिंग डियर नीरजा मैम, कैसी हो आप। अंशी मैं बहुत खुश हूँ, पता है आपको, आपका मैसेज देखते ही ना अंशी पढ़ना ही नहीं पड़ता, समझ आ जाता है कि हस्तिनापुर से अंशी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं और कहती हैं कि टॉपिक पर तो मुझे यही कहना है कि जब बात देश के लिए पहल करने की आती है तो मैम हम कुछ बड़ा तो नहीं कर पाएंगे, बट हमने बिजली बचाना, जल बचाना और अपने आसपास में साफ सफाई रखते हैं और चाहे कोई हमारी हेल्प करे या ना करे लेकिन अकेले ही कर लेते हैं। एंड उसके साथ ही साथ बता रही हैं कि कभी खुद कूड़ा करकट फेंकना भी पड़ता है तो हम वो भी कर लेते हैं और कभी रोकने की गुंजाइश हो तो सामने वाले को कह भी देते हैं। और थैंक यू सो मच, और लोगों को समझाते हैं कि रैपर जो है उनका इस्तेमाल सही तरह से होना चाहिए और सही चीज़ों का सही इस्तेमाल होना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात से समझ आ गया मुझे कि भाई प्लास्टिक के लिए भी हमें कुछ सोचना चाहिए, है ना। ये सब आप ही मेरे अंदर जगा रहे हैं। देश के प्रति हमारा प्रमुख कर्तव्य है हमारे भारतीय संविधान का सम्मान करना और हम सबको मैम जी राष्ट्र की एकता व अखंडता की रक्षा करना भी ज़रूरी है और देश के विकास में योगदान देना बहुत ज़रूरी है। नीरजा मैम जी नमस्कार, शुभ संध्या, और ऐसा हमें लिख रहे हैं पश्चिम सिंह भूमि चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांग गोप, संगीता गोप, लिपि गोप, दीपाली गोप। और फिलहाल आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक लगा रही हूँ कि पहले भी हमारे लिए आप हैं, दूसरे भी, तीसरे भी और चौथे भी, आप ही हो सब कुछ। कैसे बताऊँ आपको, लीजिए ये सॉन्ग डेडिकेट करती हूँ।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: आकाशवाणी रेनबो पर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स अपनी आरजे नीरजा के साथ, और आपके साथ में मैसेजेस चल रहे हैं जो इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बना रहे हैं। और हमारे पास जावेद आलम मोहम्मद जहान जयपुर से मैसेज आया है। जयान, ओके, कहते हैं कि हमारे फौजी बॉर्डर पर हैं और उनको सलाम है। जय जवान जय किसान जी, बिल्कुल बहुत ही उम्दा बात कह दी है आपने। और अगला मैसेज हमारे पास आया है, हेलो मैम, मैं भुवनेश अशोक विहार दिल्ली से, कैसी हैं आप जी? मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं और इस टॉपिक पर जुड़े हुए हैं। आप यही कहना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सेव करना बहुत ज़रूरी है। जब भी मैं अपने रूम में कोई स्विच ऑन देखता हूँ और वो रूम खाली होता है तो मैं उसे स्विच ऑफ ज़रूर करता हूँ ताकि इलेक्ट्रिसिटी सेव हो सके और हमारी जेनरेशन को फ्यूचर में ये सेव किया हुआ जो हमारी ओर से एक छोटा सा ही कदम है वो उनके काम आए। और मेरी कंट्री के लिए ये काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक एक छोटा छोटा भी हम काम शुरू कर देना तो बस बहुत अच्छा हो जाएगा। और आगे बढ़ती हूँ मैं मैसेजेस की कड़ी में। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारे लोगों का आ रहा है जी, आप ही का प्रोग्राम है, बहुत अच्छा लगता है जब आप जुड़ते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। पुरुषोत्तम कुमार भद्रवाह से, देश के लिए मेरा पहला कदम ये होगा कि बिजली और पानी की बचत करूंगा जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैसेज मसाला मिक्स में आरजे साहिबा जी को आदाब जी, आबाद, आदाब। आदिल कमर गुन्नौर, शुक्रिया, धन्यवाद, कहते हैं देश में प्रेम भाईचारा बना रहे। बिल्कुल, आप और मैं साथ रहें तो क्या, इससे ज्यादा क्या चाहिए। देश के लिए अच्छा काम करो जिससे तुम्हारा भी और देश का भी नाम हो। बिल्कुल, ये हर व्यक्ति के लिए, हर देशवासी के लिए जरूरी है और ये बहुत जरूरी है। मैं और आप भी क्या किसी सैनिक से कम है ना, इस बात का ख्याल रखना है क्योंकि मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी है। राजेश भला एडवोकेट कंकर खेड़ा मेरठ से कहते हैं, शुभ संध्या नीरजा जी, और देश की सीमा पर जो सैनिक हैं हम उन्हीं की वजह से सुरक्षित हैं, उनको सलाम करता हूं। बिल्कुल, आगे हमारे पास बहुत ही अच्छा सा मैसेज आया, मैं बचपन में छोटा था। भाई बचपन में सभी छोटे होते हैं, लेकिन चलिए आप छोटे थे तो क्या हुआ। हमारे मध्य प्रदेश में तोतापुरी आम जलवायु के कारण उगते नहीं थे, लेकिन मुझे बचपन से ही ये जज्बा था कि मुझे तोतापुरी आम लगाना है और उसमें फल, उसका फल जो है वो उगना चाहिए। और मैं 2020 में एक किलो तोतापुरी आम बाज़ार से ख़रीदा, उसकी सारी गुठलियाँ मैंने एक जगह गाड़ दी, फिर सभी पौधों को मैंने उगने दिया और एक पौधा तो ग्रोथ भी कर गया और उस पौधे में इस साल फल भी आ गया है। मुझे कितना अच्छा लग रहा है और मैं मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि मानो कि मैं जो सोचा था मैंने वो हो गया। इतनी खुशी हुई कि शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। मनीष ब्यावरा जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से, और कहते हैं मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे छोटे से स्तर पर सिलाई का मैं काम करता हूँ और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देता हूँ। ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। और सच में आपका एक एक काम भी अगर जुड़ जाए, सोचिए हम कितने सारे देशवासी हैं ना, अगर एक एक काम भी कर दें एक, तो ये बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए आपका काम छोटा नहीं है, बहुत अच्छा है। नियमित श्रोता हर्षवर्धन पांडे जिला पन्ना मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं और कहते हैं कि हमें अपने देश पर गर्व है और हमें अपने देश को साक्षर रखना चाहिए और सैनिकों को के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और पौधा ज़रूर लगाना चाहिए जिससे आगे वाली पीढ़ी भी सैनिकों के बलिदान को हमेशा याद रखे और उनके बलिदान को भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा जज्बा होता है। हम अपने परिवार को अपना मान लें, ये बड़ी बात है। वो जो सैनिक है वो पूरे देश को अपना परिवार मानता है। जय हिंद जय भारत। इकबाल राय गुलाटी पीपली कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं और कहते हैं, मैं सरहद पर खड़े फौजी को दिल से सलाम करता हूँ जो हमारे देश की सीमाओं की दिन रात रक्षा करते हैं और हम यहाँ चैन से रहते हैं। कंचन सोनिया विहार से हमारे साथ जुड़ी हैं। कंचन, एक बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है, सोच रही हूँ, दिल कह रहा है कि पहले ये चला दिया जाए। तो बिल्कुल कंचन, ये गाना सुन लेते हैं और उसके बाद आपका मैसेज पढ़ते हैं।
1: सुनो
0: सुन रहे हो ना दोस्त, ये गाना मैंने सिर्फ आपके लिए लगाया है।

आकाशवाणी रेनबो पर आप हैं नीरजा के साथ और सुन रहे हैं प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स, जहां मेरी और आपकी धड़कनें बिल्कुल एक ही सुर में गा रही हैं और वही बात कर रही हैं जो हमें करना चाहिए। अपने आसपास किसी एक ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें, किसी बच्चे को पढ़ाइए, कोई पौधा लगाइए, या ये छोटी छोटी चीज़ें ही ना कल आपकी पहचान बन जाएंगी। और इसी बात पर हमसे जुड़े हैं दिल्ली मोरी गेट से हमारे साथ कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार हमें सुन रहे हैं और फौजी भाइयों की बात सुनकर सच में भावुक हो रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं कि सच में अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को मैं और आप अपना लें तो कितना अच्छा हो जाए, है ना। कंचन सोनिया विहार दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं और यही कह रही हैं कि हम सबको भी, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी अपने सार्वजनिक और सरकारी चीज़ों का ध्यान रखें, जिस तरह से अपनी चीज़ों का रखते हैं। पानी के लिए कह रही हैं, साफ़ सफाई के लिए जागरूकता की बात कर रही हैं और कह रही हैं कि हम सबको बहुत ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सुनकर हम मान जाते हैं फिर भी गड़बड़ हो ही जाती है। मुझे पता है नीरजा मैम, मेरा मैसेज आप नहीं पढ़ेंगी, ये कौन मेरा प्यारा सा दोस्त है जो कह रहा है, पता है सारे लिसनर्स बताएंगे कि चाईबासा झारखंड से जो मैसेज आया था ना वो बहुत पहले हमने पढ़ा था लेकिन आपने सुना नहीं है ना। शिवा गोप जी, आपकी पूरी टीम सबका नाम पढ़ा था और पूरा मैसेज मैंने पढ़ा था और चलते चलते आपसे यही कहना चाहूँगी कि इसी तरह से अपने हिस्से की जिम्मेदारी मुझे और आपको ज़रूर पूरी करनी है, इससे पीछे नहीं हटना है, इस बात को समझना भी है और बनाए भी रखना है। और आपके मैसेज आते रहेंगे और मन तो ये होता है कि शामिल करते ही रहो। फरहार आपसे इतनी प्रीत हो गई है कि गाना मुझसे रुक ही नहीं रहा है।

बिल्कुल, आपकी और मेरी ये डोर हमेशा इसी तरह से बनी रहे। आशा करती हूँ कि शो आपको ज़रूर अपना था और अपना ही लगा होगा। ले रही हूँ आपसे इजाज़त क्योंकि उत्कर्ष हमारे बीच आ गए हैं। पहले होगी न्यूज़ और उसके बाद होगा वेस्टर्न म्यूज़िक और फिर मिलेंगे हम और आप। तो चलते चलते यही ख्वाहिश कि आप इसी तरह से बने रहें। नमस्कार।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: Welcome back to the Country Carnival on 102.6 Akashwani Rainbow. We have been talking about how country has changed over time, and there isn't a better time to witness a product of this change. So here's a bit of country pop with Shania Twain's Not Just a Girl.

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुं सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: For those just tuning in, this is Country Carnival on 102.6 Akashwani Rainbow. And we welcome you back after our teeny tiny break. And we have just the track to set the ball rolling again with some very typical country sound, We Tell Ourselves by Clint Black.

0: Avoiding one's troubles is something we've all done at some point. But it's different from taking a moment to relax. That's just taking a break. And so, allow us a moment for the last time this hour, and we'll be right back with some incredible music.
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है.
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती.
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है.
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती.
7: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान. इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी. सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर. जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे. प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय.
0: वेलकम बैक वंस मोर टू द कंट्री कार्निवल ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो. इट इज टाइम टू गेट गोइंग वंस अगेन एंड वी हैव जस्ट द थिंग फॉर यू. Here's something from a living legend with surpassing talent, The Gift by Garth Brooks.

स्कॉटलैंड में 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स का रोमांच अब थम चुका है। कम खेलों वाले संक्षिप्त और अनूठे संस्करण में भी भारत के जाबाज खिलाड़ियों ने तिरंगे की शान को पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा रखा। दरअसल ग्लासगो में जब नियम बदले गए, खेल बदले गए और कुश्ती, बैडमिंटन, शूटिंग, आर्चरी, टेबल टेनिस और क्रिकेट को जगह नहीं मिली, तो हर किसी ने सोचा कि इन खेलों के नहीं रहने से भारत खेलों की औपचारिक शुरुआत से पहले ही पदक की दौड़ में पिछड़ गया है। लेकिन तब शायद ऐसा सोचने वाले ये भूल गए कि भारतीय खिलाड़ियों का यकीन चुनौतियों से डरने में नहीं बल्कि नया इतिहास रचने में है। भारतीय एथलीट अपनी सहूलियत से नहीं अपने हौसले से विरोधियों को हराते हैं। तमाम मुश्किलों के बाद भी भारतीय दल ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य समेत कुल 39 पदक अपने नाम किए और पदक तालिका में चौथे स्थान पर कब्जा किया। मेडल्स की इस रेस में वक्त इस बात का गवाह बन गया कि भारतीय मुक्केबाजों ने ग्लासगो की बॉक्सिंग रिंग को पदक जीतने का सबसे बड़ा मंच बना दिया। अपने मुक्कों के दमदार प्रहार से विरोधियों को बेदम करने वाले हमारे मुक्केबाजों ने एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक समेत 10 पदक जीतकर इतिहास लिख दिया। अपने अब तक के सबसे सफल बॉक्सिंग अभियान में जीतने की जिद रखने वाली भारत की बेटियों ने अपने पुरुष साथियों को भी मेडल जीतने की होड़ में पीछे छोड़ दिया। प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास और अरुंधति चौधरी ने जहां महिला वर्ग में तिरंगे को आसमान की ऊंचाइयों पर लहराया, दूसरी तरफ पुरुषों में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल के मुक्कों के सामने विरोधी नतमस्तक हो गए। लेकिन इतिहास सिर्फ बॉक्सिंग रिंग में ही नहीं बल्कि जूडो मैट पर भी लिखा गया। इस खेल में मेडल तो मिलता रहा था लेकिन पदक की स्वर्णिम चमक पहुंच से दूर थी। इस बार अस्मिता डे ने महिलाओं के 48

0: 20 किलोग्राम भार वर्ग में वह कर दिखाया जो इससे पहले कोई भारतीय जूडोका नहीं कर पाया था। उन्होंने जूडो में भारत को राष्ट्रमंडल खेलों का पहला स्वर्ण पदक दिलाया। इसके बाद तो टीम जैसे नए जोश और उमंग से भर गई। तभी तो पहली स्वर्णिम सफलता के कुछ ही देर बाद हर्ष सिंह ने पुरुषों के वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर सफलता को दोगुना कर दिया। एक सच ये भी है कि इन तमाम सफलताओं की नींव इन खेलों की शुरुआत में ही पड़ गई थी जब गोल्डन गर्ल मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग में देश को पहला सोना दिलाया। एक बार जीत का ये सिलसिला जो शुरू हुआ तो वो लगातार आगे बढ़ता चला गया। ट्रैक एंड फील्ड पर भी हमारे खिलाड़ियों की चमक फीकी नहीं पड़ी। चोट के बाद वापसी कर रहे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर देश को निराश नहीं किया और जैवलिन थ्रो में रजत पदक अपने नाम किया। 10 इवेंट वाले डेकाथलान में तेजस्वी शंकर ने भले ही ब्रॉन्ज मेडल जीता लेकिन ये किसी स्वर्ण से कम नहीं था। डेकाथलान जैसे मुश्किल खेल में पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय खिलाड़ी बने, लेकिन इस बार असली सनसनी तो पैरा एथलीट रहे। दिलीप महादो गावित ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.71 सेकंड का नया गेम्स रिकॉर्ड बनाकर कमाल ही कर दिया। शर्मिला धनखड़ और सुमन राणा ने भी शॉटपुट में सोने के पदक पर निशाना साधा। भारत की कामयाबी के सफर के साथ ही कई और नाम भी रहे। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारे धुरंधर ने साबित कर दिया कि खेल चाहे जो भी हो जहां भी हो भारतीय खिलाड़ियों का जज्बा कभी कम नहीं होता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि ये सफर आगे बढ़ चला है। भले ही कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के समापन का ऐलान हो गया है लेकिन ये कारवां अब ग्लासगो की प्रसिद्ध क्लाइड नदी से आगे अहमदाबाद की साबरमती नदी की तरफ बढ़ चला है। 2010 के बाद 2030 में हम दूसरी बार इन खेलों की मेजबानी करने जा रहे हैं। मतलब अगली बार जब दुनिया हमारे खिलाड़ियों से टकराएगी तो मैदान भी हमारा होगा और करोड़ों भारतीयों का समर्थन भी। स्कॉटलैंड की धरती पर इस बार अनेक आशाएं पूरी हुई, कई उम्मीदें टूटी और बहुत सारी नई आस भी जगी। कुल मिलाकर ग्लासगो में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन को कैसे आंका जा सकता है, इस प्रदर्शन से क्या नई उम्मीद जगती है, साथ ही अहमदाबाद में अतिथि देवो भव की हमारी प्राचीन परंपरा को एक बार फिर से साबित करने का कितना बड़ा मौका है, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान, खेल विश्लेषक और खास तौर पर पैरा गेम्स पर नजर रखने वाले महावीर रावत और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के साई के रिसर्च पॉलिसी एंड लर्निंग के हेड त्रिदीप भुइयां। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत।
1: थैंक यू।
2: थैंक यू
0: त्रिदीप। शुरुआत अगर आपसे करें तो सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि तमाम जो परिस्थितियां थी उसके बावजूद भी हमारे खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन आया उसकी कितनी सराहना बनती है?
1: देखिए, अगर जैसे आपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि ये कर्टेल्ड वर्जन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स थे जिसमें बहुत सारे हमारे जो प्रीवियस एडिशंस में जहां हमारे मेडल आते थे रेसलिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, आर्चरी के बावजूद हमने 39 मेडल्स घर लाए और उन्हीं 39 में से 13 गोल्ड हैं। उन 13 में से पहली बार बॉक्सिंग में हम 10 फाइनल में पहुंचे जिसके बदौलत हमने 7 गोल्ड ट्रांसफॉर्म किया। वही पैरा एथलेटिक्स में भी पहली बार हमने स्वर्ण पदक जीता। अगर आप उस तरह से देखें एथलेटिक्स में भले हमने इस बार स्वर्ण नहीं जीता लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें 10 मेडल, ये भारतीय एथलेटिक्स कंटिंजेंट की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है इन फॉरेन सॉइल अगर आप टोटल मेडल से देखें। जूडो जैसे आपने कहा पहली बार स्वर्ण मेडल आए हैं और टोटल ऑफ 4 जो किसी एडिशन में नहीं आए, प्रीवियस बेस्ट हमारा 3 ही था। पैरा एथलेटिक्स में आज तक राष्ट्रमंडल खेल में हमने टोटल 7 मेडल जीते हैं जो कि इसी एडिशन में हमने एक ही बार में ही 7 मेडल हमने अर्न किए हैं। तो अगर आप इन सब चीजों को देखें तो ओवरऑल आप ये राष्ट्रमंडल खेल हमारे लिए बहुत अच्छा रहा और मैं आशा करता हूं कि आने वाले राष्ट्रमंडल खेल में जब सारे गेम्स दोबारा आएंगे तो हमारी मेडल टैली में रैंकिंग भी इम्प्रूव होगी।
0: महावीर, इस बार हमारी ताकत वाले कई खेल ग्लासगो में मौजूद नहीं थे, फिर भी 39 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर मौजूदगी हमारी बढ़ती खेल शक्ति का कितना बड़ा संकेत है?
2: देखिए, अगर हमारे लिए नहीं थे तो सभी के लिए नहीं थे, लेकिन ये है कि उन स्पोर्ट्स में हमारी ताकत बहुत ज्यादा थी, वहां से हम मेडल्स बहुत निकालते हैं। जैसे कि हमारे रेसलर्स, हर किसी को पता है जो भारतीय खेल जानता है कि कुश्ती हो, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे वेटलिफ्टिंग हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हमको भाते हैं, हमारे खिलाड़ियों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है कि 39 में से आपके मेडल जो गोल्ड हैं उसकी संख्या लगभग 30% है। तो ऐसा नहीं कि हम सिल्वर जीत के 39 लाए हैं या ब्रॉन्ज जीत के 39 तक पहुंचे हैं, हमारा गोल्ड का प्रेजेंस भी उतना रहा है। हाँ, ये मैं जरूर चाहूंगा कि अगर एथलेटिक्स में थोड़ा थोड़ा सा हमारे गोल्ड की संख्या बढ़ती तो हम जरूर और ज्यादा खुश होते हैं। क्योंकि देखिए मदर स्पोर्ट्स होते हैं, एथलेटिक्स, स्विमिंग, जिमनास्टिक्स, ये मदर स्पोर्ट है। आपकी मेडल टैली कितनी ऊपर जाती है ये इन तीन स्पोर्ट्स से काफी डिफाइन होता है कि आप एथलेटिक्स में कैसा करते हैं, आप पूल में कैसा करते हैं और आप जिमनास्टिक में कैसा करते हैं। तो इन तीन खेलों में जब तक आप बहुत अच्छा नहीं करेंगे, और मैं हमेशा थोड़ा और इसलिए उम्मीद करता हूं कि अब मैं वो

0: भारत नहीं देखता हूँ जो कॉमनवेल्थ में इतने मेडल से खुश हो जाए, नंबर चार पे आके खुश हो जाए या कॉमनवेल्थ में खुश हो जाए। मैं उस भारत को देखता हूँ जो वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है, जिसके यहाँ पे एक बहुत अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं, जहाँ पे यंग एथलीटों की बहुत ज्यादा भरमार है, टैलेंट को रिकवर किया जा रहा है। और मैं खुद, मेरे साथ साई के दोस्त मेरे बैठे हैं, बहुत सारी सुविधाएं प्लेयर्स को दी जा रही है, फॉरन एक्सपोजर उनको बहुत दिया जा रहा है। तो जब तक आप बहुत अच्छा नहीं करेंगे मैं कभी संतुष्ट नहीं होऊंगा। तो वी कुड हैव डन मच बेटर, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स अब भारत वो बेंचमार्क लेके नहीं चलता है। अब हमारा बेंचमार्क वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स या ओलंपिक्स ही है, क्योंकि हमने बनाए हैं स्कीम्स जैसे टारगेट ओलंपिक पोडियम जो है, तो हम चाहते हैं कि हम ओलंपिक की तरफ ध्यान दें। सो आई एम हैप्पी कि बॉक्सिंग से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, हमारे पैरा खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा किया। खैर पैरा से तो मैं उम्मीद कर ही रहा था, बट वी कुड हैव डन लिटिल मच बेटर इन एथलेटिक्स।
1: महावीर, इस बार हमारी ताकत वाले कई खेल ग्लासगो में मौजूद नहीं थे, फिर भी 39 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर भारत की मौजूदगी हमारी बढ़ती खेल शक्ति का कितना बड़ा संकेत है।
0: नहीं, खेल शक्ति हमारी बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये नतीजा है पिछले लगभग 7-8-10 सालों से जो एक सिलसिलेवार तरीके से स्कीम्स को पहले सोचा गया और फिर मैदान पे उसको इम्प्लीमेंट किया गया। जैसे मैं सोचता हूँ कि एथलेटिक्स में थोड़ा सा अगर हम और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते, खिलाड़ियों ने तो अपनी जान झोंकी, 10 मेडल हमें आए, लेकिन गोल्ड का कॉलम हमारा खाली रह गया। इसमें जैवलिन, जिसमें भारत एक बहुत बड़ी फोर्स है, और अब तो इतने सारे जैवलिन थ्रोअर्स हैं भारत में, वहां पे श्रीलंका के जो पथिरागे तरंगा आए हैं सुपर, मैंने उन्हें खुद साउथ एशियन एथलेटिक फेडरेशन जो रांची में हुआ था उसमें देखा था, एंड ही इज अ सुपर एथलीट। लेकिन उसके बाद जो भारत ने परफॉर्मेंस किया है कमेंडेबल है, वहां मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था कि कुछ और बेटर कर सकते थे। क्योंकि देखिए अब जमाना चला गया जब हम कॉमनवेल्थ में गोल्ड लेके खुश हो जाते थे, अब हमारा जो मिशन है वो ओलंपिक्स है, हमारा मिशन अब वर्ल्ड चैंपियनशिप है, हमारा मिशन अब एशियन गेम्स में डोमिनेट करना है। तो मैं खुश जरूर हूं, और इस बात से भी खुश हूं कि 39 में से जो लगभग 33% है वो गोल्ड मेडल है। तो ऐसा नहीं कि हम ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर की संख्या की लेके 39 गए, हमने गोल्ड भी कमाए। हैट्स ऑफ टू ऑल द बॉक्सर्स, ऑल द पीपल इन द फेडरेशन जिन्होंने कमाल किया है। तो मैं खुश बहुत हूं, लेकिन थोड़ा सा अगर एथलेटिक्स, स्विमिंग और जिमनास्टिक्स में और अच्छा किया होता, बिकॉज दीज आर मदर स्पोर्ट्स, और एशियन गेम्स में हमारी मेडल टैली कैसी होगी ये तीन गेम्स में काफी कुछ डिपेंड करता है, थोड़ा सा अगर वहां हमने परफॉर्म और अच्छा किया होता। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अब वो नया भारत देखता हूं जहां हम सिर्फ कॉमनवेल्थ से खुश नहीं है, हमें ओलंपिक्स में मेडल चाहिए।
1: तो जैसा कि महावीर ने कहा, त्रिदीप की मुक्केबाजों ने तो इस बार कमाल ही कर दिया, ऐसे दमदार पंच पड़े कि एक ही दिन में मेडल टैली का पूरा गणित बदल गया। क्या बॉक्सिंग में इतने अच्छे प्रदर्शन की पहले से हम उम्मीद कर रहे थे?
2: देखिए, जैसे पिछले पेरिस ओलंपिक्स के बाद जो हमारे बॉक्सिंग में परफॉर्मेंस रहा, तो फेडरेशन ने उसमें काम किया, जैसे उन्होंने एक फॉरेन कोच लाए वापस, सैंटियागो जो पहले हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर भी रहे हैं बॉक्सिंग फेडरेशन के, वो एक्सक्लूसिवली दोबारा आए सिस्टम में जहां वो पहले से बॉक्सर्स को जानते थे, और इन्होंने इस बार फोकस सिर्फ फीमेल बॉक्सर्स पे किया है। अगर आप प्रीवियसली भी अगर आप हमारी परफॉर्मेंसेस देखें तो हमारी वुमेन बॉक्सर हमेशा डोमिनेंट रही है मेल के कंपैरिजन में। तो अगर उस हिसाब से देखें, 7 लड़कियों की कैटेगरीज थी वेट, जिसमें से हम लोग 6 में फाइनल पहुंचे हैं, वो इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। और उन 6 में से हमने 5 में स्वर्ण पदक जीता है। तो बेसिकली अगर आप लड़कियों के साइड में देखें तो ये मैं बोल सकता हूं, और जो महावीर जी भी एग्री करेंगे, इट वॉज अ टोटल डोमिनेशन। बट उधर लड़कों की तरफ देखें तो जैसे बहुत सारे डेब्यूटेंट, नरेंद्र वो जो एक वेटरन बॉक्सर है, वो पहले भी मेडल ला चुके हैं, उन्होंने अपना दोबारा मेडल लाला, लेकिन जैसे पहली बार डेब्यूटान जा रहे हैं अंकुश वो वापस स्वर्ण पदक लेके आए हैं, जिन्होंने डेफिनेटली हमारे मेडल टैली को एनहांस किया है। और अगर आप देखें, जैसे आपने बताया बॉक्सिंग के बाउत सी ऐसे रखे थे कि सारे सेमीफाइनल्स, क्वार्टर फाइनल्स और फाइनल्स एक ही दिन थे, तो वो तो हम लोगों ने पहले ही एक्सपेक्ट किया था कि भले हम मेडल टैली में अभी पीछे हैं, एक समय पे हम लोग 10वें नंबर पे थे, जहां नाइजीरिया, स्कॉटलैंड, कनाडा ये हमसे आगे थे। जैसे ही लेकिन बॉक्सिंग के मेडल्स आने शुरू हुए, वो पलरा बदल गया। और मुझे बहुत खुशी है कि डिस्पाइट द नंबर ऑफ गेम्स हैव बीन रिड्यूस्ड, वी हैव स्टिल अचीव्ड आवर लास्ट रैंकिंग ऑफ 4th।
1: तो महावीर, बॉक्सिंग की मेडलिस्ट में जो नाम दिखाई देते हैं, और जैसा कि त्रिदीप ने बताया कि कुछ जाने पहचाने नाम हैं, तो कुछ ऐसे भी नए चेहरे थे जिनके बारे में बॉक्सिंग की दुनिया तो क्या कहें, लेकिन जो खेल प्रेमी है वो बहुत कुछ नहीं जानते थे। तो क्या माना जाए कि ये प्रदर्शन प्रदर्शन हमारी मजबूत बेंच स्ट्रेंथ और सुनहरे भविष्य का संकेत है।
0: इससे ज्यादा ये हमारी बेटर प्लानिंग का संकेत है कि आप प्लान करते हैं, एथलीट्स को एक्सपोजर देते हैं, उनको अच्छी कोचिंग उनके हिसाब से प्लान करते हैं। और एक बात त्रिदीप कह रहे थे कि जो फीमेल बॉक्सर्स हैं, और मुझे पता नहीं मैं ये कब लोगों को कन्विंस कर पाऊंगा कि भारत अगर तभी डोमिनेट कर पाएगा जब हमारे फीमेल एथलीट्स

0: करेंगे, क्योंकि फीमेल चाहे आप वेटलिफ्टिंग में हो, हम मीराबाई चानू को देखते हैं, हम बॉक्सर्स में हो तो मैरी कॉम ने पहला नाम लिया था, पीवी सिंधु हैं, तो जो हमारी फीमेल पार्टिसिपेशन है बॉक्सिंग में भी उन्होंने बहुत अच्छे मेडल्स दिए हैं, वेटलिफ्टिंग में भी अगर आप देखें तो हमारी फीमेल पार्टिसिपेशन ही बहुत अच्छा रहा है और उनका जो कन्वर्जन रेशियो है वो भी बहुत अच्छा रहा है। तो मैं इस बात से तो बहुत खुश हूं। और अभी भी अगर हमारा फीमेल स्पोर्ट्स के प्रति ग्रास रूट लेवल पे, हालांकि साई की तरफ से बैठे हैं दोस्त, अस्मिता लीग चल रही है जहां हर स्पोर्ट का एक अपना लीग होता है, आई थिंक वी शुड फोकस मोर ऑन फीमेल स्पोर्ट्स। और घरों को भी हम इस प्रोग्राम के माध्यम से ये एडवाइस करेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी लड़कियों को मैदान पे भेजिए, क्योंकि हमारी लड़कियों में वो ताकत है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे डोमिनेट कर सकते हैं। आई टोटली सी कि अहमदाबाद जो 2030 होगा, या अहमदाबाद में क्यों जाओ, मैं जापान में देखिएगा जो हमारी फीमेल एथलीट्स हैं, दे विल एनी डे ओवर नंबर इन मेडल टैली टू अवर मेल कंपेटिटर्स।
1: जी, और जूडो में भी इस बार कमाल हुआ है क्योंकि डबल गोल्ड मेडल की कामयाबी, ये प्रदर्शन क्या जूडो में हमारी बढ़ती ताकत की तरफ इशारा कर रहा है?
2: देखिए, अगर जैसे आपने बताया कि हम हमेशा कॉम्बैट स्पोर्ट्स में हमेशा अच्छे रहे, मुक्केबाजी हो, रेसलिंग हो, जूडो में भी अगर आप देखें हमारा प्रदर्शन राष्ट्रमंडल खेल में, हमने मेडल लाए, बट हम लोग उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे थे जैसे हम बॉक्सिंग और रेसलिंग में किया। लेकिन इस बार अस्मिता दे, जो त्रिपुरा के इतने इंटीरियर जगह से आती हैं, उन्होंने देश का पहला स्वर्ण पदक जीत के अपने देश का तो नाम रोशन किया ही, बाकी अपने स्टेट से जो इतने इंटीरियर एरिया से आ रहे हैं, तो फिर इससे जैसे महावीर जी बोल रहे हैं, जो हमारा टैलेंट पूल है, इट्स नॉट इन द मेन सिटीज, इट्स इन स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। एंड सरकार तो कर ही रही है, उसके अलावा जितने और स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ये ऐसा एक मैकेनिज्म डिवाइस करना पड़ेगा जिससे कोई भी एथलीट को अगर कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए खेलने के लिए वो कभी निराश ना हो। तो अब जैसे ही अस्मिता ने स्वर्ण लाया, उसके पीछे हमारे हर्ष सिंह आ गए, जो पहले मेल एथलीट बने जिन्होंने स्वर्ण पदक लाया। जैसे बताया था, हमारी एक्सपेक्टेशन तुलिका और अवतार सिंह से भी थी जो पहले खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन ये नए बच्चों ने जो आके जो ये प्रदर्शन दिया है, आई एम 100% श्योर कि हमारा फ्यूचर जूडो में अच्छा होगा।
0: इस बात को ना थोड़ा सा मैं आगे लेके जाता हूँ। अस्मिता कहाँ की लड़की है? त्रिपुरा की। जब कोई दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई से निकलता है ना, तो जो गाँव में बैठे लड़के लड़कियां उनको लगते हैं वहां पे न जाने वो क्या खा रहे होंगे, न जाने क्या ट्रेनिंग कर रहे होंगे, न जाने वो कौन सा वहां पे एक सिस्टम होगा जिसकी वजह से चैंपियन निकल रहे हैं। लेकिन जब हरियाणा के एक छोटे से गांव से जहां सूखा बहुत आता है वहां से जब शर्मिला निकलती है, जब त्रिपुरा की एक ऐसी जगह से जहां जिसके फादर एक सिंपल इलेक्ट्रीशियन थे और उन्होंने अपनी बेटी अस्मिता को बहुत सिखाया, हालांकि 2025 में उनका देहांत हो गया और मैं अस्मिता का इंटरव्यू देख रहे थे उनके, जब भी वो अपने पिताजी का नाम ले रही थी उनकी आंख में आंसू आ रहे थे। तो जब ये स्टोरीज गांव तक जाती हैं, जब ये स्टोरीज बाहर आती हैं, तब जो हमारे इंटीरियर के जो बच्चे उनको लगता है नहीं ये तो हम ही में से एक है, और जब आप में से एक निकल के जाता है तो तीन और अस्मिता आगे आके लड़ने की कोशिश करती है, फिर उन्हें ये नहीं लगता कि बॉम्बे, दिल्ली या फिर मद्रास या कोलकाता में कुछ जादू हो रहा है, जादू हमारे इंटीरियर में ही है, तो उनमें वो एक सेल्फ बिलीफ आता है कि वी कैन आल्सो डू दिस।
1: बिल्कुल। और महावीर, लगे हाथ ये सवाल भी कि नीरज चोपड़ा ग्लासगो में गोल्ड तक तो नहीं पहुंच सके हैं, लेकिन इंजरी से वापसी के बाद उनका सिल्वर जीतना भी भारत के लिए क्या राहत की बात है?
0: अब जो आदमी ओलंपिक्स में गोल्ड जीत चुका हो उससे आप कॉमनवेल्थ में सिल्वर तो राहत नहीं मान सकते हैं, बट हमें एक एथलीट की उम्र भी देखनी होगी, वो अपने किस करियर के किस पड़ाव पे है ये नीरज चोपड़ा अच्छा जान सकते हैं, उनके कोचेज अच्छे जान सकते हैं, लेकिन आई थिंक ही हैज बीन अ ग्रेट सर्वेंट फॉर इंडियन स्पोर्ट्स। नीरज चोपड़ा ने जो कमाल किया है वो मुझे नहीं लगता है कि इस देश की जो सूरत है, जो नक्शा है स्पोर्ट्स का बदलने में, उस एक अकेले लड़के ने आज देखिए आप, मैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जाता हूं, मैं त्यागराज जाता हूं, मैं छत्रसाल जाता हूं, सब जेवलिन फेंक रहे हैं, खेल में रेवोल्यूशन कैसे लाते हैं ये नीरज चोपड़ा ने दिखाया। तो अब वो उनमें क्या वो बात है ये सिर्फ नीरज चोपड़ा जानेंगे, क्योंकि उन्होंने जो मुझे एक और चिंता की बात लगी कि नीरज चोपड़ा ने कहा कि मैं जब भी रन अप पे दौड़ रहा था ना मुझे डर लग रहा था। तो एक एथलीट को डरना नहीं चाहिए कि उनकी बॉडी कब ब्रेक हो जाएगी। तो वी शुड रिस्पेक्ट हिम, वो बहुत कुछ उन्होंने दे दिया है, अब उनसे जितना कुछ और आ जाए ये पॉजिटिव है।
2: अब मैं इस पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, जैसे ग्लासगो में अगर आप देखें तो कंडीशंस वेर आल्सो नॉट इजी, इट वाज वेरी कोल्ड और वहां पे हेडविंड आ रहा था जिसके तहत वो डिस्टेंस नहीं जा रहे थे। अगर आप श्रीलंकन को भी देखें, उन्होंने सिर्फ एक ही लेजिटिमेट थ्रो मारा जिसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और ये जो फील्ड ऑफ एथलीट्स जिन्होंने जैवलिन पे कम्पीट किया कॉमनवेल्थ गेम्स, ये एज गुड एज द वर्ल्ड चैंपियनशिप और ओलंपिक. इट हैड एंडरसन पीटर्स जो पहले के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, केशॉन वॉलकॉट जो पिछले बार टोक्यो के वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल जीता है,

0: बड़ी तारीफ उनकी बनती है।
1: एकदम डेफिनेटली, जैसे कि बर्मिंगम गेम्स में तेजस्विन सिल्वर मेडल लेके आए थे हाई जंप में, बट डेकाथलॉन को जैसे एथलेटिक्स का बोलते हैं मास्टर इवेंट, क्योंकि इसमें आपको एक नहीं दो दिन कम्पीट करने पड़ते हैं और 10 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तेजस्विन जो हालांकि इन द लास्ट 2 ईयर्स उन्होंने अपना फोकस हाई जंप से थोड़ा डिकैथलॉन में लाया है, जिसके तहत उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं, एशियन चैंपियनशिप में भी मेडल लाए हैं, और डिकैथलॉन में इस बार वो पहले इंडियन बने हैं जो डिकैथलॉन में उन्होंने मेडल लाया है, और उसके बावजूद वो पहले इंडियन भी बने हैं जो दो डिफरेंट इवेंट में उन्होंने मेडल जीता है। तो अगर आप तेजस्विन की बात बोले, तेजस्विन को मैंने बहुत करीबी से कैंप में भी देखा है, वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ही ट्रेन करते हैं, दिल्ली का लड़का है, बट वो लड़का लेकिन बहुत एजुकेटेड है, वो उसको पता है कि एक एथलीट को अपने बॉडी के साथ क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेन करना चाहिए, कब उसको पीक करना चाहिए, कब वो ऑफ सीजन होता है। तो ऐसे स्मार्ट एथलीट अगर और आते रहेंगे तो हमारी ऐसे मेडल टैली बढ़ती ही रहेंगी
0: जी। और महावीर, पैरा खिलाड़ियों ने भी इस बार कमाल कर दिया, कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल पर कब्जा किया, जिनमें 3 गोल्ड मेडल भी शामिल रहे। आपकी खास नजर रहती है पैरा गेम्स पर, तो ये प्रदर्शन सचमुच ऐतिहासिक कहा जा सकता
2: है? ऐतिहासिक भी है लेकिन सरप्राइजिंग नहीं है। पिछले 5-10 साल में अगर आप देखें, कोई एक स्पोर्ट जिसने बहुत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की है वो है पैरा स्पोर्ट्स। रियो 2016 में हमारे 4 मेडल थे, एक गोल्ड बाय हमारे प्रेसिडेंट देवेंद्र झाझड़िया, मरियप्पन का गोल्ड था, दीपा मलिक जी का सिल्वर था और वरुण भाटी का ब्रॉन्ज था, 4 मेडल लेके हम आए। उसके बाद हम टोक्यो में गए तो हम 4 से 17-19 पहुंचे और अब हम 29 पहुंचे हैं पेरिस में। ये मैं ओलंपिक्स की बात कर रहा हूं, और हमें तो पता भी नहीं रहता कि हमारा इवेंट कौन सा होगा, क्योंकि पैरा में क्या होता है कि सारे इवेंट तो वो देते नहीं है। अगर एथलेटिक्स भी देंगे तो वो 100 देंगे, 200-400 नहीं देंगे। तो इट्स कॉमनवेल्थ गेम्स में वो एक इंक्लूसिवनेस की वजह से पैरा स्पोर्ट्स को इंक्लूड करते हैं और इवेंट्स वो 5-6 महीने पहले पता चलते हैं कि ये इवेंट्स वहां पे होंगे। दिलीप की ही कहानी में बताऊं, दिलीप 400 मीटर के रनर है, वो 100 मीटर के रनर नहीं है, लेकिन जब हमने देखा कि दिलीप गवित वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमारे जो एथलेटिक्स के चेयरमैन सत्यनारायण जी हैं उन्होंने दिलीप के कोच से बात की कि आप इसे 3 महीने 100 मीटर के लिए ट्रेन कीजिए, और उस लड़की ने उसको अवसर मिला 100 मीटर दौड़ने का और उसने 10.71, कैन यू बी 10.71 हमारे गुरिंदर वीर के 10.39 है,
0: बिल्कुल,
2: और दिलीप का एक हाथ नहीं है फिर भी वो 10.71 क्रॉस किया। और उसके जो लास्ट के 50 मीटर अगर आप देखो, अमेजिंग, जैसे यूसेन बोल्ट की, ही इज अ बैड स्टार्टर लेकिन ही इज अ ग्रेट फिनिशर। दिलीप ने भी बहुत स्टार्ट इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन आखिर का 50 मिनट मेरे ख्याल से उन्होंने 5.5 सेकंड में खत्म किया। और वैसे ही शर्मिला की स्टोरी, एक कहानी महिला की और जो बताती है कि महिला शक्ति क्या नहीं कर सकती है। शी रिफ्यूज टू गेट डिफीटेड इन लाइफ। पहली शादी हुई, अब्यूजिव मैरिज था, पति ने घर से बाहर निकाल दिया, हार नहीं मानी, अपनी 2 बच्चों के साथ वो बाहर चली गई। जब से शर्मिला पैदा हुई तब से उनको पता चला कि उनकी माँ की आंखें नहीं, उन्होंने गोल्ड अपनी माँ को डेडिकेट किया। तो ये सब कहानी है। देखिए पैरा में आप जितना जाएंगे उतने आपको लगेगा यार ये तो यहाँ हर कोई एक कहानी है। तो आई एम वेरी हैप्पी अभी तक के जो टोटल कॉमनवेल्थ में थे वो मेडल एक तरफ और इस बार के जो कॉमनवेल्थ मेडल है वो हमारे एक तरफ। बट हैट्स ऑफ टू द पीपल हु आर प्लानिंग दिस। हमने इवेंट देख लिए थे कि कौन से इवेंट है। हमारे दोनों फौजी जो है, जुयाल और सुमन राणा, दोनों मेडलिस्ट है। और ये भी एक कहानी है कि जो फौज में इंजर्ड हो जाते हैं, जो हमारे फोर्सेज में इंजर्ड हो जाते हैं, आप कृपया पैरा स्पोर्ट्स की तरफ आइए और वहां पे अपना फ्यूचर बनाए, क्योंकि आप फिट तो हैं, आप वहां पे बहुत सारे अच्छा परिश्रम भी कर चुके हैं, आप यू आर वेरी फिट मेंटली एंड फिजिकली, बट ड्यू टू ऑन ड्यूटी आपकी कुछ डिसेबिलिटी आ गई है, तो आप पैरा स्पोर्ट्स में आइए और अपने देश का झंडा फौज में नहीं तो खेलों में आप ऊपर कीजिए। और सुमन राणा इसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है जिन्होंने शॉटपुट में गोल्ड जीता है।
0: जी महावीर, आपकी बातों से और प्रदर्शन से दोनों मिलाकर ऐसा लगता है कि पैरा स्पोर्ट्स में काफी कुछ काम हो रहा है
2: पूरा, और सरकार का इसमें पूरा, मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स होता है, नेशनल गेम्स होता है, यूनिवर्सिटी गेम्स होता है, सरकार ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स भी कराया है और एक नहीं 2 बार कराया, और मैं सुनने में आ रहा हूं कि जल्दी 3rd एडिशन भी होने वाला है। तो ये खिलाड़ी आते हैं, उनको टीवी पे अपना गेम देखते हैं, तो सबसे पहले तो इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाना चाहिए जिन्होंने पहले तो विकलांग शब्द हटाया, दिव्यांग शब्द रखा, थोड़ी क्रेडिबिलिटी दी। किस प्रधानमंत्री ने लोगों से मुलाकात की? लोग अक्सर क्या होते थे, जीते हुए एथलीट आते थे, उनसे मिलते थे, फोटो खींचाते, खत्म हो जाते थे। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्रेंड शुरू किया कि अगर मैं एबल बॉडी के एथलीट से मिल रहा हूं तो मैं पैरा के एथलीट से भी मिलूंगा। वो उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं जाने से पहले, जीतने के बाद। तो उन्होंने एक ऐसा संदेश दिया है कि नहीं, आप इस सिस्टम का हिस्सा हो। तमाम स्कीम्स जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया चला

0: जाती है, चाहे वो टॉप्स हो, वो सब में पैरा खिलाड़ी शामिल हैं। तो हमारे पैरा एथलीट्स को भी उतना ही फॉरेन एक्सपोजर मिल रहा है, उतना ही बजट मिल रहा है, ACTC में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी उतना ही है जितना की नॉर्मल बॉडी का है। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट और उसका डोमिनेंस अब हमें दिखने लग गया है मेडल टैली में।
1: जी, और प्रदीप, कुछ ऐसे खेल जिसमें प्रदर्शन उतना अच्छा रहा नहीं, बॉल्स, स्विमिंग, साइकिलिंग, जिमनास्टिक्स में उम्मीदों के अनुरूप हम प्रदर्शन नहीं कर सके, इन खेलों में सिर्फ पार्टिसिपेशन ही काफी है या इन पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है?
2: अगर बॉल्स की बात करें तो पिछली बार बर्मिंगम में हमारे 2 मेडल थे, लेकिन इस बार जिन इवेंट्स में हमारे मेडल थे वो इस एडिशन में नहीं थे, तो जिसके कारण बॉल्स में हमें एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम हो गई। बाकी अगर हम बोले इवेंट जैसे साइकिलिंग और जिमनास्टिक्स, यहाँ पे हमारा जिमनास्टिक में दीपा कर्माकर वाज द लास्ट वन टू गेट अस अ मेडल 2014। उसके बाद से हमारा जिमनास्टिक में थोड़ा पलरा कम ही रहा है, बट उम्मीद है कि आने वाले एशियन गेम्स में वो इम्प्रूव होगा। सिमिलरली साइकिलिंग, अगर आप देखें साइकिलिंग एथलेटिक्स, ये ऐसे इवेंट हैं जो एशियन लेवल पे नहीं है जितने राष्ट्रमंडल में, आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर आप एथलेटिक्स में अगर अभी 10 मेडल है, आप उसको एशियन गेम्स में देखेंगे तो वो डबल होगा या ट्रिपल होगा। लेकिन वही अगर आप जो वेट लिफ्टिंग के जहां 8 मेडल दिख रहे हैं, आपको हो सकता है एशियन गेम्स में 0 दिखे, क्योंकि हमने 1998 से एशियन गेम्स में हमने कभी वेट लिफ्टिंग पे मेडल लाया ही नहीं है। हमने ओलंपिक्स में मेडल लेके आए हैं लेकिन एशियन में नहीं ले पाए। सो एवरी शू डजंट फिट एवरीवन, व्हाट आई वुड लव टू से। तो इवेंट्स अगर, हाँ, डिसअपॉइंटमेंट तो रही है, गोइंग फॉरवर्ड आई एम प्रीटी श्योर कि हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस के साथ भी बैठेंगे ताकि इनकी प्लान डिवाइस कर पाए कि कैसा एक्सपोजर चाहिए या कोई इनको हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर चाहिए, कोचेस चाहिए, जिसके तहत ये इम्प्रूवमेंट इन सारे डिसिप्लिन में जहां हमने थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा उसमें इंप्रूव कर पाए।
1: तो महावीर, 20 साल बाद 2030 में भारत में फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स की वापसी होने वाली है, खेलों का फ्लैग भारत को सौंप दिया गया है, अब मेजबान के तौर पर हमारी बड़ी जिम्मेदारी होगी। और जिस तरह से कुश्ती, बैडमिंटन, शूटिंग, आर्चरी जैसे खेलों की गैर मौजूदगी के बावजूद हमने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है, तो अगला कॉमनवेल्थ गेम्स हमारे खिलाड़ियों के लिए कितना बड़ा मौका होगा?
0: नहीं, मौका तो होगा ही, हम होस्ट भी हैं, हम सबके दोस्त भी हुए होंगे और हम सबसे ज्यादा टॉपर भी होंगे, इसी उम्मीद में हम करते हैं, क्योंकि अहमदाबाद में है और गुजरात में, इसीलिए है कि मैं 20 साल गुजरात में मैंने बचपन के गुजारे हैं, इसलिए मैंने चौकस तरीके से या विश्वास है कि गुजरात में आ वक्ते जो गेम्स थे ये सुपर डुपर हिट थे। और मैंने देखा हर सांगी जी वहां ऑलरेडी पहुंचे हुए, पीटी उषा जी वहां पे मौजूद है, उन्होंने फ्लैग को लिया और एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई नो एंड माई फ्रेंड फ्रॉम साई वुड ऑल्सो नो कि काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इन राष्ट्रमंडल खेलों में हमारी पूरी टीम गई थी ये स्टडी करने के लिए कि क्या कुछ वहां पे करना चाहिए, क्या कुछ होता है और उसको अब इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि हम होस्ट की तरह से तो किसी को निराश नहीं करेंगे, जो हमने कभी नहीं किया है, लेकिन मैं परफॉर्मेंस की वाइज बिल्कुल, मेरी ये दिली इच्छा है कि हम ऑस्ट्रेलिया को इसमें जमकर टक्कर दें।
2: और जैसे महावीर जी ने कहा है, और इस बार हमारा चांस भी रहेगा क्योंकि हम लोग मेहजबानी कर रहे हैं, जिसके तहत हमें सारी डिसिप्लिन में खेलने का मौका भी मिलेगा, नंबर ऑफ एथलीट्स भी बढ़ेंगे। अगर आपको अगर याद है 2010 में जब हमने मेहजबानी की थी तो हम मेडल टैली में सेकंड आए, वो हमारा आज तक का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। और जैसे महावीर जी बोल रहे हैं तो उम्मीद है कि 2030 में हम सेकंड से टॉप में आए।
1: जी, तो एक सवाल यहां तो बनता है ना कि 101 पदक हमने दिल्ली में जीते थे, क्या सेंचुरी इस बार लगेगी और वो आंकड़ा भी इस बार पार करेंगे हम?
2: उम्मीद तो बहुत है, सरकार अपने एंड से बहुत ट्राई कर रही है, जैसे स्कीम जहां टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो फोकस्ड करती है सिर्फ एलीट एथलीट पे, फिर आपके नेशनल कोचिंग कैंप जो होती है ACTC के थ्रू, और इवन ग्रास रूट में भी जहां खेलो इंडिया इनिशिएटिव्स के नीति के थ्रू इतना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं तो बोलूंगा कि हमारा भविष्य बहुत ही सिक्योर लगता है। और बीइंग अ होस्ट अहमदाबाद में, आई एम 100% श्योर कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। 100 का आंकड़ा क्रॉस करेंगे कि नहीं वो तो समय ही बताएंगे।
1: और महावीर, चलते चलते ये बात भी होती है ना कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 हमारे ओलंपिक 2036 के मेजबानी के लिए रास्ता साफ करने का कितना बड़ा मौका बन सकता है?
0: नहीं, तब तक एलोकेट हो जाएंगे इतनी देर तक कोई नहीं छोड़ता है। और लेकिन जिस तरीके से भारत ने पिछले 1-2 सालों में बहुत सारे चैंपियनशिप अहमदाबाद में ही परफॉर्म किया है, पूरा प्रोत्साहन सरकार से मिल रहा है कि कितनी भी बड़ी टूर्नामेंट हो आप इंडिया में करके दिखा।

0: आए, हमने करके दिखाया, तो बाय द टाइम 2030 होपफुली 2036 ऑलरेडी अनाउंस हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि 101 मेडल आए थे, 101 से ज्यादा शुभ आंकड़ा होता है 111 का, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अहमदाबाद, क्योंकि सारी शुभ जगहों की एक पहचान होती है, तो 111 मेडल मैं उम्मीद कर रहा हूँ अहमदाबाद में जरूर मिल जाए।
1: 111 वही नंबर था जो हमने पैरा एशियन में पिछली बार लेके आए थे। तो ग्लासगो में कल रात कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आधिकारिक तौर पर समापन हुआ और भारत ने 2030 में अहमदाबाद में होने वाले गेम्स के शताब्दी संस्करण की मेजबानी की जिम्मेदारी संभाली। हाइड्रो में हुए समापन समारोह में स्कॉटलैंड ने भारत को जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान ओलंपियन नीरज चोपड़ा और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा की मौजूदगी में कॉमनवेल्थ का झंडा आधिकारिक तौर पर भारत को सौंपा गया। इसके बाद भारत ने मशहूर गायक संगीतकार शंकर महादेवन के नेतृत्व में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ अहमदाबाद 2030 की अपनी यात्रा शुरू की। इसके साथ ही ग्लासगो से कॉमनवेल्थ गेम्स का कारवां अहमदाबाद की तरफ बढ़ चला है। हमारी मेजबानी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो चलिए हम अभी से अपने एथलीट्स का हौसला बढ़ाने और 4 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाएं। खेल विश्लेषक महावीर रावत जी और टारगेट ओलंपिक पोडियम के रिसर्च पॉलिसी एंड लर्निंग के हेड त्रिदीप भुइयां जी, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद
3: धन्यवाद।
1: फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ मुझे यानी धर्मेंद्र मणि राजेश को दीजिए अनुमति, फिर मिलने के वादे के साथ नमस्कार।
4: The Commonwealth Games.

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी पर एक बार फिर से मैं नीरजा आपके साथ हूँ प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती लेकर, और संगीत जोश जुनून और आपकी मुस्कान का साथ ही आपका ये कार्यक्रम, जहाँ म्यूजिक मैं लेकर आती हूँ और मस्ती वो आप में है ना दोस्त।

बिल्कुल, और ये रंग उड़ेगा हमारे परचम के साथ। जहां जीत है, जश्न है, जोश है, और आप और मैं हैं।

0: स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026, जहां आस्था का प्रकाश और विरासत का गौरव मिले,
1: जहां संस्कृति की सदियों पुरानी धरोहर भविष्य की नई राहें गढ़े। आइए बने एक ऐतिहासिक संगम का हिस्सा।
0: दिल्ली पर्यटन DTTDC द्वारा आयोजित स्पिरिचुअल एंड हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव 2026
1: 11 अगस्त 2026 प्रातः 10 बजे से दिल्ली पर्यटन के आधिकारिक YouTube चैनल पर लाइव प्रसारण।
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहुं सुदर्शन।
6: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
4: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर,
0: म्यूजिक मस्ती।
8: बिल्कुल, बात हो रही है म्यूजिक मस्ती की और RJ नीरजा आपके साथ है, तो भाई पूरी होगी। और फिलहाल मैं काली अनेक लगाकर आ गई हूँ, अगर आप नहीं लाए ना तो ले आइए जल्दी से।

बिल्कुल दोस्तों, इतना तैयार होके आएंगे तो अच्छे तो लगेंगे ही ना। और फिलहाल मैं बता दूं, सिर्फ मैं ही नहीं आई हूँ, बहुत सारे और साथी भी हमारे बीच आ गए हैं। यानी प्रियंका त्रिपाठी की बात कर रही हूँ, प्रोग्राम लेकर आएंगी आपकी याद आती रही मेरे बाद। और फिर होगा वेस्टर्न म्यूजिक का कार्यक्रम उत्कर्ष के साथ 10:02 पर और फिर 11:02 पर। एक बार फिर से प्रियंका त्रिपाठी हमारे साथ होंगी प्रोग्राम रंगे महफिल लेकर। फिलहाल आप इस महफिल का पूरा मजा लीजिए।

0: बिल्कुल दोस्तों, और हमने भी अपने स्टूडियो की जमीन पर अपनी सुंदरी को उतार लिया है। प्रियंका हमारे बीच आ गई हैं, अगला कार्यक्रम आपकी याद आती रही लेकर। और फिलहाल मैं लेना चाह रही हूँ इजाजत आपसे, और यही उम्मीद के साथ कि आपकी शाम गुनगुनाए अपने अपनों के साथ मुस्कुराते हुए।
1: वेलकम प्रियंका, आप फ्री हो जाओ, उसके बाद मैं आपको चाय पिलाऊंगी। जो आपने बोला ना सुंदरी उतरी है,
0: बिल्कुल,
1: यू डिजर्व अ डिनर,
0: वेरी नाइस। तो मैं दोस्तों खाना पीना चाय शाय सब लेकर आती हूँ, आप प्रियंका के साथ अगले कार्यक्रम में जुड़े रहिए।

और अब पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़कर 37 करने वाले विधेयक पारित किए गए। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा में माजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। बिहार के बांकेपुर से जन सुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर विजय रहे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की तृतीय विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक आज लखनऊ में शुरू हुई। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का लंबित बकाया महंगाई भत्ता डीए 15 दिनों के भीतर जारी करने का निर्देश दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों के नहीं हटने पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और नागरिक विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा कि भविष्य के युद्धों में AI, साइबर तकनीक, स्वचालित प्रणाली, अंतरिक्ष तकनीक और डेटा आधारित फैसलों की भूमिका बढ़ रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक उत्कलमणि पंडित गोप बंधु दास की प्रतिमा का अनावरण किया। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट है। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाकर स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फेम्स में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

बहुत मुश्किल से करता हूँ तेरी यादों का कारोबार, बहुत मुश्किल से करता हूँ तेरी यादों का कारोबार, मुनाफा कम है मगर गुजारा हो ही जाता है। जी हाँ, गुलजार साहब की लिखी हुई लाइन और उन यादों का असर परत दर परत खोल दे देती है जो हमारे जहन में ना रहे तो मुश्किल और रहे तो भी मुश्किल। रेडियो स्टेशन, इस वक्त अपने रेडियो स्टेशन पर आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम आपकी याद आती रही, और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। अगले एक घंटे तक रहूंगी आपके साथ आपके अपने रेडियो स्टेशन AIRFM रेडबो पर, और फिलहाल 90s की जबरदस्त सॉन्ग सिर्फ आपके लिए हैं। इस एक घंटे में एक से बढ़कर एक 90s के गाने हम प्ले करेंगे आपके लिए, और कुछ 90s की यादों को भी ताज़ा करते हैं, राइट। फिलहाल ये जो सॉन्ग है ना, ये मूवी आमिर खान और पूजा भट्ट की थी, द म्यूजिकल हिट। एंजॉय दिस वन।

0: 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ, ये कुछ गाने ऐसे हैं ना जिन्हें हम सिर्फ सुनते नहीं हैं बल्कि जीते हैं। 90 का दशक सिर्फ संगीत का दौर नहीं था बल्कि ये एक ऐसा टाइम था ना, एक ऐसा समय था जब एक सॉन्ग पूरी फिल्म को यादगार बना देता था और एक धुन बरसों तक लोगों की जुबान पर चढ़ी रहती थी। दरअसल उस दौर में, 90s के जो दौर में ना, उस वक्त तो मोबाइल तो मतलब था नहीं, सोशल मीडिया इतना यूज़ नहीं करते थे लोग, तो ये था कि, हालांकि मैं दोष नहीं दे रही हूँ लेकिन ये तो आप मानेंगे कि तब रिश्तों में अपनापन था, चिट्ठियों में इंतज़ार था और गीतों में सच्ची भावनाएं थी। आज भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस दौर की बात ज़रा अलग थी। अगर ये सॉन्ग जो मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ, इसे सुनकर आपके कोई पुरानी याद ताज़ा हो जाए तो दिल को रोकेगा मत, मुस्कुराने दीजिएगा। प्रोग्राम चल रहा है, आपकी याद आती रही। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेनबो पर।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

रूप कुमार राठौर की आवाज ही है, जानते हैं आप पता ही होगा आपने। बॉर्डर तो हम लोगों ने पता नहीं कितनी बार देखी है, और जितनी बार भी देखते हैं ना, मतलब उसके जो सीन्स हैं, उसके जो प्लॉट्स हैं, मतलब आप ना रुक जाते हो वहाँ पर। अगर मान लीजिए जैसे होता है ना, अब जैसे अपना 15th August का आने वाला है, तो जाहिर है किसी ना किसी चैनल पे ये फिल्म आएगी आएगी, डन है ये, 100% है। और आप जब देख रहे होते हैं ना फैमिली के साथ, और अचानक से जब चैनल चेंज करते करते करते करते अगर कहीं बॉर्डर दिख जाती है, उसके कुछ शॉट्स दिख जाते हैं, डायलॉग दिख जाते हैं, तो आप ना वहीं रुक जाते हो और फिल्म को ना ऐसे एक टक देखना शुरू कर देते हो। नो डाउट 90s में ना कुछ ऐसी फिल्में बनी हैं जिनको आप नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। यस दिस इज ट्रू। और 90 के दशक में तो वैसे भी आपको पता ही है ना, कैसेट का कल्चर था, जानती होंगे आपने और हमने सबने जिया ये दौर। और नई फिल्म रिलीज होने से पहले ना उसके जो कैसेट होता था गानों का, वो आ जाता था मार्केट में, लोग खरीदते थे, सुनते थे गानों को। और कई बार आप बताएं हम आपको कि 90s में तो कई फिल्में सिर्फ और सिर्फ लोग म्यूजिक की वजह से देखने जाते थे। सीरियसली आपको भी पता होगा कई सारी जो म्यूजिकल, उनको उन फिल्मों को आप मतलब स्टोरी भले ही लोग कहें कि ठीक है यार नेचुरल है, वही लव स्टोरी है, वही घूम फिर के सब कुछ है, बट म्यूजिक इतना खूबसूरत होता था ना कि लोग म्यूजिक की वजह से उस फिल्म को देखने जाते थे, और उस फिल्म को कहा जाता था दैट इज़ अ म्यूजिकली सुपर डुपर हिट, राइट। और कई जो फिल्में हैं उनकी तो पहचान ही गानों की वजह से, सॉन्ग्स की वजह से हो जाती थी। कुछ ऐसी फिल्म है एक पापा कहते हैं, याद है आपको, याद ही होगी, और उस फिल्म का ये सॉन्ग उदित नारायण जी की आवाज़ में, उफ क्या बताएं, जब चलता है ना ये सॉन्ग जहन कहीं और ही पहुंच जाता है। आप भी सुनिए, पहुंच जाए कहीं और। एंजॉय दिस वन, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेड बबल, मैं हूं आपके साथ प्रियंका।

कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की पे आई नजर जी। ये जो इश्क है ना जनाब, ये 90s का है और 90s के इश्क की बात जरा अलग है, उसका ना नशा ही कुछ और है। और जो 90s में इश्क होता था वो कई बार निगाहों से शुरू होता था और निगाहों पे ख़त्म हो जाता था, ज़बान पर तो बात ही नहीं आती थी। और इसीलिए उस दौरान निगाहों पे कई बातें भी कही जाती थी, बताएं कौन सी। खुदा बचाए आपकी इन दिलकश निगाहों से, खुदा बचाए आपकी इन दिलकश निगाहों से, फरिश्ता हो तो बहक जाए, इंसान क्या चीज़ है।

अभी काम करते हैं कि अगले सॉन्ग के जरिए ना इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब जब आंखें दिल की जुबान होती हैं तो जाहिर है कि आंखें कुछ कहती भी होंगी, है ना। याद है आपको 90s के वो जो एक दौर था ऑलमोस्ट एंड का, उस दौरान एक मूवी आई थी आमिर खान और रानी मुखर्जी, यस गुलाम, और उसमें भी जरा आंखों का ही जिक्र है, लेकिन उसमें कुछ बातें भी हुई है। एंजॉय दिस सॉन्ग अलका याग्निक वार शानू की आवाज में फ्रॉम द मूवी गुलाम, आपके अपने रेडियो स्टेशन पर।

चलिए अब वक्त हो चुका है मेरे जाने का, लेकिन 11 बजे ना हम फिर से मिलेंगे रंगे महफिल में खूबसूरत गजलों के साथ, बेहतरीन शायरी के साथ, करेक्ट। लेकिन मैं आपको छोड़े जा रही हूँ ना एक ऐसे धमाकेदार नंबर के साथ, थोड़ा सा 90 से ब्रेक लेके थोड़ा सा से पीछे चलते हैं। अब चूंकि बरसात भी हो रही है और सावन का महीना भी है, तो जनाब थोड़ा सा तो होना चाहिए, पता है क्या, जय जय शिव शंकर। एंजॉय दिस वन, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेडबो पर, और 11 बजे मिलूंगी मैं आपसे।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग डियर लिसनर्स, दिस इज 102.6 आकाशवाणी रेनबो एंड यू हैव ट्यून्ड इनटू रेनबो शोकेस। टुनाइट वी आर ट्रेसिंग द रिमार्केबल जर्नी ऑफ द इंग्लिश ऑल्ट रॉक बैंड रेडियोहेड, वन ऑफ म्यूजिक्स बोल्डेस्ट क्रिएटिव फोर्सेस। सो लेट्स बिगिन विथ वन ऑफ देयर न्यूअर वर्क्स, सेल to the moon.

0: Just is about toxic obsession and self-sabotage and asks you to take account for your own life. It's a powerful message behind grungy music, and we'll leave you to think it over as we take a very short break.
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल.
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है.
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो.
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है. आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है.
4: ठीक है,
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर. इसका सर देखो, जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा. जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा.
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है.
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है.
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अधिकारों की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा. ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं.
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं.
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या.
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए.
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए.
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए.
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है.
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए.
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं.
6: कोयल सी तेरी बोली,
7: आय हाय,
6: तेरी तेरी छी नजर में है जादू.
7: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे.
6: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था.
7: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो. अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है.
8: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर.
0: Welcome back to Rainbow Showcase at 102.6 Akashwani Rainbow, where we're telling the story of Radiohead. It was the 90s and everyone expected Radiohead to become another grunge one-hit wonder band. However, their revolutionary third album, OK Computer, was nothing like anyone had imagined. Listen for yourself in Subterranean, Homesick, Alien.

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: वेलकम बैक वंस अगेन टू रेनबो शोकेस ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो, वेयर टुडेज फोकस इज ऑन रेडियोहेड, ट्रेल ब्लेजर्स ऑफ ऑल्ट रॉक एंड इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। रेडियोहेड मैनेज्ड टू ट्रांसफॉर्म आउट ऑफ द ग्रंज एंड ऑल्ट रॉक जॉनर्स बाय एक्सपेरिमेंटिंग विद सेड इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक एंड पेयरिंग एनर्जेटिक म्यूजिक विद इमोशनली अपीलिंग लिरिक्स, विच इज समथिंग they started out as experts in. Hear the emotions for yourself in I Will, No Man's Land.

और अब पेश इस घंटे के मुख्य समाचार। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया गया। राज्यसभा ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। बिहार के बांकीपुर से जन स्वराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर विजयी रहे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारी छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का लंबित बकाया महंगाई भत्ता डीए 15 दिनों के भीतर जारी करने का निर्देश दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कल रात प्रदर्शनकारियों के नहीं हटने पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट है। और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाकर स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रांस फैंस में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

शबनम के आंसू फूल पर, ये तो वही किस्सा हुआ। शबनम के आंसू फूल पर, ये तो वही किस्सा हुआ। आंखें मेरी भीगी हुई, चेहरा तेरा उतरा हुआ। कहते हैं शायरी वो आईना है जिसमें हम अपने जज्बात देख सकते हैं। हर शेर हर मिसरा एक कहानी कहता है। कुछ शेर मोहब्बत को चंद लफ्जों में बयां कर देते हैं और कुछ मिसरे दिल के दर्द को बड़ी खूबसूरती से सजा कर हमारे सामने पेश होते हैं। और कुछ इसी तरीके से कुछ गम कुछ दर्द बड़े ही खूबसूरत अंदाज में 12 बजे तक इसी तरीके से बयां होंगे, खूबसूरत गजलों के साथ, खूबसूरत अल्फाजों के साथ। 12 बजे तक हम और आप साथ साथ। और फिलहाल एक खूबसूरत गजल है मेरे पास जो कि अब है आपके साथ। ज्यादा हो गया ना। चलिए एंजॉय दिस गजल। आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर मैं हूँ आपके साथ प्रियंका। प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल।

0: रहा है बबल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

और इश्क, और इश्क का पहला खत अगर पहला हो तो जनाब दिल के साथ साथ जान भी दांव पर लगी होती है। प्रोग्राम चल रहा है रंगे महफिल, मैं हूं आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। खूब पर्दा है चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं।

जहां मैं होने को ऐ दोस्त, यूं तो सब होगा। जहां मैं होने को ऐ दोस्त, यूं तो सब होगा। तेरे लबों पर मेरे लब हों, ऐसा कब होगा।

बागों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

लता जी की आवाज़ और फिल्म बाजार, वहीं से ये गजल है। प्रोग्राम चल रहा रंगे महफिल, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेडबो पर। कभी तो चौक के देखे कोई हमारी तरफ, कभी तो चौक के देखे कोई हमारी तरफ, किसी की आंखों में हमको भी इंतजार दिखे।

प्रोग्राम चल रहे रंगे महफिल, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। शबाब आ गया उस पर शबाब से पहले, शबाब आ गया उस पर शबाब से पहले, दिखाई दी मुझे ताबीर ख्वाब से पहले। जमाले यार से रोशन हुई मेरी दुनिया, वो चमकी दिल में किरण महताब से पहले। दिलो निगाह पे क्यों छा रहा है साकी, दिलो निगाह पे क्यों छा रहा है साकी, ये तेरी आँख का नशा शराब से पहले। न पेश नामा ए जमाल कर अभी है जोश, न पेश नामा ए अमाल कर अभी है जोश, हिसाब कैसा ये रोजे हिसाब से पहले।

बेचैन इस कदर था कि सोया न रात भर, बेचैन इस कदर था कि सोया न रात भर, पलकों से लिख रहा था तेरा नाम चांद पर।

जी हाँ, जिस खूबसूरती में सादगी झलकती हो उसके लिए तो दुआ ही करनी पड़ेगी। फिलहाल ये सफ़र यहीं तक और कुछ अल्फाजों के साथ और एक खूबसूरत गज़ल के साथ छोड़ के जाऊंगी मैं आपको। कहते हैं कि मैं वो दरिया हूँ कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। मुंतज़िर हूँ कि सितारों की जरा

लगे चांद को छत पे बुला लूंगा एक इशारा करके। तो जनाब यही हौसला रखिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए और सुनते रहिए आपका अपना रेडियो स्टेशन आकाशवाणी FM रेनबो। ख्याल रखिएगा अपना।

अभी आप सुन रहे थे गजलों का हमारा कार्यक्रम, और अब से कुछ ही देर में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए हिंदी में समाचार, बस अब से कुछ ही पल में।

आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया गया। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात के बड़ोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर विजयी रहे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज FIR को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर हो जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के नहीं हटने पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी के कारण स्थिति और बिगड़ी। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और युवा साइकिल चालक हर्षिता जाखड़ स्विट्जरलैंड में टूर डी फ्रेंस फेम्स में हिस्सा लेने वाली अब तक की पहली भारतीय महिला बनी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: है बबल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

एफएम मुख्य समाचार। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर विजयी रहे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मोनिशा चक्रवर्ती को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। वह विदेशी मुद्रा विनिमय और वित्तीय बाजार विनियमन से जुड़े विभागों का दायित्व संभालेंगी। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया में शुरू। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे।

आकाशवाणी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। 1:03 और 23 सेकंड का समय। आप प्रस्तुत है कार्यक्रम सुहानी रात।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

एफएम मुख्य समाचार। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर विजयी रहे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने 19 नए मंत्रियों को शामिल कर मंत्रिमंडल का विस्तार किया। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ

बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी की है। हालांकि घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोब से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग सहित क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा की। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया में शुरू। तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: यो यो
2: मेरा पेट्रोल पंप, ये टैंकी खाली है, भर दो ना इसे।
3: ये लो बॉटल और भर दो सबके ग्लास।
1: ये माल चलेगा नंबरी सेठ, रानी छाप है।
4: रानी छाप हो या राजा छाप, यारों को चालू माल नहीं चलता।
1: तो फिर क्या दारू के अड्डे पे झक मारने के लिए आया है?
4: यारों के मुंह मत लग लौंडिया।
1: मैं और तुम्हारे मुंह, जा मुंह धो गया।
4: आया तो मैं नहा के था, मगर तू यारों का ब्रांड नहीं।
2: ए लौंडिया, इधर तेरा दाल नहीं गलेगी। अपना उस्ताद है ना उस्ताद, बहुत ऊंची चीज है।
4: धंधे पे लग।
2: ओए आज रहो सोनियो ना क्या?
5: अरे तेरे प्रेमी तो इधर है हम।
2: अरे हमें बिला प्रेम से
6: आरती मन मानती, कहना क्यों नहीं मानती। पाठशाला में छुट्टी हो गई, बस्ता क्यों नहीं बांधती, बस्ता क्यों नहीं बांधती, बस्ता।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,

0: तरह का सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

एफएम मुख्य समाचार। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। बिहार के बांकीपुर से जन सुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर विजयी रहे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग सहित क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी विस्तार से चर्चा की। वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति के जोखिमों के बीच RBI की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक शुरू। बुधवार को नीति वक्तव्य जारी होगा। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया में शुरू। तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

जिसे तुम भटकना कहती हो ना मानसी, मैं उसे और जानने की तलाश कहता हूं, एक दूसरे को जानने की तलाश। मैं इस जमीन पे भटकता हूं कितनी सदियों से, गिरा है वक्त से कट के जो लम्हा उसकी तरह। वतन मिला तो गली के लिए भटकता रहा, गली में घर का निशान ढूंढता रहा बरसों। तुम्हारी रूह में अब जिस्म में भटकता हूं, तुम्ही से जन्मूं तो शायद मुझे पनाह मिले।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान।

ये दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है, वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर विजयी रहे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। समिति ने मेटा के मुख्य अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाबी बाग पश्चिम मेट्रो स्टेशन पर पुराने कपड़ों के लिए एक दान केंद्र अर्पण का उद्घाटन किया। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ नई वार्ता उसके लिए समझौता करने और उस पर अमरीकी हमलों को रोकने का अंतिम अवसर है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमरीका की चिंताओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली वार्ता अगले एक दो दिनों में शुरू हो जाएगी। गाजा में बदलाव की देखरेख करने वाले बोर्ड ऑफ पीस के एक अधिकारी ने आज इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। एक बयान के अनुसार इस मुलाकात का एक मुख्य उद्देश्य हमास के साथ हुए नए निरस्त्रीकरण समझौते पर चर्चा करना था। आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया में शुरू। तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: क्या है बदल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली।

नमस्कार, प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास में भुगतान में देरी की समस्या को दूर करने और मध्यस्थता को सरल बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दी। विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट फिर जीती। बिहार के बांकीपुर से जनसुराज पार्टी नेता प्रशांत किशोर विजयी रहे। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर कब्जा बरकरार रखा। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाबी बाग पश्चिम मेट्रो स्टेशन पर पुराने कपड़ों के लिए एक दान केंद्र अर्पण का उद्घाटन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ नई वार्ता उसके लिए समझौता करने और उस पर अमरीकी हमलों को रोकने का अंतिम अवसर है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमरीका की चिंताओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली वार्ता अगले एक दो दिनों में शुरू हो जाएगी। गजा में बदलाव की देखरेख करने वाले बोर्ड ऑफ पीस के एक अधिकारी ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। बयान के अनुसार इस मुलाकात का एक मुख्य उद्देश्य हमास के साथ हुए नए निरस्तीकरण समझौते पर चर्चा करना था। आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया में शुरू। तन्वी शर्मा और किदाम्बी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: बातें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी।